0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव में आज का विषय है जैव उर्वरक व उनके कार्य। वाचक हैं अभिनव गौरहा।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। किसान भाई हो, खेती के बात में हम आप मल्ला आने बानी के विषय बतात रिथन, जेमा ऐसा विषय रहते जेमा कैसे खेती किसानी में आयला बढ़ाया जाए और खेती किसानी के खर्चा ला घटाया जाए, ऐसा व्यवस्था रहते। आज यही क्रम में हम आप मल्ला बताबो जैव उर्वरक का होते, ओखर का उपयोग होते और कैसे खेती में उपयोग होते। जैव उर्वरक मन ऐसा पदार्थ होते जौन में सूक्ष्म जीव होते, जौन मन पौधा के आवश्यक पोषक तत्व के आपूर्ति बढ़ा के पौधा और पेड़ की वृद्धि ला बढ़ावा दिए में मदद करते। एमा शामिल जीव जौन मा माइकोरिजल कवक, नीला हरा शैवाल और बैक्टीरिया शामिल होते। माइकोरिजल कवक पौधा पर कार्बनिक पदार्थ से खनिज ला प्राथमिकता देते, जबकि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विशेषता रख। अब जानबो जैव उर्वरक मन के कौन कौन सा प्रकार होते और का काम करते। हम हमेशा राइजोबियम कल्चर के बात करथन। राइजोबियम जीवाणु समूह से संबंधित होते और एकर उदाहरण सहजीवी नाइट्रोजन मतलब नत्रजन स्थिरीकरण के काम होते। जीवाणु फलीदार पौधा के जड़ ला संक्रमित करते और जड़ के गांठ बनाते, जेखर अंदर ओमन आणविक नाइट्रोजन ला अमोनिया में बदल देते, जेखर उपयोग पौधा मूल्यवान प्रोटीन, विटामिन और अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिक के उत्पादन करे बर करते। सहजीवन के स्थान जड़ के गांठ के अंदर होते। ये अनुमान लगाया जाते कि राइजोबियम के सूक्ष्म जीवी गतिविधि द्वारा विभिन्न फलीदार फसल द्वारा 40 से 250 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष स्थिर करे जाते। तो हमला दलहनी फसल लगाथन ओमा नत्रजन के स्थिरीकरण होते, उखर पहले हमला राइजोबियम के उपचार करना चाहिए। दूसर बात कर वो एजेटोबैक्टर, ये महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक जीवाणु होते। एकर उपयोग सबो गैर फलीदार पौधा विशेष रूप से धान, कपास, सब्जी मन बर करे जा सकते जैव उर्वरक के रूप में। तीसर होते जो स्पाइरिलम, ये बैक्टीरिया से संबंधित होते। एक गैर फलीदार पौधा जिसे अनाज, बाजरा, तिलहन, कपास ये सब फसल मनमा राय 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की सीमा में नत्रजन के काफी मात्रा में ठीक करे बर जाने जाते। अगला बात कर वो साइनोबैक्टीरिया, एक कोशिका से लेके कई कोशिका वाले जलीय जीव के समूह होते। यही ला नीला और हरियर शैवाल के नाम से जानथन हमन। अगला बात कर वो एजोला, ये मुक्त रूप से तैरे वाले जलीय फर्न होते जो उन्हें पानी में तैरते और नत्रजन ला वातावरण से स्थिर करे वाले नीला हरा शैवाल एना बेना जोला के संग मिलके वायुमंडलीय नत्रजन ला स्थिर करते। एजोला के पत्ता में एक तैरत हुए प्रकंद और छोटे ओवरलैपिंग द्विखंडित पत्ती और जड़ होते। धान के फसल में नत्रजन के योगदान के मामला में एजोला संभावित जैव उर्वरक माने जाते। हरियर खाद के रूप में एकर खेती बहुत पहले से होते। एजोला के उपयोग सुअर और बतख जैसे पालतू जानवर के चारा के रूप में घलो करे जाते। हाल के दिन में एजोला के उपयोग पशुधन विशेष रूप से डेयरी, मवेशी, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन पर विकल्प के रूप में करे जाते। ट्राइकोडर्मा की बात करी, ये पौधा ला बीमारी से बचाए वाले एक महत्वपूर्ण जैविक एजेंट है जौन माटी में पनपे वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव ला खत्म करते। माइकोराजा की बात करी, एक कवक होते जौन जरई मन के चारों कती रही के उखर वृद्धि ला बढ़ाते, जेकर से पानी, जिंक और सल्फर के भूया ले पेड़ तक बेहतर अवशोषण हो पाते। आखिर में हम बात करी एनपीके कंसोर्टिया, एम ऐसा सूक्ष्म जीव होते जो नत्रजन, स्फुर और पोटास तीनों के उपलब्धता ला फसल पर एक संग बढ़ाते। तो किसान भाई हो, कुल मिला के अगर हम जैव उर्वरक मन के उपयोग करी भूमि उपचार मा, बीज उपचार मा, खासकर अभी खरीफ मा, खरीफ के मौसम आते धान के फसल लगाबो, आखिर में हम देखथन की आनी बानी के रोग राय हमार फसल में लग जाते और हम

0: ला कुल मिला के आनी बानी के रासायनिक जिनिस के उपयोग करना पड़ते जेखर से पैसा के खर्चा होते। खेती में हमन ला चाहे कि हमन खर्चा ला घटाए और फायदा ला बढ़ाए, तो ये सब जिनिस के लाभ हमन ला लेना जरूरी है। चाहे हम बीज उपचार करी, चाहे हम भूमि के उपचार करी, तो ये सब के फायदा आप मन बिल्कुल ले। तो संगवारी हो ए होइस आप मन ला आज आनी बानी जैविक जिनिस मन के बात बताएं आगू के क्रम में और ऐसा है सुग्घर सुग्घर खेती के विषय ला लात रहो। राम राम जय जोहार।
1: कार्यक्रम खेती की बात अभी आप सुन रहे थे। सामूहिक सुझावों में आज का विषय था जैव उर्वरक व उनके कार्य। वाचक थे अभिनव गौरहा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का। आवाज है महेंद्र कपूर की।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, क्योंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का, आवाज थी महेंद्र कपूर की। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान। कार्यक्रम में आज का विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।

छत्तीसगढ़ एक धान प्रधान और बड़े हिस्से में रेन फेड एग्रीकल्चर वाला राज्य है, इसलिए यहाँ PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सबसे प्रमुख इस योजना का उद्देश्य है बारिश पर निर्भर खेती को बढ़ावा देना और सिंचाई आधारित और टिकाऊ खेती में किसानी कार्य को बदलना। छत्तीसगढ़ में मुख्य लक्ष्य जो है राज्य में PMKSY इन खास उद्देश्यों पर काम करती है, जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराना, छोटे किसानों को सिंचाई सुविधा देना, भूजल स्तर को सुधारना, जल संरक्षण करना और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ में PMKSY के जो मुख्य घटक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावी हिस्सा है जो आने वाले समय में और तेज़ी से बढ़ने वाला है। इसमें क्या क्या काम होने वाले हैं, आइए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इनमें सबसे पहले शामिल है खेती के लिए तालाब बनाना, चेक डैम बनाना, कंदूर बंडिंग करना, नाला प्रबंधन करना, मिट्टी और पानी का संरक्षण करना। सबसे ज़्यादा ये बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जशपुर, महासमुंद और धमतरी जैसे इलाकों में कार्य किया जाएगा। ये इलाके पहाड़ी और वर्षा आधारित हैं, इसलिए वाटर शेड बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, ये कंपोनेंट किसानों के लिए सबसे डायरेक्ट लाभ देने वाला फॉर्मूला है। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम। छत्तीसगढ़ में इन सिस्टम्स के लिए सब्सिडी भी उपलब्ध है। छोटे सीमांत किसानों के लिए 55-70% तक सब्सिडी छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो उपलब्ध करा रहा है और अन्य किसानों के लिए 45-55% तक सब्सिडी उपलब्ध है। इसमें सब्जियां, फल यानी मौसमी जो फल होते हैं उनके लिए, गन्ना और बागवानी के लिए इन फसलों का उपयोग किया जाएगा। खास बात है धान में कम लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाएगा। हर खेत तक पानी पहुँचे, ये इस योजना का उद्देश्य है। हर खेत तक पानी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसमें शामिल हैं छोटे सिंचाई प्रोजेक्ट, पुराने तालाबों जलाशयों का पुनरुद्धार, लिफ्ट

लिफ्ट के साथ में इरिगेशन, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स भी इसमें शामिल हैं, जिसमें बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स को पूरा करना शामिल है, डैम और नहर जैसे। छत्तीसगढ़ में ये कंपोनेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की अभी तक की उपलब्धियां हैं, जल संरक्षण में इसमें सुधार आया है, हजारों चेक डैम और तालाब बनाए गए हैं, वर्षा जल का संग्रह भी बढ़ा है, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। पहले जहां तक फसल होती थी, अब वहां दो फसल होने लग गई हैं। राज्य के मुख्य लाभार्थी क्षेत्र हैं उत्तरी छत्तीसगढ़, जैसे सरगुजा संभाग, वाटरशेड और जल संरक्षण आदिवासी क्षेत्र में भी इनके काफ़ी अच्छे लाभ रहे हैं। आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग और जनपद पंचायत में। फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में आज का विषय था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी अब आपसे साझा कर लेते हैं कार्यक्रम विवरण में। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह आप सुनेंगे 7:05 पर। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम यादों के झरोखे से का आनंद लेंगे आप 7:30 पर। ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से आज सुबह 8:30 पर। कौशल भानु, उर्मिला देवांगन और साथी और आत्मा कोसा और साथियों के गाए लोक गीतों का आनंद लेंगे आप कार्यक्रम अमराई में सुबह 9:00। फोन इन कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत आप सुनेंगे 10:00 और कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद लेंगे आप 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनने का समय होगा सुबह 11:00। सुबह 9:55 और 11:55 पर हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार। सुबह 12:00 से शाम 5:00 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, 5:05 पर चित्रपट संगीत, 5:35 पर कार्यक्रम युवा जगत, जिसमें आप सुनेंगे क्रम प्रकृति और पर्यावरण। कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने का आनंद लेंगे आप 6:20 और 7 बजे भी। 7:30 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा का, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खेती और खरीफ के लिए मौसम अनुकूल किस्में। इस विषय पर जानकारी देंगी बीज निगम सेंदरी बिलासपुर की बीज प्रबंधक श्रीमती प्रीति अवस्थी। भेंट करता होंगे मंगू भैया।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: रात्रि 8 बजे आज आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल के गाए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत में। आपका पसंदीदा कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे 8:15 पर। 9:15 पर हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 85% से अधिक मतदान हुआ।
1: तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में फैले 234 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, क्योंकि बिना किसी गड़बड़ी के 85.10% मतदान दर्ज किया गया था। भूटान, मिस्र, मॉरिशस, मोल्डोवा, इंडोनेशिया, बेनिन, श्रीलंका, पेरू, घाना और नामीबिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के 20 प्रतिनिधियों और राजनयिक अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। आज सुबह 8:30 बजे के बाद 4,87,98,833 मतदाताओं के फैसले और 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का पता चलना शुरू हो जाएगा। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फालता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 21 मई को दोबारा वोटिंग हुई और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
2: जनादेश 2026।
0: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
0: नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज मतगणना होगी। मतगणना उपायुक्त कार्यालय में 3 चरणों में की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन तक चलने वाली उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है। इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हो रहे हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं।

0: हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्स आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: संस्कृत और हिंदी में समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी शांतनु कपूर का नमस्कार।

श्रोताओं, अगले 25 मिनट हम बात करेंगे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों की जो आपके जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और जागरूक बनाने में सहायक होंगी। श्रोताओं, हर वर्ष 4 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। ये दिन उन वीर अग्निशमक कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा करते हैं। आग एक ऐसा तत्व जो यदि नियंत्रण में हो तो उपयोगी है, लेकिन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाशकारी बन जाता है। इसलिए कुछ ज़रूरी सावधानियां हमारे सामान्य जीवन में हमें लागू ज़रूर करना चाहिए, जैसे घर में गैस सिलेंडर और चूल्हे की नियमित जांच करना बहुत ज़रूरी है, कहीं उनमें लीकेज की समस्या ना हो जो हम समय रहते देख सकते हैं। बिजली के तार और उपकरणों को ओवरलोड ना होने दें। अभी गर्मी के मौसम में हर घर में कूलर और एसी जोरों शोरों से चलाए जा रहे हैं। एसी का आउटर अधिकतर लोड लेकर और तपती धूप में शॉक सर्किट भी हो सकता है, इसलिए एसी के इस्तेमाल को सोच समझकर करना चाहिए। यह हमारे शरीर के लिए भी कुछ खास अच्छा नहीं है और ओवरहीटिंग से शॉक सर्किट की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। समय समय पर सर्विसिंग कराना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हादसे से बचा जा सके। घर में फायर एक्सटिंग्विशन अवश्य रखना चाहिए और उसका उपयोग भी हमें सीखना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में इनका उपयोग करना जान और माल की हानि से हमें बचा सकता है। आग लगने या संदेह होने पर कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, सीढ़ियों का सहारा लेना ज़्यादा उचित रहेगा। घबराने से कुछ नहीं हासिल होता, इसलिए हिम्मत से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित स्थान की ओर ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर देर ना हुई हो तो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। भारत में निशुल्क अग्निशमन नियंत्रण के लिए फ़ोन नंबर है

0: एक शून्य एक जो हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। आइए इस दिन हम उन सभी अग्निशमन कर्मियों को धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए हर पल तत्पर रहने के लिए वचनबद्ध भी हैं और अपने त्याग बलिदान से न जाने कितने लोगों को नया जीवन दे चुके हैं। सुरक्षित जीवन के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आइए सुनते हैं यातायात पुलिस बिलासपुर हमसे क्या कहना चाहती हैं।
1: नमस्कार मित्रों, हमेशा की तरह यातायात संबंधी सूचनाओं के साथ कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर के लिए मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी गांव में, सभी कस्बे में या पूरे शहर में, कुल मिलाकर संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। जिले की यातायात व्यवस्था हमेशा सुगम एवं सुरक्षित बनी रहे, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है, हमेशा यातायात नियमों को अपनाकर चलें। मित्रों, आप किसी भी वाहन के साथ यात्रा में हो तब सड़क सुरक्षा की नजर से हमेशा वाहन में मानक कलपुर्जे या उपकरण का होना नितांत आवश्यक है, किंतु हमारी नई पीढ़ी आजकल के चकाचौंध में अपने वाहनों में अमानक कलपुर्जे या उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, जो पूर्णतः असुरक्षित है, खतरनाक है। यही कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिसमें लोग घायल हो रहे हैं या मारे भी जा रहे हैं। जैसे वाहन कोई भी हो, हमेशा उचित एवं सुरक्षित प्रकार से तो मानक बल्ब का उपयोग करना चाहिए, किंतु अक्सर लोग मेड इन चाइना के चकाचौंध करने वाले बल्ब का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही हेडलाइट के अतिरिक्त कुछ और अलग से आंखों में चुभने वाला तेज प्रकाश युक्त बल्ब लगाते हैं। इन बल्बों का तेज अमानक प्रकाश आंखों को कष्ट पहुंचाता है तथा रात के समय लोग अपने वाहन में अतिरिक्त अमानक प्रकाश वाला अमानक सर्च लाइट लगा कर चलते हैं। इसके प्रकाश से सामने से आ रहे व्यक्ति को सड़क में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जिससे किसी भी गंभीर सड़क दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः बल्ब मानक लगाएं, अमानक नहीं। इसी प्रकार बुलेट जैसे दोपहिया वाहन में लोग मानक साइलेंसर को निकालकर तेज कर्कश एवं कान फोड़ू आवाज वाले अमानक साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करते चलते हैं, जो सर्वथा अनुपयुक्त है, घातक हो सकता है। इस अमानक साइलेंसर की तेज कर्कश आवाज नवजात शिशु, बीमार व्यक्ति या वृद्ध के लिए प्राण घातक हो सकती है। अतः हमेशा मानक साइलेंसर का उपयोग करें, अमानक नहीं। वैसे ही लोग अपने वाहनों में अमानक हॉर्न लगाकर शोर शराबा करते, कान फोड़ू एवं कर्कश आवाज के साथ चलते हैं, जो सबके लिए कष्टप्रद है। अतः हमेशा अपने वाहनों में मानक हॉर्न का उपयोग करें, अमानक नहीं। हमेशा यात्रा नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अब बात करते हैं उस खतरे की जो दिखता नहीं लेकिन सबसे तेजी से फैल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल फ्रॉड की। आजकल हेलो सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, ये कॉल आपको भी आई होगी, या फिर ओटीपी लेकर बैंक अकाउंट खाली करना, या फेक जॉब ऑफर देके पैसे मांगना, या सोशल मीडिया पर मैसेज करके जान पहचान बनाकर ठगी करना, और ना जाने ऐसे ही कितने अनेक तरीकों से सीधी साधी आम जनता को अपनी ठगी का शिकार बनाया जाता है।

हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी अपने फ़ोन का OTP, ATM का पिन या कोई भी पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर करना सुरक्षित नहीं है। अगर कोई खुद को बैंक अधिकारी बताता है तो कॉल काटिए और खुद बैंक जाकर या किसी ऑफिशियल नंबर पर कॉल कीजिए। याद रखिए, आज की समझदारी ही आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा है। वैसे आपके लिए हमारे पास एक सवाल है, कृपया पत्र या ईमेल के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। सवाल है, आप दिन में कितनी बार मोबाइल चेक करते हैं? अगर आपका जवाब 50 से ज़्यादा है, तो ये सिर्फ आदत नहीं, डिजिटल डिपेंडेंसी है। आप स्वयं खुद का आकलन करें और ये चैलेंज स्वीकार करें कि कुछ घंटे दिन भर में आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस समय में कुछ नया सीखें, जैसे कोई स्किल या कोई नया या उपयुक्त छोटा बिजनेस आइडिया, क्योंकि जो समय को कंट्रोल करता है, वही भविष्य को कंट्रोल कर पाता है। एक जागरूक नागरिक वही है जो सुविधा के साथ सुरक्षा को भी महत्व देता है।

जी हाँ, पानी आज अपने दोहरे चरित्र में है। अभी हमें देखने को मिल रहा है बिन मौसम बरसात, और पानी का दुरुपयोग भी। गर्मी के मौसम में जल स्तर को प्रभावित करने वाले ये दोनों ही प्रकरण आज के समय में आमतः देखे जा रहे हैं। इसलिए पानी के सदुपयोग को भी हमें समझना है, साथ ही इन बिन मौसम बरसात से भी हमें खुद को बचा के रखना है। आइए अब बात करते हैं समय के साथ बदलते रोजगार के तरीकों के बारे में। अब केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि सेवा आधारित छोटे उद्यम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे आज कृषि उपकरण किराए पे दिए जा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप हो रही है, या मोबाइल रिपेयरिंग और डिजिटल सेवाएं जैसे कार्य नई संभावनाएं बन रहे हैं। किराए पर गाड़ी चलाना हो या टेंट हाउस से रिलेटेड सामान को किराए पर देना हो, एक बेहतर पैसिव इनकम का ऑप्शन बन रहा है। इन कार्यों की खासियत ये है कि प्रारंभिक निवेश इनमें अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए स्थानीय स्तर पर इसकी मांग बनी रहती है और धीरे धीरे इस मांग को बढ़ाया भी जा सकता है। आज का समय रोजगार खोजने का नहीं, बल्कि अवसर पहचानने का है। सही जानकारी सही माध्यम से ग्रहण करें और बस लग जाएं लगन के साथ। पर ध्यान रखें, जानकारी, ज्ञान और समझ सही माध्यम से ही अर्जित करें। आज कोई भी सूचना संदेश बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन हर सूचना सही हो ये जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें या वीडियो वायरल हो जाते हैं जो जानकारी अधूरी या भ्रामक होती है। इससे बचने के लिए कुछ सरल उपाय हमें अपनाना चाहिए। जैसे किसी भी खबर को आगे किसी और को बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता का पता लगाना। केवल विश्व स्तरीय समाचार पत्रों जैसे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भरोसा करना, और सबसे महत्वपूर्ण अफवाहों से बचना और दूसरों को भी जागरूक करना अति आवश्यक है। एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो जानकारी का सही उपयोग करता है।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेल।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, 22 को की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: श्रोताओं, आज की तेज जीवन शैली में सबसे बड़ी चुनौती है समय का सही उपयोग करना। अभी का समय है ग्रीष्म कालीन, जो फल हैं यानी जैसे आम हो गया, विशेष ग्रीष्म में इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। हम आम अलग अलग वैरायटी के जो होते हैं उनका सेवन करते हैं, और इनकी गुठलियों को अगर हम संभाल कर रखते हैं तो जिस समय इनकी बुवाई होती है, जिस समय इनकी पैदावार करने का जिस समय किसान प्रयास करते हैं, उन गुठलियों को हम संजो के रख सकते हैं, उन्हें हम संभाल के रख सकते हैं, और खेती के समय पे जब इसे लगाया जाएगा तब हम इन बीजों को देकर इनका उपयोग कर सकते हैं। आम की गुठली कई फायदे हमें प्रदान करती है, ये सिर्फ खेती में नहीं, इसके अलावा भी इनके और भी उपयोग हैं। बीज को हम संरक्षित रखकर इन्हें आने वाले समय के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। डिजिटल सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, बदलते रोजगार के अवसर और सूचना का सही उपयोग, ये सभी पहलू हमारे दैनिक जीवन में जुड़े हुए हैं, और हमें एक जागरूक, सक्षम और सुरक्षित नागरिक बनाने में सहायता करते हैं। इसी आशा के साथ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपको पसंद आई होगी, मैं आपका रेडियो साथी शांतनु कपूर आज के प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह को अब विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म बादल से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। शैलेंद्र गीतकार हैं, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया ये गीत। अभी आपने सुना फिल्म बादल से। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म अनोखी अदा से। उमा देवी की आवाज़ में शकील बदायूनी गीतकार हैं, संगीतकार हैं नौशाद।

0: आशा भोसले का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म अनुपमा से। कैफी आजमी गीतकार थे, संगीतकार थे हेमंत कुमार। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म मंजिल से। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी गीतकार हैं, संगीतकार हैं SD बर्मन।
1: कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे, रुम झुम रुम झुम।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। मजरूह सुल्तानपुरी गीतकार थे, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म खामोशी से मन्ना डे की आवाज़ में। गुलजार हैं गीतकार, संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

0: तो सिस्टर
1: दोस्त कहा कोई तुम सा नहीं कोई सिस्टर।

0: दोस्त कहाँ कोई तुम सा।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा।

0: बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: कार्यक्रम यादों के झरोखे से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म आंखें से, शमशाद बेगम की आवाज में। राजा मेहंदी अली खान गीतकार हैं, संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: शमशाद बेगम की आवाज़ में गाया फिल्म आँखें का गीत अभी आपने सुना। इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों के झरोखे से का ये अंक यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ

0: वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
2: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र है, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
0: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साफ दांव पर है?
2: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है उनके नेता 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदय निधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है, जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
0: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का 1-1 निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट।

0: के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
2: जी, असम में विधानसभा चुनाव की मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्य भर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में दो दो तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
3: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
3: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
3: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
3: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
3: जनादेश 2026।
1: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेट, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर

0: दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कने तेज। हिन्दुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट ना सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2 टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन, पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन फॉर असेंबली इलेक्शंस इन असम, वेस्ट बंगाल, केरलम, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑल्सो अंडर वे फॉर बाईपोल्स इन 7 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज। India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipulekh Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied

भारतीय संस्कृति की रीढ़ ग्रामीण संस्कृति या कहीं लोक संस्कृति ही है। भारत की संस्कृति का विकास तभी संभव है जब उसमें दूसरी संस्कृतियों के तत्व आकर मिलें। लेकिन मूलाधार अपनी लोक संस्कृति पर ही टिकी होनी चाहिए। लोक संस्कृति पर महात्मा गांधी जी के इस अमर विचार के साथ आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित लोक संस्कृति के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर में आपका स्वागत करते हैं। स्वीकारी हमारा नमस्कार।

श्रोताओं, पिछले अंक में हमने छत्तीसगढ़ में विवाह संस्कृति पर गाए जाने वाले कुछ गीतों की चर्चा की थी और गीत सुने थे। इस अंक में शेष गीतों से संबंधित पहलुओं पर विचार करेंगे और गीत सुनेंगे। इससे पहले आइए आकाशवाणी से संबंधित कुछ तथ्यों पर विचार करें। आकाशवाणी में ज्यादातर कार्यक्रम स्टूडियो आधारित होते हैं, जिसमें वार्ताएं, भेंट वार्ताएं, चर्चा, परिचर्चा, कविता, कहानी, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत आदि शामिल होते हैं। बहुत से कार्यक्रम स्टूडियो में तैयार नहीं किए जाते, बल्कि बाहर जाकर रिकॉर्ड किए जाते हैं या उसका सजीव प्रसारण किया जाता है। इस तरह के कार्यक्रमों को स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित कार्यक्रम या ओबी रिकॉर्डिंग कहते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी का इलाके की जनता से सीधा संपर्क होता है और प्रसारण के विषय भी जन जन तक पहुंचते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खेलों के आयोजनों का आंखों देखा हाल, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों का सीधा प्रसारण या विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित प्रसारण ओबी श्रेणी में आते हैं। रेडियो की एक और चुनौतीपूर्ण विधा है आंखों देखा हाल या लाइव कमेंट्री। कमेंट्री विधा में दो तरह की कमेंट्री या आंखों देखा हाल होते हैं, क्रिकेट, हॉकी आदि खेलों की स्पोर्ट्स कमेंट्री तथा विविध समारोहों की नॉन स्पोर्ट्स कमेंट्री। इन दोनों में विविध समारोहों की कमेंट्री स्पोर्ट्स कमेंट्री की तुलना में अधिक कठिन है। जैसे कि क्रिकेट कमेंट्री में खिलाड़ी और देश भले ही बदल जाएं, किंतु खेल के नियम वही रहेंगे। वही मिड ऑफ, वही मिड ऑन रहेंगे, वही हुक और फुल शॉट होंगे। पूरे मैच में उत्साह और उल्लास का वातावरण रहेगा। इसकी तुलना में नॉन स्पोर्ट्स कमेंट्री में बात करें तो हर कमेंट्री अपने स्वरूप में पूरी तरह भिन्न होती है। समारोह स्थल, मंच की स्थिति तथा साज सज्जा अलग होती है। समारोह का अपना एक निजी रूप होता है, जिसमें तरह तरह के बदलाव भी अचानक हो सकते हैं। कलाकारों के वाद्य यंत्र हों, वस्त्र हों या भाव भंगिमाएं हों, सब कुछ अलग तरह की कमेंट्री की मांग करते हैं। इसी तरह जहां गणतंत्र दिवस की परेड में देशभक्ति का वातावरण होता है, वहीं कृष्ण जन्मोत्सव में धार्मिक अथवा सांस्कृतिक वातावरण की प्रधानता होगी, एक श्रद्धा भाव होगा। अतः कार्यक्रम के भाव के अनुसार कमेंटेटर को भाव बदलना पड़ता है। ध्वनि प्रभाव, उच्चारित शब्द, संगीत, सन्नाटा या साइलेंट आदि के प्रयोग पर बहुत ही सावधानी रखनी होती है, ताकि वास्तविक कार्यक्रम के भावों का

ध्वनि प्रभाव जनमानस को प्रभावित कर सके। आइए अब आपको लोक संस्कृति से जोड़ते हैं। आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित लोक संस्कृति के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की लोकसुर के साथ।

मानव जीवन के 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार है विवाह संस्कार। भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक सभ्य समाज को गति देने का संस्कार है। इसमें निहित है परिवार की भावना, रिश्तों की मधुरता। विगत कड़ी में हमने छत्तीसगढ़ी संस्कृति में विवाह संस्कार के कुछ रस्मों जैसे मंगनी, चुलमाटी, तेल मायन, दतेला जैसी रस्मों की चर्चा की थी और संबंधित गीत सुने थे। आइए चर्चा को गति देते हैं। मायन या मातृका पूजन के अगली सुबह बारात जाने की तैयारी आरंभ हो जाती है। इसके पूर्व नहडोरी और मौर सौंपने की रस्में होती हैं। वर स्नानादि से निवृत्त होकर नए वस्त्राभूषणों से अलंकृत होता है। घेढ़ा वर को खंभे की 5 बार परिक्रमा करवाता है। उसके शरीर कपड़े से ढककर आंख बंद करने के लिए कहकर हाथ में कंकन बांधता है। फिर वर की माँ वर को विदा करने के पूर्व मौर सौंपती है। ये पल बहुत ही भावनात्मक होता है। मौर सौंपने की क्रिया में जीवन की 5 मूल तत्वों की उपस्थिति में माँ अपने बेटे को आशीष देती है। मंडप में रखे कलसा जिसमें जल भरे होते हैं, जो एक नांदी से ढके होते हैं जिसमें अन्न धान भरे होते हैं, उसमें रखे जलते दिए, माथे पर मौर बांधे, माइन 5 तत्वों को लेकर मड़वा का परिक्रमा करती है। मानो मंडप पर विराजमान मंगरोहन देव और मायन में आमंत्रित समस्त देवी देवताओं और पूर्वजों से प्रार्थना कर रही हो कि उनका कलेजे का टुकड़ा, उनका लाल सदा खुशहाल रहे, ये कामना कर रही हो। और जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश को साक्षी रख बेटी को आशीष प्रदान करती है। इसे ही मौर सौंपना कहते हैं।

ये रस्म महज एक रस्म नहीं, बल्कि इस रस्म में हिलोरे लेती है माँ और बेटे के बीच वत्सल्य की भावनाएं। अब तक जो बेटा माँ के आंचल में लिपटकर ममता का, दुलार का, वत्सल्य के समंदर में गोते लगाता रहा, अब नई दुनिया में प्रवेश पाने जा रहा है। इस अवसर में बेटा अपने बीते दिनों को याद कर द्रवित हो जाता है। कैसे इन्हीं माँ से अपनी हर जिद पूरी करवाता रहा, कैसे इनके आंचल की छांव में इतराता रहा और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं आपके लिए सुंदर सी बहू लेके आऊंगा जो आपके बुढ़ापे में आपके हर काम में हाथ बटाएगी, सहारा बनेगी।

माँ भी जानती है कि मेरा बेटा अब तक मेरी आंचल की छांव में सुरक्षित रहा। मेरे सीने से बहती ये दूध की सात अमृत धार मेरे लाल को पुष्पित पल्लवित करता रहा और कैसे मुझे संतान सुख से अपने वात्सल्य से आह्लादित करता रहा। माँ भी अपने मातृत्व सुख के अतीत के एहसास में डूब जाती है और आखिरी बार अपने बेटे से कहती है, आ बेटा, मेरे सीने से बहती ये अमृत ये पीयूष की धार को पी ले और मैं भी मातृत्व सुख को एक बार फिर जी लूं, फिर जीवन की दूसरी दुनिया में प्रवेश करना जहां बहू के रूप में एक नई स्त्री नई भूमिका में तुम्हारे जीवन में होगी। वत्सो में छत्तीसगढ़ी संस्कृति में रिश्तों की गहराइयों को एहसास करने का इससे सुंदर उदाहरण कहीं नहीं दिखाई देता। फिर माँ अपनी आंचल यानी अचरा में बंधे कुछ पैसे देकर बारात विदा करती है।

दुल्हन के घर का दृश्य अलग होता है। बारात का इंतजार करते घर वालों की उत्सुकता देखते ही बनती है। बारात का स्वागत करते लड़की वालों के साथ आई महिलाएं इस अवसर पर दूल्हा और बारातियों को उलाहना देती हैं, गीत गाती हैं, जिसे छत्तीसगढ़ में भड़ौनी कहा जाता है। बारातियों का उत्साह और ठसन देखते ही बनता है।

0: कसरे दयालु
1: काहे भैया पड़त
0: अब ये टूरी मन तो चढ़ाऊ पड़त है रे
1: चढ़ाऊ पड़त है
0: आंखी मही खर कोयला लगे मुंह मा चुप रे राखो आनी बानी के तुमन गावत हावा वो टूरी और तुम्हारा थोर को

छत्तीसगढ़ ही विवाह परंपरा में सामान्य रूप से तीन प्रकार के विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है, जयमाला विवाह, मझली विवाह और बड़े विवाह। जयमाला विवाह में घराती और बारातियों को साक्षी रखकर वर वधु एक दूसरे को वरमाला डालते हैं। वहीं मझली विवाह में परिवार के अलावा सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति में सामान्य पूजा पाठ के बाद वैवाहिक बंधन भी बांध दिया जाता है, जबकि बड़े विवाह जिसे सामान्यतः साखोच्चार पद्धति कहा जाता है, जिसे पुरोहित द्वारा वैदिक पद्धति से करवाया जाता है, विवाह में जब फेरे पड़ते हैं, जिसे भावर कहा जाता है, इस समय सहज ही महिलाएं गा उठती हैं।

छत्तीसगढ़ी विवाह पद्धति में सूक्ष्मता से विचार करने पर हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। विवाह के फेरे पड़ने के साथ अपने हृदय का टुकड़ा बेटी को दूसरे को सौंपते वक्त पूरा परिवार द्रवित होता है और माता पिता परिवार ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि उनकी लाडली जिस घर में जा रही है वहां किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और उनका गृहस्थ अच्छे से चले, इसलिए जीवन की तमाम प्राथमिक वस्तुएं बेटी को दिए जाते हैं जिसे टिकावन कहा जाता है। इसे प्राचीन समय में बहुत ही पुण्य कार्य की संज्ञा दी गई है, लेकिन वर्तमान समय में इस पावन प्रसंग में दहेज जैसी विकृति अपना स्थान लेने लगी है जिसे हमारे पूर्वजों की पावन सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था को चोट पहुंच रही है। जरूरत है इस विकृति को खत्म करने की। धर्म टीका करते आंखों में आंसू लिए माता पिता परिजनों के लिए महिलाएं गीत के माध्यम से उनके कर्तव्य का बोध कराती हैं। कहते हैं धर्म का समय चढ़ रहा है, लग्न की बेला उतर रही है, धर्म कर लो फिर धर्म नहीं मिलेगा। आज बेटी पराई हो गई, अपनी माँ की दुलारी माँ पल भर गोद में ले लो फिर ये गोद दुर्लभ हो जाएगी। अपने पिता की दुलारी ददा पल भर को गोद ले लो, आज बेटी बिरानी हो गई है।

छत्तीसगढ़ी विवाह गीतों में विदा गीतों का प्रधान विषय ममतामयी माता, प्रेमी पिता और स्नेही भाई से बिछुड़ना रहता है। इन गीतों में बिछोह तथा करुण रस के चित्र अपनी संपूर्ण मार्मिकता के साथ अंकित रहते हैं। बेटी को माता पिता की दूसरी माँ यूं ही नहीं कहा जाता। विदा होती बेटी अपनी चिंता की, उसके जाने के बाद उसके माता पिता की देखरेख कौन करेंगे, खाट पर बैठे खांसते दादाजी की बातें कौन सुनेगा, ये सब सोचकर बेटी द्रवित हो जाती है और अपनी सखी से कहती है।

पूरे परिवार, माता पिता, दादा दादी, मामा मामी, भैया भाभी नम आंखों से अपनी लाडली को आशीर्वाद देकर विदा करते हैं।

और इसी के साथ इस अंक को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में लोक संस्कृति के कुछ अन्य विषयों और गीतों को लेकर उपस्थित होंगे। वाचन प्रीति यादव का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजन पंकज मेश्राम का। सबका मंगल हो। नमस्कार।

0: छत्तीसगढ़ के लोक सुर। इस कार्यक्रम की 21वीं कड़ी अभी आपने सुनी। आलेख, संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की थी। संयोजक थे पंकज मेश्राम।
1: ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर अभी आप सुन रहे थे। अनुप्रसारित किया जा रहा था आकाशवाणी रायपुर से FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बज रहे हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का पसंदीदा कार्यक्रम अमराई। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए प्रस्तुत है आत्मा कोसा की आवाज़ में।

आत्मा कोशा और साथियों का गाया लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, प्रस्तुत है कौशल भानु उर्मिला देवांगन और साथियों की आवाज़ों में।

आत्मा कोशा और साथियों की आवाज़ों में गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आइए सुनते हैं, कौशल कुमार भानु, उर्मिला देवांगन और साथियों की आवाज़ों में।

आत्मा कोसा और साथियों की आवाज़ों में गाया लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए प्रस्तुत है कौशल कुमार भानु और उर्मिला देवांगन की आवाज़ों।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कौशल कुमार भानु और उर्मिला देवांगन का गाया लोकगीत अभी आपने सुना। इसी गीत के साथ कार्यक्रम अमराई का ये अंक यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी के बारे में। यही है हमारी आज की

इनका जन्म हुआ 18 जुलाई 1945 को पश्चिम बंगाल के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में। गाने का शौक बचपन से ही था, सो परिवार ने भी इस कला को बढ़ावा दिया। उस समय इनकी उम्र लगभग 14 या 15 साल की रही होगी, जबकि इन्होंने ऑल इंडिया म्यूजिक टैलेंट प्रोग्राम में गाना गाने का फैसला किया और इन्हें मौका मिल भी गया। और तभी तालियों और वहां मिली प्रशंसा ने मन में ये ख्वाहिश जगा दी कि एक दिन मुझे भी हिंदी सिने संगीत में अपना वही मुकाम बनाना है जो लता मंगेशकर का है।

0: बनाए।
1: बहुत कम उम्र में ही आरती मुखर्जी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू कर दी और उसी का नतीजा था कि आरती मुखर्जी ने जीता मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट। अब इस प्रतियोगिता की एक खासियत ये थी कि इसे जज कर रहे थे उस जमाने के नामचीन संगीतकार अनिल बिस्वास, नौशाद, वसंत देसाई और सी रामचंद्र। बस यहीं से आरती मुखर्जी के पार्श्व गायन के क्षेत्र में जाने का रास्ता बन गया और 1958 में आरती मुखर्जी को पहला ब्रेक मिल भी गया। फिल्म मीना कुमारी अभिनीत थी, नाम था सहारा।
2: अचकन मचकन दही चटोकन धम्मड़ दुस्सा खूब गुस्सा कड़वी कड़वी बात फुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन कन्हैया।

नाचे बंदरिया लहंगा डाल के, बिल्ली बजाए बाजा गाए चूहियों का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के।

0: लहंगा डाल के।
1: इस फिल्म के संगीतकार थे हेमंत कुमार, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म का संगीत कुछ खास चला नहीं। उसके बाद 1959 में एक बार फिर मीना कुमारी की ही फिल्म थी दो दिल चार राहें। 1961 में एक और फिल्म मिली। इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था बॉयफ्रेंड।

पहुंचते पहुंचते आरती मुखर्जी को ये बात समझ में आ गई कि हिंदी सिने संगीत के क्षेत्र में इस समय अपने लिए एक अलग जगह बनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो समय लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी पूर्व स्थापित गायिकाओं का करियर का पीक का टाइम था। लिहाजा आरती मुखर्जी ने एक बड़ा ही समझदारी का निर्णय किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बांग्ला फिल्मों की तरफ लगा दिया और इसका बड़ा पॉजिटिव असर भी हुआ। 70 के दशक तक आरती मुखर्जी बांग्ला फिल्म संगीत की टॉप की सिंगर में शुमार रहीं। यहां उन्होंने बांग्ला फिल्मों की तमाम टॉप हीरोइंस के लिए अपनी आवाज दी। शर्मिला टैगोर, संध्या, अपर्णा सेन, देवश्री राय, तनुजा, सभी के लिए आरती मुखर्जी ने गाने गाए। और सिर्फ बांग्ला ही नहीं, उड़िया, असमी, गुजराती और मणिपुरी भाषा के गीतों को भी सफलतापूर्वक आरती मुखर्जी ने गाया। सन 70 से 80 के बीच का समय आरती मुखर्जी की सफलता का समय था और इसी समय यानी 1975 में आरती मुखर्जी को एक ऐसी हिंदी फिल्म मिली जिसने हिंदी सिने संगीत में भी आरती मुखर्जी का नाम स्थापित कर दिया। फिल्म थी गीत।

गीत भी अन्य गीतों की तरह मकबूल हुआ। राशि प्रोडक्शंस की फिल्म थी, संगीतकार थे रविंद्र जैन। इसी प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म तपस्या, जिसे एक बार फिर रविंद्र जैन ही स्वरबद्ध कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बार फिर आरती मुखर्जी को एक गीत दिया और इस बार गाना था किशोर कुमार की आवाज में और फिल्म थी तपस्या।

भी संगीत प्रेमियों ने खूब सराहा। अब आपको ये भी बता दें कि हिंदी फिल्म संगीत जिसे छोड़कर आरती मुखर्जी चली गई थी, उसी के एक हिंदी गीत ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया। लेकिन उस गीत से पहले एक और हिट गाना आपको सुनवाते हैं, आरती मुखर्जी ने जिसे मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया 1965 में, और उसे भी आपने बेहद सराहा था। सुनिए दो दिल फिल्म का ये गाना।

हाँ, तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार की। बात उन दिनों की है जबकि आरती मुखर्जी को लगभग सभी भाषाओं में गीत गाने के मौके मिल रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 70 से 80 का दशक आरती मुखर्जी की सफलता का दशक था, तो हिंदी फिल्मों के गीत भी उस समय मिल रहे थे, हिट हो रहे थे। उसी दौरान 1983 में आरती मुखर्जी से राहुल देव बर्मन ने अपनी फिल्म मासूम के लिए एक गीत गवाया। ये था

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के अंतर्गत बलरामपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास सड़कों पर दिखना चाहिए। जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ आज से शुरू होगा और देशभर में आज से अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के दौरान बलरामपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जवाबदेही और जनसेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि

सरकार का विकास सड़कों पर दिखना चाहिए और बारिश से पहले सभी खराब सड़कों की मरम्मत पूरी की जाए। बैठक में सड़क मरम्मत की सही जानकारी नहीं दे पाने पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा भी की, जहां टोल फ्री नंबर पर लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने राजस्व मामलों के समयबद्ध निराकरण, पेयजल व्यवस्था, किसानों के लिए बीज और खाद उपलब्ध कराने तथा अधिकारियों को जनता से सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए। जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में दो दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ आज से शुरू होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ अब से कुछ देर में राज्यपाल रमेश डेका करेंगे। इस आयोजन में बस्तर संभाग सहित विभिन्न क्षेत्रों से 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप के साथ ही कई विषय विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस दौरान पद्मश्री के लिए चयनित बुधरी ताती का सम्मान किया जाएगा और इनोवेशन एंड स्टार्टअप कंपेडियम 2026 का विमोचन होगा। आयोजन के दौरान तीन तकनीकी सत्रों में युवाओं को नवाचार, स्टार्टअप और रोजगार से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। कवर्धा जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये युवक एक कार में सवार होकर रायपुर से पंडरिया एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पांडा तराई नदी में उनकी कार अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोंडागांव जिले के डोंगरीगुड़ा के राउतपारा में शादी समारोह के भोज के बाद 46 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। भोज में शामिल लोगों को अगले दिन उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी मरीजों को उपचार किया। गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में भोजन से संक्रमण के कारण फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई गई है। स्वास्थ्य विभाग गांव में निगरानी कर रहा है। देशभर में आज से अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव नई दिल्ली में अग्नि सप्ताह का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश में टॉप 10 में जगह बनाने वाले रायगढ़ जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में श्री चौधरी ने विद्यार्थियों को लैपटॉप, मार्गदर्शिका पुस्तक और 25,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की। गौरतलब है कि जिले के 8 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान बनाकर जिले का गौरव बढ़ाया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट का दौर शुरू होने के आसार जताए हैं। 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। ताजा रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा, तमिलनाडु में टीवीके, असम में भाजपा, केरल में यूडीएफ और पुदुचेरी में एनडीए आगे चल रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन तिहार के अंतर्गत बलरामपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास सड़कों पर दिखना चाहिए। जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ आज से शुरू होगा और देशभर में आज से अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। प्रस्तुति है श्वेता पांडे की।
1: गर्मी के दिन आइस, लू के झोंका चलत हे, घाम के ताव म धरती घलो तपत हे। पानी के महत्तम अब समझ म आथे, छाव अउ मटका के पानी मन ला भाथे। सुनो संगी हो, अपन सेहत के रखो ख्याल, गर्मी मा बाचे रहिबो तब रही जिंदगी खुशहाल। तो संगवारी हो, एही बात के संगे संग अब शुरुआत करत हन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत के। मैं हूँ आप मन के रेडियो

0: तानिन श्वेता पांडे औ ए कार्यक्रम निर्माण मा तकनीकी सहयोग दिए हवय सौरभ केशरवानी जी मन ह। तो चला संगवारी हो देखत हन कि ए कार्यक्रम मा पहला फोन कौन श्रोता के आए हवय। हेलो
1: हेलो
0: तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम मा स्वागत है आप मन के।
1: राम राम दीदी।
0: राम राम भैया कौन बोलत हो।
1: नारायण पटेल बोलत हो। कछाल है दीदी।
0: का हाल चाल है।
1: बस ठीक है दीदी। हवा पानी धान में सोवत है।
0: सब जगह ऐसे ही मौसम जिन्हे परिवर्तन तो लेवत है।
1: हाँ गर्मी दीदी पानी गिरवे कर ही।
0: का करते हो नारायण भी आप खेती किसानी करते हो।
1: हाँ बस वही दिक्कत दीदी।
0: अच्छा
1: वाला।
0: हाँ
1: फिर ऐसे संगीत भी मैं जाता तबलो बजा कर रामायण उसे माँ।
0: सीखे हो आप अलग से।
1: हाँ सीखे रहे दीदी सीखे रहे।
0: बहुत बढ़िया है संगीत में रुचि है आपके। अब का बताना चाहते हो आप नारायण भैया।
1: ठीक है दीदी अब धान के सोवत है लुवाई काम करो बाद में हार्वेस्टर वो नहीं था जहाँ से लोग ज्यादा गिर जाए था। ज्यादा गिरते घर से ज्यादा हूँ माऊ।
0: ठीक है नारायण भैया
1: बोले जी मैं लगा था दीदी मैं सुनता ज्यादा।
0: अच्छा
1: बोले जी मैं लगा था सुनता ज्यादा वो सुनता मैं फिर डर आता था वो।
0: हाँ इसने सुनत रहिया गुनत रहिया और हमर से बात करत रहिया फोन करके।
1: वही ना सुन के बजाता तबला तक दीदी अब सीख क्या क्या गाने वहाँ को भी नहीं लगा तक।
0: हाँ बढ़िया भैया
1: उनके सीखे तबियत बजाबे आप सीखो बार थोड़े बजाबे।
0: ठीक बात बोलो तो आप। ठीक है नारायण भैया।
1: हाँ दीदी।
0: राम राम जय जोहार भैया।
1: राम राम दीदी।
0: हेलो।
2: हाँ जी राम राम।
0: राम राम भैया
2: जी मैं मनोज कुमार साहू बोला था मेघा पारा लोर मिले।
0: का हाल चाल है भैया।
2: मस्त रहने दे मस्त गर्मी का आनंद ले
0: गर्मी के भी आनंद लेते हो आप।
2: हाँ जी गर्मी का आनंद आते सब अपन अपन समय सब आनंद के
0: लेकिन बहुत सा बचाव भी करना पड़ते।
2: हाँ लू से मचे बार आजकल तो हीट वेव इतना बढ़ गए है कभी कभी। हाँ लेकिन कस्टिक पानी ठंडा कर देते कद को गर्मी ला।
0: हाँ वो तो हवा कई जने हवा जैसे ब्लड प्रेशर के कई मरीज हवा उमन बार बहुत नुकसान है।
2: सुबह 8 बजे तक विटामिन डी मिलते है तो शरीर के लिए साइड इफेक्ट आए।
0: हाँ सामान्य इंसान पर तो घालत है होला तो फिर जिला थोड़ा हाँ, परेशानी है शारीरिक रूप से
2: ज्यादा धूप से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाते ना।
0: हाँ बिल्कुल सही बात बोला था।
2: उतके खा जितका पच जाए मतलब उतके धूप ले जितका सही ले।
0: हाँ का करते मनोज भी आप।
2: जी मोर में दुकान है नानकन।
0: अच्छा अच्छा
2: वही मरी था खेती बाड़ी भी करता।
0: खेती बाड़ी दुकान दोनों करते
2: हाँ।
0: बढ़िया गर्मी में ख्याल रखो अपन भी अपन घर के लड़का मन जितका भी परिवार।
2: हाँ जी हाँ हम दोस्तों मरी था अब लड़का मन ले पर आता कि भाई ज्यादा धूप में नहीं घूमना है।
0: हाँ।
2: बस टूल ढाल कर ले कर पढ़ाई लिखाई भी ध्यान दे कर टच में रह कर ऐसे कर टेम्परेचर पहले ले ज्यादा बढ़ भी चुके हैं।
0: ठीक बोला था जनसंख्या भी बढ़त है और हरियाली कम
2: पर्यावरण भी है ना वाकई में पेड़ पौधा का रक्षा नहीं कर पाता ना। आज के बुद्धिजी मानव ना अपन गोल काटा थे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही हानिप्रद है।
0: बिल्कुल सही बात बोला था आप।
2: मैं तो कथा है लगे 302 लगा दे पेड़ कटैया ऊपर
0: आपका गंभीर हो भैया आप भी मतलब पौधारोपण करत हो ना तब तो।
2: हमारा तो बाग है ना आमक बाग है हम के जान नहीं लेकर मैं सब खाद पियत रही थे।
0: हाँ।
2: बन जाते खाते कबू जाता तो ले आता दो चार ठीक।
0: अच्छा अच्छा
2: पेड़ लगा था हमारा मोर तो एकदम मस्त पेड़ है दही जान था गावा।
0: हाँ हाँ
2: जबरदस्त पेड़ है
0: बहुत बढ़िया फल है वह।
2: हाँ फलते मस्त मैं तो बारी मन भी कई थी कब से बड़े वाले कब से लगाए हैं आमा लगाए हैं।
0: अच्छा अच्छा
2: अभी नोनी के अभी पढ़ते ना मोन नोनी है।
0: और
2: सब लड़का मन अभी माँ के नाम एक पेड़ नहीं लगवाई है।
0: हाँ हाँ हाँ नाम
2: हाँ तो लगा लगा है वही वो दिन नोनी कहत रहे
0: हाँ।
2: एक था फोटो खींच के और डाल दे तू हर ग्रुप में इसे के क्या।
0: अच्छा
2: बढ़ा थे मस्त रोज पानी डालता
0: बहुत बढ़िया काम करे हो भैया आप मन। ठीक है मनोज भैया देखा था ना हमारे और श्रोता मन जिन्हें लाइन लगे है फोन के।
2: अब गाना तो पसंद नहीं बताए हैं
0: पसंद तो हमर पसंद बजी भैया जेना आप लभी पसंद आई कार्यक्रम के नाम है तुम्हार गोठ हमर गीत।
2: धन्यवाद
0: ठीक है
2: शुक्र से सुना दे आप मनता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल भैया राम राम
2: राम राम राम राम।
0: हेलो
3: हाँ तुम्हार गोठ हमर गीत।
0: बिल्कुल तुम्हार गोठ हमर गीत कार्यक्रम में लगे है फोन आपके भैया।
3: हाँ मैं रानी राम नगरी जिला धमतरी कुमार साहू बोलती।
0: का हाल

0: चाल है खिलेश भैया?
1: सब बढ़िया है। और धूप अच्छा जाना से अभी।
0: हाँ,
1: और कोई कोई कोती सुने में आते कि पानी गलत गिर रखी है हवा दूटा, लेकिन हमारे कोती ऐसे कुछ ही नहीं है। अच्छा हमें करा थे चार चार
0: अच्छा।
1: आठ लोग।
0: हाँ, तो वो
1: नहीं
0: तरफ हवा पानी नहीं है?
1: रात में थोड़ा सा हवा दूटा तरीके और लाइट घलक गोल हो गए 1 घंटा ले सुनते है ना, तो भारी अब बकास लगी से गर्मी पसीना छुटी तो अच्छा तो मैं यहाँ से सुती हूँ 1 घंटा पहले नहीं तो फोन करे इसे
0: अरे,
1: टाइप के लिए। हाँ
0: अब तो छत में भी जावे तो गरम गरम हवा लगते एकदम।
1: गरम गरम हवा लगती
0: हाँ,
1: है।
0: पहली जब हमन छोटे छोटे रहन तो छत में सोवन, आंगन में सोवन, तो रात में अतका अच्छा नींद आवे, अतका ठंडा ठंडा हवा चले गर्मी समय में।
1: हाँ, गर्मी समय में पूरा दुआरे से मैं सुते चले पूरा खोपे निकाल से रोते लाइन से सुते रहा। और पहले उसका मच्छर भी घड़क नहीं रहते अच्छा लगे, अब तो मच्छर घड़क ऐसे खुला में सूत नहीं सकते इसे टाइप तो मच्छर पनप गए। पहले
0: ठीक बात बोला था आप, मच्छर बहुत ज्यादा ओकर प्रकोप बढ़त जाते।
1: पानी के उपयोग भी कम करन और घर घर नल की सुविधा नहीं रहा है और सब नहाए खोरे बगल तरिया नरवा में जान और वहां से नहाए खोर के आज अब तो घरे में नहाना खोरना है चौकर से काहे पानी में गंदगी पानी के ढेर लग जा रहे थे तो वहीं से मच्छर उनका नफ ठीक था।
0: खिलेश भाई, का करते हो आप?
1: मैं पशुधन विकास विभाग में परिचारक हूँ
0: अच्छा।
1: और अभी हम टीकाकरण के करे हैं खुरक तत्व के टीका लगाए हैं जितना मवेशी है सेमला।
0: बढ़िया है, बढ़िया काम करत हो आप।
1: और एक थन चीज है अभी बर बिहाव चलत
0: हाँ,
1: है तो कई घर शादी होते ना तहन बांसे के भात साग मतलब एकदम खुल्ला में छोड़ देती तब काहे छोला दी नहीं तो मवेशी मन गलत खुल्ला है तो मैंने जाके खा देती और तबियत खराब हो जाती एकदम फूट पाई नहीं। तो
0: बिल्कुल
1: ये बात ला कहना चाहती कि जैसे जिकर घर बर बिहाव हो चाहे छठी हो कहीं गलत तो जो भात साग बांसे तो गड्ढा खोद के पाट देने चाहिए ताकि खुला जो मवेशी रहते वो मत खाए एक तो खत्म गलत हो जाते। हाँ
0: तो हमारे जतका भी श्रोता भाई बहनी मन है, जहाँ तक हमारे प्रसारण जावत है और जेन भी ऐप के माध्यम ले सुना थे, तो ये खिलेश भैया के बात ला जरूर मानू आप मन सब और आस पास घलो बगराहू।
1: हाँ मैं तो जी हाँ जी हम बर बिहाव होते थे ओकर ले आगू जी तो मैं पहुंच गए मान ले कहीं तो
0: हाँ
1: मतलब पहले चेता दे तो देखो भाई तुम्हारे बिहाव है बाकी तेल मत फेंक हुए ऐसे कहते।
0: ठीक करते हो भैया, बहुत अच्छा जानकारी दिए हो आप, बहुत अच्छा संदेश है आपके।
1: हाँ
0: और चला बहुत बढ़िया लगे से आपसे गोट बात करके, आपके संदेश पहुंचे थे कार्यक्रम के माध्यम ले, और इसने फोन लगात रही है और इसने अच्छा अच्छा संदेश देत रही है आप। राम राम भैया।
1: धन्यवाद राम राम।
0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार भैया, जय जोहार, राम राम।
1: राम राम। लक्ष्मण कुमार शेखर बोला था ग्राम मोहरा जिला बलौदाबाजार से। हाँ
0: का हाल चाल है बतावा?
1: तो सब बढ़िया दीदी ऐसे तो मैं यहाँ कर्नाटक में रहता में है। हाँ
0: अच्छा, वहाँ कैसे रही था भैया?
1: यहाँ इधर ईटा बनाता दीदी हम उन्हें। हाँ
0: अच्छा, और यहाँ खेती बाड़ी नहीं है बलौदा बाजार तरफ?
1: नहीं हमारा तो कुछ नहीं है खेत का कुछ नहीं है।
0: तो परिवार सहित रहा था वहाँ कि यहाँ कोई हवा गांव में आप मन के?
1: गांव है भाई माँ बाप बाबू मन है भाई। हाँ हम परिवार कहीं है भाई।
0: तो कैसे लगते वहाँ?
1: यहाँ तो ऐसे अच्छा लगता दीदी।
0: हाँ,
1: हाँ गर्मी भी एहसास नहीं हो ना ठंड की भी एहसास नहीं हो दोनों नॉर्मल रहते। हाँ
0: तो अभी आप वही हवा?
1: यही है। हाँ
0: मतलब ऐप के माध्यम से सुनते हो आप रेडियो?
1: मोबाइल के ऐप से सुनते ना
0: बहुत बढ़िया है, काम करत करत। हाँ
1: दीदी मगर मेरे पहली बार फोन लगे है मोर है अब
0: हाँ
1: उसका समझ में नहीं कि छत्तीसगढ़ी में लगे कि हिंदी लगे है
0: छत्तीसगढ़ी में लगे है। कार्यक्रम के नाम है भैया तुहर गोठ हमर गीत,
1: दीदी मैं कि हिंदी में कि छत्तीसगढ़ी में इसी के ऐसा
0: छत्तीसगढ़ी में है भैया।
1: का पहली बार लगा ना मैं पहली बार पहले सोचा मैं जगह अभी लगाए थे लगे थे
0: अच्छा,
1: ऐसा सुनते ही था मैं मगर उससे ज्यादा ऐसे बिलासपुर है अम्बिकापुर है जगदलपुर रायपुर है सब ऐसे सुनते ही समय है मगर कई कई बार इसे भुला जाता मैं है नाम से पूछे लगी सुन रहा है।

0: कोई बात नहीं भैया, बहुत बढ़िया है।
1: हमारे बिलासपुर कोती इलाका मौसम के क्या हाल चाल है दीदी?
0: अभी तो दोपहर के कभी संझाकन आंधी पानी गर्रा इसे चरत रही थे।
1: गर्मी नॉर्मल है कि तेज है?
0: गर्मी तो बहुत ज्यादा है, घाम अच्छा बढ़े हुए है, कतको पानी गिर जाही लेकिन घाम है जना शांत नहीं हुआ थे। थोड़ा समय बार अच्छा लगते पर ओखर बाद फिर वही हाल हो जाते, गर्मी है एकदम बेहाल कर देते।
1: गर्मी अब कहाँ जाएगी दीदी, धूप है, घाम उसने करा से बता है
0: ठीक
1: इतनी
0: है
1: घाम।
0: लक्ष्मण भैया, बहुत अच्छा लगी से गोट बात करके आपसे, है
1: हाँ दीदी,
0: ना, अतका दूर महवा फिर भी याद करे हमन ला हमर कार्यक्रम ला, तो एक हर
1: हाँ
0: बात बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन के, इसने हमर कार्यक्रम में सुनत रही हो ऐप के माध्यम ले,
1: हाँ
0: और फोन भी
1: दीदी,
0: लगात रही हो कार्यक्रम में।
1: हाँ
0: ठीक है, आप मन से गोट बात करे के बाद आप मन ला सुनवात हन ए सुघर असन गीत ला,
1: धन्यवाद दीदी।
0: ए गीत ला गाए है तीरथ राम गढ़ेवाल और साथी मन।

0: राम राम
1: राम राम भैया, का हाल चाल आप मन के?
0: बढ़िया चाल है, बदलत मौसम माँ।
1: हाँ,
0: कल भी यहाँ पानी पड़ गए, बहुत बढ़िया मौसम, थोड़ा बढ़िया सुहाना हो गया है। जैसे आपके ब्लॉक आकाशवाणी कार्यक्रम बढ़िया सुहाना लाजवाब मजेदार होते हैं।
1: अब आप नाम नहीं बोलू तो हम तो आपके नाम नहीं बोलबो ना भैया।

0: जतका श्रोता मितान मन हे हमन हन अच्छा से पहचान था ना आपकी आवाज ला
1: बिल्कुल
0: कहा चलत है वो नारवानी भैया
1: बस अभी तो गा के बीच शादी ब्याह के मौसम भी आवा है जेठ महीना में हालांकि थोड़ा कम शादी होते
0: हाँ
1: लेकिन फिर भी कई शादी है हमारे सिंधी समाज में तो बहुत शादियाँ हैं
0: और बतावा
1: सब बने बने बस गर्मी के भी आनंद देवथन कुछ ठंडाई पी के गन्ना सीखते हुए ककड़ी कलिंदर खरबूजा तरबूजा सब खाते हुए मजा लेते हैं ये मौसम तो का है अब खाना तो अच्छा लगे नहीं बस खाली पियो पियो कुछ ठंडा ठंडा चीज खाओ अच्छा भी है सेहत बढ़िया से ज्यादा तली चीजें नहीं खाना चाहिए मौसम में
0: हाँ पेट में ज्यादा फिर गर्मी करते है ना अंदर ही अंदर शरीर
1: बिल्कुल पेट गर्म हो जाते लूज मोशन हो जाते
0: सुपाच्य भोजन है तेल करना चाहिए
1: हाँ सुपाच्य भोजन करना चाहिए बाजार के बीच नहीं खाना चाहिए
0: अब भाई तो बढ़िया आम के पना खट्टा मीठा वाले भी अलग फिर कच्चा आम के पना अलग
1: बिल्कुल
0: छाछ है लस्सी है गन्ना
1: हाँ, एक तो भरपूर ठंड बिल्कुल एक तो भरपूर ठंड करना चाहिए फिर फलों के राजा आम भी आ गए है तीन महीने भरपूर ठंड करना चाहिए उसका भी आपको क्या हाल चाल है
0: हमारे हाल चाल एकदम बढ़िया है
1: बढ़िया तो है जो आपका श्रोता मौसम बात कर सो तो हाल तो बने जाते हैं
0: बिल्कुल सही बात बोला था आप
1: अमन कार्यक्रम सुनते तो हाल बड़े रहते हैं आप अमन कार्यक्रम पेश करता तो हाल चाल बड़े रहते
0: ठीक बोला था आप ठीक है नारवानी भैया फोन लगाए पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के
1: जी धन्यवाद
0: राम राम
1: राम राम जय जोहार
0: जय जोहार हेलो
2: हाँ दीदी राम राम जय जोहार हो
0: अरे राम राम भैया जय जोहार
2: आशा करा थन कि आप मन तो बहुत बढ़िया कुशल मंगल हुई है आकाशवाणी बिलासपुर परिवार मन आशा करा थन भाई के बढ़िया हुई है ऐसे कही के
0: एकदम बढ़िया है भैया अपन सुघर नाम और अपन गांव के नाम बता देवा ताकि हमारे और जिन श्रोता भाई बहनी मन है तेन मन सुन ले भाई
2: हाँ दीदी तो मैं हमें गोछावा था दीदी ग्राम पहुँच ले वो जानकी चांपा जिला से राधेलाल गोछावा था दीदी और निमित मन के तो मैं प्रिया निमित सोता हूँ दीदी
0: हाँ तो भैया हम तो आवाज ला पहचान डाले हैं चिन्ह डाले हैं
2: हाँ हाँ दीदी तो आने माना जनवाना भी जरूरी रहते हाँ ठीक है हाँ हाँ हाँ मोदी नाना आप मन ले आओ फोन लगाए रहे दीदी 26 तारीख के
0: 26 तारीख के
2: हमारे लग नहीं पाई इसकी दवा दूसरे और सोता मन से रही से लाइन में लग नहीं पाई
0: व्यस्त हो ही
2: फोन न्योता देवो कही के ना लगा रहे दीदी बिहाव करे हैं नोनी बाबू दोनों जन के
0: अच्छा दोनों जन के
2: हाँ दोनों जन एक संग के नोनी बाबू मन के बिहाव करे हैं वही आप मतलब न्योता देवो बिलासपुर आकाशवाणी सब परिवार मतलब न्योता दे बार ना वही लगा रहे हैं व्यस्त रही है
0: अच्छा अच्छा अच्छा
2: हाँ तो दीदी हमर मन के खैर संतोष करें का है हम ही एक जन नहीं है सोरता बहुत जन है इसे कही के
0: ठीक है लेकिन आशीर्वाद है नोनी बाबू दोनों जन ला नया
2: हाँ दीदी आप मन के हाँ हाँ दीदी आप मन के आशीर्वाद सदा हमेशा बने रहे हाँ और दीदी हम एक चुनाव गोट से आना चाहत रहे जम्मो सोरता भाई बहनी मल्ला
0: का भैया बतावा
2: अभी बहुत ज्यादा गर्मी के अभी चला के दीदी एमा लू लगे के भी डर है कहूँ कति जला गाँव गाँव तरी जाए बारे दीदी आजकल भारी अकन तो बड़ बिहाव हुआ थे
0: हाँ बिल्कुल सही बात बोला था आप
2: हाँ आदमी नहीं पूरा थे दीदी वो आदमी जाए बार आदमी नहीं पूरा थे ना तो कहना है कहूँ कति यह जहा न सब जान सुबेरे से 5-6 बजे ले रवाना हो जावा जो जगह पहुँचना है तुम जगह बहुत ज्यादा हो गए तो 10 बजे हाँ और संगे संग गोंदली रख लेवा दीदी एक थान और संगे संग पानी के बोतल रख लेवा दीदी
0: ठीक बोले तो अब
2: हाँ और सिर मा कपड़ा ला बिल्कुल ढाक लेवा हाँ इतका के करे बिना अपन घर ले परेशान झान हो दीदी वो वही कहना चाहते हैं हमारे जम्मो श्रोता संगवारी मन ला
0: ठीक बात बोले तो भैया हमारे श्रोता संगवारी मन सब सुनत है
2: हाँ और केकड़ी हो खीरा हो आम हो पपीता हो ए मन के खूब सेवन कराए
0: बिल्कुल
2: ताबार के हर हमेशा शरीर में पानी बने रहे दीदी पानी के कमी कभी नहीं होना चाहिए टाइम टाइम में कम से कम अरे एक पौवा पानी नहीं पी सकते तो कम से कम 100 ग्राम पानी पीना चाहिए
0: ठीक बोले थे भैया
2: हाँ तब हमार कहना पानी कभी नहीं कमी होना चाहिए ऐसने कह के हमारे सही सुझाव रही से दीदी जम्मो श्रोता संगवारी मन से
0: बहुत बढ़िया सुझाव है और फोन लगाए पर बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके

0: अच्छा लगा से आपसे बहुत बात सुनके।
1: मतलब धन्यवाद है, हाँ आपको मतलब धन्यवाद है, बिलासपुर आकाशवाणी मतलब ढेर सारा शुभकामनाएं है दीदी।
0: हाँ भैया, राम राम भैया, जय जोहार।
1: राम राम, जय जोहार।
0: हेलो
2: हेलो,
0: कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत मा स्वागत है आप मन के।
2: हाँ, राम राम जी, जय जोहार।
0: राम राम भैया, जय जोहार। अपन सुघर नाम बता देवा, कहाँ ले बोलत हो?
2: हाँ दीदी, मैं लौटना पारा मोहल्ला ग्राम उतरदा ले बोला था, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ ले। कई फीट लगा रहे दीदी,
0: नाम तो बतावा भैया, नाम नहीं बताए हो आप।
2: मेघनाथ पटेल।
0: मेघनाथ भैया, का हाल चाल है बताओ।
2: बस दीदी, पानी गिरा थे तेनू पान टोरबो का था, तो पानी गिर देते है तो हाँ। नाम से भी टोरे और नहीं जा, पान बस चालू की नहीं हुआ है।
0: अच्छा, काम का करते हो भैया आप?
2: मैं टेलर काम करता हूँ, लेकिन अभी बिहतरा नहीं चले भी, तो तेनू पत्ता में चल देता हूँ चेकर में। और कई फिर लगा हूँ।
0: हाँ, तभी तो बर बिया अभी भी चलते छे, तो काम तो मिले हो ही।
2: हमार पटेल सगम थोड़ा कम काम मिलते हैं दीदी का नाम से।
0: अच्छा अच्छा,
2: अक्टी तक रहते ज्यादा बर बिहाव है। और मोर संगी के नाम लेते हैं बोईदा से है, रेवती रमण तिवारी जी, और मस्त सुनते रेडियो।
0: अच्छा ठीक है मेघनाथ भैया।
2: हाँ,
0: फोन लगी से आप मन के, हमन बात कर लिए ना आपसे, गोट बात हो गया आपसे, इसने मया दुलार बना के फोन करिया, चिट्ठी लिखिया कार्यक्रम पर।
2: हाँ,
0: राम राम भैया।
2: राम राम दीदी।
0: हेलो।
3: हाँ दीदी, राम राम।
0: राम राम भैया।
3: चिंडारे खा दीदी।
0: हाँ चिंडारे हो मैं, लेकिन आप जिन चार लाइन जिन गुनगुना के अपन नाम बोलता हो होला सुनना चाहता नमन।
3: छत्तीसगढ़ के छत्तीस बानी छत्तीस थावा जात, बिन चटनी की मिठाई नहीं बासी हो के भात। आज अब्बर कन घोट बात लेके आए, शांति नगर भाटापारा के मिलाऊ कुलदीप दास, मिलाऊ कुलदीप दास।
0: यही तो सुनना चाहते रहे नमन।
3: धन्यवाद दीदी।
0: का हाल चाल है?
3: सब ठीक है दीदी, शादी बर बिहार चली से।
0: काली
3: जुआर भतीजा के 25वां सालगिरह मना है।
0: अच्छा,
3: जुड़ता आगे दीदी मन से आज बात करना है कैसे?
0: बिल्कुल, बहुत सही टाइम में सुरता आए है।
3: तो थोड़ा गुनगुनाए बारे का दीदी?
0: एकदम एकदम गुनगुनावा, तहां ओखर बाद समय समाप्त हो जाही।
3: कैसे? काली

आलिबू तेना के बाजार मिलाया भी जैबो के अमली फारे है चेपटी जैबो के अमली फारे है चेपटी दूर ऊपर हवाई माया भीतर कपटी रे निर्मोही घूमिलाया भी पाली बूटे ना के बाजार मिलाया भी चंदा।

0: कैसे मिलाऊं मुर्गाओं पालिका रे सौरंगी घूमे लाया भी पाली बुटेना के बाजार मिले लाया भी हटवी बाजार बिसाए तारा हो हटवी बाजार बिसाए तारा हो अब तो रेता मैं गोरी औ भाठा पारा कारे सौरंगी घूमे लाया भी पाली बुटेना के बाजार मिले लाया भी आज भी
1: बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। एक कार्यक्रम हमार समाप्ति की ओर है, है ना। और बेरा हुआ थे तो ऐसे मैं पीड़ित अपन बना के इसने फोन लगात रही है।
0: दीदी मैं 35 साल आकाशवाणी बिलासपुर ऐसे गुजारे हाँ, हंसी खुशी एकदम दिल चाह के और मोला ज्ञान बात बहुत मिले है वोकर से। और समय तो नहीं, बहुत कुछ मैं वोकर बारे में बोलना चाहत रहे लेकिन यह तक समाप्त करत हन। और सबो मनला मोर बहुत बहुत धन्यवाद है, जब का कंप्यूटर है तेन मनला कविता तो अभी नहीं बना कर बारे में हाँ। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देवत हमारा,
1: ठीक है लिख के भेज दिया अपन कविता ला कार्यक्रम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद
1: हाँ। और लेवा आपसे गोट बात करे के बाद अब कार्यक्रम ले विदा लेहे से पहले

0: सुघर असन गीत के बाद अब विदा देवा कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत ले अपन रेडियो मितानिन श्वेता पांडेला राम राम जय जोहार संगवारी हो।
1: फोन इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुति थी श्वेता पांडे की। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म जीने की राह से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी गीतकार हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिख भेजा है ग्राम बगला मटिया बलौद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रियंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे ने। इंदिरा नगर रायगढ़ से हमें पत्र भेजा है शेख अब्दुल सलीम बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर मोहम्मद सलीम, आसिफ नईम रज़ा। बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता बेबी, स्वाति माखीजा, पूजा, शरद और इनका संपूर्ण माखीजा।

परिवार इस गीत की फरमाइश कर रहा है। इसी गीत के पसंदकर्ता हैं पारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंछोर, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश आशीष रवि सोनू मोनू कान्हा आदित्य देवांगन, बमहर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम धनेश्वरी महेश्वरी कुमारी मिल्की बेबी मीनाक्षी निधि देवांगन, मुकाम फुलसर कटघोरा जिला कोरबा से हमें पत्र भेजा है नैन दास शीला दीवान, ओम प्रकाश रुक्मणि जयप्रकाश प्रीति दीवान, सिद्धांत शौर्य कुमारी सानवी और इनका संपूर्ण परिवार इस गीत की फरमाइश कर रहा है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सबकी फरमाइश पर।

का अगला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म मुसाफिर से। सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं विशाल और शिखर। और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिख भेजा है हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से कमलेश साहू, हरिंद्र साहू, सुशील भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी, शुभम, सौरभ रावत और नीरज रावत ने, रायपुर से सोमनाथ यादव, वंदना, शीला, किरण, अनीता, बबीता यादव, भाटापारा से श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा, रावण भाटा भाटापारा से बबला यादव, रिखी राम, कमलेश्वरी यादव भाटापारा दतरेंगी से ही हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, ज्ञावेंद्र कुमार, बेदबाई वर्मा, सुमिता, योगिता और फलेश्वरी वर्मा, ग्राम महमदपुर, भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त, साहेब बंदगी भाटापारा से मिलो मानिकपुरी, संतोष, संदीप, अजीत, लक्की, भार्गव, नीलक्ष, विवान मानिकपुरी, सत्य कबीर भाटापारा से बिरजा मानिकपुरी, संजना, संगीता, अंजलि और चारू मानिकपुरी का भी हमें पत्र आया है। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म सूरज और चंदा का गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी गीतकार थे, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिख भेजा था ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण चंद्रेश कुमार चंद्रकांता शशिकांता प्रजापति ने। दतरिंगी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मया राम रजक, पुनेश्वर फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाफिया, कुमारी तानिया रजक ने। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र सेन के साथ में हैं खुशी रौनक सेन। भाटापारा से बचका मल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवा राम, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेख राम, राधे श्याम, लतेल साहू, मारवाणी कुआ, भाटापारा से सिया राम, अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ, ग्राम कातलबोड़ से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर, रीतु, डोमन यादव, राम, शीला यादव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने भी हमें पत्र भेजा था। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं यातायात पुलिस बिलासपुर की ट्रैफिक अपडेट्स।
1: नमस्कार मित्रों, हमेशा की तरह यात्रा संबंधी सूचनाओं के साथ कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर के लिए मैं हूं उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सभी गांव में, सभी कस्बे में या पूरे शहर में, कुल मिलाकर संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। जिले की यातायात व्यवस्था हमेशा सुगम एवं सुरक्षित बनी रहे, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है हमेशा यातायात नियमों को अपना कर चले। मित्रों, आप किसी भी वाहन के साथ यात्रा में हो तब सड़क सुरक्षा की नजर से हमेशा वाहन में मानक कलपुर्जे या उपकरण का होना नितांत आवश्यक है, किंतु हमारी नई पीढ़ी आजकल के चकाचौंध में अपने वाहनों में अमानक कलपुर्जे या उपकरण का उपयोग कर रहे हैं जो पूर्णतः असुरक्षित है, खतरनाक है। यही कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है जिसमें लोग घायल हो रहे हैं या मारे भी जा रहे हैं। जैसे वाहन कोई भी हो, हमेशा उचित एवं सुरक्षित प्रकार से तो मानक बल्ब का उपयोग करना चाहिए, किंतु अक्सर लोग मेड इन चाइना के चकाचौंध करने वाले बल्ब का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही हेडलाइट के अतिरिक्त कुछ और अलग से आंखों में चुभने वाला तेज प्रकाश युक्त बल्ब लगाते हैं। इन बल्बों का तेज अमानक प्रकाश आंखों को कष्ट पहुंचाता है तथा रात के समय लोग अपने वाहन में अतिरिक्त अमानक प्रकाश वाला अमानक सर्च लाइट लगा कर चलते हैं। इसके प्रकाश से सामने से आ रहे व्यक्ति को सड़क में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जिससे किसी भी गंभीर सड़क दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः बल्ब मानक लगाएं।

0: मानक नहीं। इसी प्रकार बुलेट जैसे दोपहिया वाहन में लोग मानक साइलेंसर को निकालकर तेज कर्कश एवं कान फोड़ो आवाज वाले अमानक साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करते चलते हैं, जो सर्वथा अनुपयुक्त है, घातक हो सकता है। इस अमानक साइलेंसर की तेज कर्कश आवाज नवजात शिशु, बीमार व्यक्ति या वृद्ध के लिए प्राण घातक हो सकती है। अतः हमेशा मानक साइलेंसर का उपयोग करें, अमानक नहीं। वैसे ही लोग अपने वाहनों में अमानक हॉर्न लगाकर शोर शराबा करते, कान फोड़ू एवं कर्कश आवाज के साथ चलते हैं, जो सबके लिए कष्टप्रद है। अतः हमेशा अपने वाहनों में मानक हॉर्न का उपयोग करें, अमानक नहीं। हमेशा यात्रा नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: कार्यक्रम आपकी पसंद अभी आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म सपने से। चित्रा, शंकर महादेवन और श्रीनी की आवाज़ों में जावेद अख्तर गीतकार हैं, संगीतकार हैं AR रहमान। और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिख भेजा है ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार साहू, कीर्ति संध्या और डिकेश कुमार साहू के साथ में है वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज़ आप हैं लुतरा खमरिया से, सुभाष वाड़ भाटापारा से हमें पत्र भेजा है अमृता यादव, पार्वती, ईश्वरी, लक्ष्मी कुमारी, प्रेरणा, डिम्पी यादव ने, हदबंद नेवधा से दुलारी यादव, प्रियंका कुमारी, प्रीति यादव, उमेश्वरी और सुनती यादव ने, रमज़ान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयान, अल्फेज, हजीरून, निशा और सादिया खान आप हैं शांति नगर भाटापारा से, बिल्हा से शेख नासिर और महजबीन बानो का भी हमें पत्र आया है, दतरेंगी भाटापारा से नोखीलाल वर्मा, हीरा मणि, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि राजेश और शीतल राजेश का भी हमें पत्र आया है इसी गीत के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सबकी फरमाइश पर फिल्म सपने से।

फिल्म सपने का गीत अभी आपने सुना, चित्रा, शंकर महादेवन और श्रीनी की आवाज़ों में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद का ये अंक यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम।
2: जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी शिक्षाप्रद और मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो आइए सुनते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: समय पर न समझ आने वाली बातें आगे चलकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं, क्योंकि इनसे हम या तो सीखते हैं

0: या फिर जीवन भर पछताते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, सच है बिल्कुल। किसी बात को समय रहते यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर हो जाती है और तब अक्सर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
0: जी
1: तो आइए समय को हल्के में ना लें, इससे सबक लें। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
0: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और परिवारजन लिखते हैं।
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम के 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल वाले सप्ताह में आपने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और इससे जुड़े सर्वाधिक मशहूर चिकित्सकों और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों पर व्यापक जानकारी दी और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प वाक्यात को नाट्य प्रस्तुतिकरण के मार्फत हमें सुनाया। सुनकर हम धन्य हो गए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उमंग कार्यक्रम के श्रोता हैं।
0: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, पद्म लोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
0: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया लिखते हैं।
1: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से संबंधित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम को।
0: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
1: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
0: जी, इसका उत्तर है पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम होर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को दिया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कर्ण गुरुकुल माने जाते हैं, इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
0: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ मायनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओं, जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
0: इसका उत्तर है जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियाँ हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें उरांव भी कहते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है?
0: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री हुइन संग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के 3 प्रसिद्ध गुरुओं और 1 प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
0: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनी और वैद्यराज चरक, और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
1: तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है
0: सींग विदाउट सींग।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
2: लिटिल लॉन्ग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

दोस्तों नमस्ते। दोस्तों किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, न काम न धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर।

उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा

0: बरसात आने वाली है। चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों बया ने भी यही किया, दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, बंदर भाई भीगते हुए उसी पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था। पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: क्यों बंदर जी तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया देखती नहीं, चारों ओर पानी ही पानी है। मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है फिर भी समझ न आती है। वर्षा से बिल्कुल बच जाते, साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो, मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, सेठी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी। तू चिड़िया मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी, इतने भीग रहे हो, कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर दलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ, ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था। कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पास लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको।
2: अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।
0: दोस्तों वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी, बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा।

0: पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी,
1: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
2: डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई।
1: अरे ऐसी उछल कूद क्यों की? कि डलिया ही तोड़ डाली।
2: चुप रह, टूट गई तो टूट गई।
1: जिससे नुकसान होता हो ऐसी आदत बुरी होती है। हाँ, और बुराई तो छोड़ने की ही चीज होती है। दिन भर हाथ चलाते हो, समझदार कहलाते हो, कोई आदत अगर बुरी है क्यों न छोड़ तुम पाते हो?
2: डलिया टूटी है माली की, आदत मेरी साथी है, अक्लमंद बन कर क्यों मुझसे ज्यादा जीभ चलाती है?
1: मैं तो इसलिए कह रही थी बंदर जी कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। फिर मैंने तो ये भी कहा था कि दिन में कहीं से घास पात बटोर कर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेते तो ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ता?
2: मेरे आगे जीभ चलाती हैं? क्यों ज्यादा इतराती है? छोटा मुंह और बड़ी बात कर मुझको सीख सिखाती है। नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आंख मिलाती है। मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है।
1: हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि
2: क्या मतलब?
1: ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है?
0: अरे बच्चों, ये क्या? बया चिड़िया तो रोने लगी। क्या तुम सोच सकते हो कि बया चिड़िया क्यों रोई? सोचो सोचो, आखिर बंदर ने गुस्से में आकर क्या किया? सोचो।
3: शाबाश,
0: कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। अरे भाई जरा जोर से बताओ।
3: हाँ,
0: बंदर ने गुस्से में आकर बया का घोंसला ही तोड़ दिया, तभी तो बया रोने लगी। दोस्तों, बंदर ने अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया तो गुस्से से बया का घोंसला ही तोड़ दिया। दोस्तों, बंदर ही नहीं और भी बहुत से जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। क्या तुम ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, बताओ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि ये जानवर अपने लिए घर बनाते तो नहीं, पर दूसरे जानवरों के बनाए घरों में रहने लगते हैं। हाँ भाई, जरा सोच कर बताओ। हाँ बताओ बताओ। अच्छा दोस्तों, हम कुछ अता पता बता देते हैं। बता दे। अच्छा ये बताओ, चूहा कहाँ रहता है? बताओ बताओ। हाँ, बिल में। अच्छा

कौन सा जानवर है जो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरे जानवरों के बिल में रहता है? सोचो सोचो, याद आ गया? हाँ, सांप। दोस्तों, वो अपना घर खुद नहीं बनाता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं, और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते।

से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं, और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते, जैसे वो बंदर था, है ना? अच्छा दोस्तों, तुम भी सोचना और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते, सोचोगे ना?

0: बना नहीं घर भीग रहे हो।
1: आची

0: श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:30 होने वाले हैं। अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

आप सुन रहे थे पामिला सिंह की आवाज में कफील अहमदाबादी की लिखी ये गजल, परवेज मेहंदी की तर्ज थी।

राजस्थानी लोकधुन पर आधारित एस एन त्रिपाठी का सर्वाधिक यह गीत आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। वीर दुर्गादास फिल्म का यह गीत था, भरत व्यास की रचना थी। विविध भारती का यह कार्यक्रम है रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह, मुर्तजा, मुस्तफ़ा और कादिर। मुस्तफ़ा की आवाज़ें थीं जुनेद वासी का लिखा। ये कलाम आप सुन रहे थे झोले LLB 2 फिल्म से, विशाल खुराना की तर्ज थी। विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के अंतर्गत बलरामपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास सड़कों पर दिखना चाहिए। जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ का आज राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और बीती रात कवर्धा जिले में हुए एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के दौरान बलरामपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जवाबदेही और जनसेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का विकास सड़कों पर दिखना चाहिए और बारिश से पहले सभी खराब सड़कों की मरम्मत पूरी की जाए। बैठक में सड़क मरम्मत की सही जानकारी नहीं

0: पाने पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा भी की, जहां टोल फ्री नंबर पर लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने राजस्व मामलों के समयबद्ध निराकरण, पेयजल व्यवस्था, किसानों के लिए बीज और खाद उपलब्ध कराने तथा अधिकारियों को जनता से सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए। जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ अब से कुछ देर पहले शुरू हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका ने किया। इस आयोजन में बस्तर संभाग सहित विभिन्न क्षेत्रों से 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में पद्मश्री के लिए चयनित बुधरी ताती का सम्मान किया जाएगा और इनोवेशन एंड स्टार्टअप कम्पेडियम 2026 का विमोचन भी होगा। देशभर में आज से अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव नई दिल्ली में अग्नि सप्ताह का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कोंडागांव जिले के डोंगरीगुड़ा के राउतपारा में शादी समारोह के भोज के बाद 46 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। भोज में शामिल लोगों को अगले दिन उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी मरीजों का उपचार किया गया। गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। कवर्धा जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये युवक एक कार में सवार होकर रायपुर से पंडरिया एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पांडातराई नदी में उनकी कार अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट के दौर शुरू होने के आसार हैं। 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। ताजा रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा काफी आगे है, वहीं तमिलनाडु में टीवीके, असम में भाजपा, केरल में यूडीएफ और पुदुचेरी में एनडीए आगे चल रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन तिहार के अंतर्गत बलरामपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास सड़कों पर दिखना चाहिए। जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ का आज राज्यपाल ने किया शुभारंभ और बीती रात कवर्धा जिले में हुए एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वामदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, यहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके 109 सीटों पर आगे

0: की है। एआईएडीएमके गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, डीएमके गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि टीवीके के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त टीवीके ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय एमजी रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
1: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की एमजीआर से, एमजीआर के बारे में कहा जाता है वो एक विचारधारा से, एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। एआईएनआरसी 15 सीट पर आगे है, कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम डीएमके पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोलडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों में।

0: दुश्मन फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। इस गीत से पहले श्रोताओ हमने आपको सुनवाया था जाने दुश्मन फिल्म का गीत और उसकी भी तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: सावन को आने दो, इस फिल्म में आप सुन रहे थे आनंद कुमार सिंह की आवाज फॉक जामी का लिखा ये गीत था राज कमल की तरफ थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल। फिल्म फकीरा किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, गीत और संगीत रविंद्र जैन के।

प्यार ही प्यार, इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। फिल्म जूली, किशोर कुमार की आवाज, राजेश रोशन की तर्ज, आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

हिमालय की गोद में फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, उषा तिमोथी और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही है आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। विविध भारती से आपने सुना कार्यक्रम यादों की महफिल।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

सुरों की झनकार लिए आपके रेडियो सेट पर श्रोता शुरू हो चुका है विविध भारती का अलबेला कार्यक्रम सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। जी हाँ, इस सुरीले सफर में जहाँ गीतों की शक्ल में है थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़े गिले शिकवे, थोड़ा प्यार, थोड़ी थोड़ी सी तकरार, शब्दों के तादिबाने, कुछ पहेलियाँ, हमारा और आपका साथ, सब मिलकर चलेंगे इस सुरीले सफर में। लेकिन श्रोताओं, ये तब तक तो संभव नहीं जब तक आपकी बातें हम तक न पहुंचे। तो आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, आज की इबारत अब आपके लिए पढ़ देते हैं। तो आज

रफ़ी की आवाज़ में आन मिलो सजना फिल्म का ये नजराना था आपके लिए श्रोताओं, और गीतों का नजराना तो हम लेकर आते हैं सुरीला सफ़र कार्यक्रम में। और हमने आपसे पूछा है कि क्या यादें हैं रेडियो की, रिकॉर्ड्स की, रिकॉर्ड प्लेयर्स हुआ करते थे उनकी, तो अगर आपके जहन में कोई याद है तो आप हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं। और वैसे ये सुरीला सफ़र तो तभी सुरीला सफ़र बनता है जब हम और आप मिलते हैं साथ साथ, और होती है एक प्यारी सी मीठी सी इबारत, और होते हैं बहुत सारे नगमे। तो कुछ शब्दों को चुनकर हमारे श्रोताओं ने इसमें चिन्हित किया है और बताया भी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत इस तरह के संकेतों से ही सुरीला सफ़र का मज़ा बनता है। जिंदगी, प्यार, मिलन, यादगार, याद, दिल, सुकून, वादियां, पहाड़, मौसम, कोयल, आम की डाली, बसंत, बहार, पाजेब, नजराना, फूल, मुस्कुराना, तो ये सारे शब्द इन्होंने बनाए हैं। एक हमारे श्रोता ने करवटें शब्द जो है उसे कुछ इस तरह से लिखा है कि करवटें बदलते रहे सारी रात हम, इस गीत को इन्होंने गेस किया है। और पल भर में कोई हमें प्यार कर ले, इन हसीन वादियों, पतझड़ सावन, पल पल दिल के पास, तो देखते हैं कि कौन से गीत जो हैं आज आपके गीतों से और हमारे शब्दों से मेल खाते हैं। एक हमारी और श्रोता ने लिखा है कि छम छम बाजी रे पायल या पायल की झनकार, उस रेशमी इस रेशमी पाजीब की झनकार, तो ये गीत इन्होंने जो हैं अपनी तरफ से निकाले हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों की वादियों में अपने प्रीतम के साथ का अनुभव प्रकृति और प्रेम का एक यादगार पल होता है। हरी भरी वादियों में, देवदार के जंगलों में और खिले हुए फूलों में विचरण करना, किसी सपनों को सपने को हकीकत में बदलते हुए देखना जैसा लगता है। ये समय प्रकृति की गोद में एक दूसरे को समझने और नई यादें बनाने का होता है। और फिर इन्होंने हवाओं, बादलों के बारे में भी लिखा है। जी हाँ, मिलना तो बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। वैसे हम भी जब कहीं जाते हैं तो किसी न किसी से हमारी मुलाकात ज़रूर होती है। क्या कोई ऐसा वाकया आपको याद है कि जब आपसे कोई मिला हो और उसे आज तक आप ना भूल पाए हों?

गीत आप सुन रहे थे कैफी आजमी का लिखा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आम की डाली याद रखने की चीज है। श्रोताओं जी हाँ बिल्कुल, जब हम बात करते हैं सुरीले सफर पर जाने की, तो बस वादियाँ हों या फिर जो गांव की वादियाँ हैं वो हों या फिर पहाड़ों की वादियाँ हों, इसमें बहुत ही जो एक अलग सा एहसास है वो होता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसी जगहों पे जब आप सेल्फी लेते हैं तो उन्हें किस तरह से संजोह कर आपने रखा हुआ है, ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। और वैसे हर मौसम अपने आप में कोई ना कोई नजराना हमारे लिए ज़रूर लेकर आता है, और तभी तो इसे कहते हैं कि ये प्यार का मौसम है। मौसम चाहे कोई भी हो श्रोताओ, लेकिन चेहरे पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती ही हैं कि हंसी खिला जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर आज पहाड़ियों के पर्यटन क्षेत्र से हो सकता है कुछ बातें मिलें इसमें। तो कुछ साल पहले हम नैनीताल गए थे, वहाँ की हसीन वादियाँ, नौका विहार आज भी हमें याद है। ऐसे ही कुछ पर्यटन के स्थान जहाँ आज का ये सुरीला सफर पूरा करने का ऐसे ही वक्त कभी कभी जो है वो मिलता है, और कभी कभी ज़िंदगी के साथ निभाने वाले दोस्त भी मिल जाते हैं। मौसम मधुवंती बसंत पहाड़ के गीत सुनता हूँ, कुहू कुहू बोले कोयलिया, ये गीत इन्होंने याद किया है। वैसे जो हमने अभी आपको गीत सुनवाया ही रांझा फिल्म का, ये गीत भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। आगे ये लिखते हैं कि ऋतु बसंत की प्रथम कली खुलती है, प्रेम अपनी प्रतिमा के लिए जो है गजरे लाता है, एक फूल तेरी जूड़ी में कह दो तो मैं लगा दूँ। गाँव में दिन भर गर्मी रहती है, लेकिन रात को फूल और पत्ते, पेड़, ठंडी हवाएँ, तो इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक और हमारे श्रोता ने पसंद किया है जो गीत, जो इन्होंने अंदाज़ा लगाया है वो है हुस्न पहाड़ों का, शायद ये गीत आज ज़रूर शामिल होगा। वैसे इस जो लाइन है यानी जो हमारी इबारत है, इसमें हमने दिल की बात भी की है श्रोताओं, जो वादियों में अक्सर रह जाता है। हम तो चले आते हैं लेकिन हमारा दिल जो है अक्सर उन्हीं वादियों में घूमता रहता है, सोचता रहता है उन्हीं वादियों के बारे में। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ ये वादियाँ और भी सुकून भरी हो जाएं, तो फिर कह नहीं क्या। और ऐसे में अपने होते हैं, अपनों का साथ होता है।

अगर आप बताना चाहें श्रोताओं तो आप जरूर बताएं कि इस गीत में कौन सी अभिनेत्री नजर आती हैं और एक बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की जो घास है वो कौन सी घास है। हीर रांझा फिल्म का ये

श्रोताओ, अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी एक जगह को चुनिए जहां आप घूमने जाना चाहते हैं, तो वो जगह कौन सी होगी?

डाक फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मिलो तो प्यार से, फिल्म हीर रांझा का गीत इन्होंने जो है वो उस गीत के बारे में अंदाज लगाया है और लिखते हैं कि बेहद लोकप्रिय और रोमांटिक गीत है ये, लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया और प्रिया राजवंश और राजकुमार नज़र आते हैं, यानी पूरी जो एक डिटेल है वो इन्होंने लिखी है और कुछ और गीतों को इन्होंने अनुमान लगाया है। आपकी कसम फिल्म का गीत जिसमें किशोर कुमार जी की आवाज़ है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि नजराना या नजराना भेजा है किसी ने प्यार का, इन हसी वादियों से हुस्न पहाड़ों का, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, और रूठे रब को मनाना आसान, कोयल क्यों गाए। जी हाँ, तो कुछ कुछ जो गीत हैं वो तो मिल ही रहे हैं श्रोताओं, और आपने बहुत सही बहुत ठीक अनुमान लगाया है कि ठीक है, बहुत सारे गीत का अगर मिलान न हो पाए तो भी शब्दों को आप बिल्कुल सही परख रहे हैं, ये बात तो कहनी पड़ेगी। एक हमारे और श्रोता देश परदेश के गीत को जो है वो सोच रहे हैं और लैला मजनू फिल्म का गीत इस रेशमी पाजेब की झनकार ये इन्होंने सोचा है और लिखा है इस बारे में। और हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि रूठे हो सनम तो फिर क्या है, रूठे सैयां हमारे सैयां क्यों रूठे, न रूठो रूठो और तुमने किसी से प्यार किया, और भी कुछ एक रूठने से इन्होंने गीत बताए हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पर छोटी सी कविता याद आई है इनको कि जिंदगी प्यार का एक नजराना है, हर मिलन में छुपा अफसाना है, वादियों में दिल को जो सुकून मिले वो मौसम भी जैसे दीवाना है, कोयल की तान में मीठी सी बात, बसंत बहार का रंग सुहाना, फूलों में लिखी हर एक मुस्कान, यादों का प्यारा खजाना, चलो इन पलों को सजा लें हम, हर लम्हा अपना तराना है।

जी हाँ, मौसम आजकल कुछ ऐसे ही करवटें ले रहा है। श्रोताओं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपने रेडियो के बारे में पूछा है, 1968 में घर में फर्नीचर कैबिनेट की बात इन्होंने करी कि वाला रेडियो दादाजी लाए थे जिसमें बैटरी लगती थी जो एक माह चलती थी, उस पर विविध भारती, सिलोन, आकाशवाणी, इंदौर के कार्यक्रम हम सभी सुना करते थे। और एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत था मिलो न तुम तो हम घबराएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रिकॉर्ड प्लेयर की मीठी मीठी याद है जब शादी या फंक्शन में घर के दरवाजे पर वो बक्सा नुमा भोपू जाता था, उसमें काले तवे के समान जिस पर बैठा स्वान जो मिस्टर वॉइस कहलाया, पीतल की घड़ी नुमा बक्से में लगी रहती थी, उसे घुमाया जाता था तब ये प्लेयर घूमता था। बाद में तकनीक के विकास में वो रिकॉर्ड प्लेयर खूबसूरत बक्से में रेडियो के साथ आ गया, रेडियोग्राम, और घर की शोभा बढ़ाने लगा। मेरे घर में सबसे पहला रिकॉर्ड आया था मदर इंडिया मुगले आजम, और इसमें नई फिल्म आई थी किस्मत, शम्मी कपूर की फिल्म तुमसा नहीं देखा। फिर कुछ दिन के बाद लॉन्ग प्लेयर आया शोले का, और

तीजा का शोले वाला में डायलॉग सहित रिकॉर्ड आते थे। एक दशक के बाद फिर कैसेट का जमाना आ गया। जी हाँ, रिकॉर्ड्स की जब आपने बात की है श्रोताओं, तो ये अलग अलग स्पीड के हुआ करते थे और इनमें कुछ ऐसे भी होते थे जो सिर्फ एक ही गीत के होते थे और कुछ में 6-7 गीत भी हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी गीत के बारे में करवटें बदलते रहे। ये गीत इन्होंने जो है वो समझा था कि हो सकता है आज बजे। एक और श्रोता ने लिखा है कि पिछले बार धर्मपत्नी के जन्मदिन पर मैंने चांदी की पाजेब और चांदी की बिछुड़िया का नजराना दिया था और कभी कभी ये गीत मैं गाता हूँ धर्मपत्नी के लिए, हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तोरा बदन चूमे। तो ये गीत भी है, जी हाँ श्रोता, बहुत ही खूबसूरत नगमा है और आपने पसंद भी किया है, बहुत ही सुंदर नगमा। और देखते हैं वैसे आज क्या गीत बजता है। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं, हमने ये पूछा था आपसे कि आपको अगर किसी एक जगह को चुनना हो तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो शिमला पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मी के मौसम का भी अलग ही अंदाज होता है, कहीं हम सैर सपाटे के लिए निकले तो तरह तरह के फूल नज़र आते हैं। आजकल अमलतास के फूल, गुलमोहर के फूल और साल वृक्ष के छोटे छोटे सफ़ेद पुष्प वातावरण को मनमोहक बना रहे हैं और जनजाति वर्ग के लोग इस समय वनों पर एकत्र करने में लगे हुए हैं, जो इनकी आमदनी का अच्छा स्रोत होता है। वैसे आपके लिए एक बार फिर हम ये इबारत पढ़ देते हैं श्रोताओं, जो आज हमने फेसबुक पेज पर दी है। जिंदगी प्यार का नजराना है, किसी से मिलो तो प्यार से मिलो, इन पलों को यादगार बना लें, चलें उन्हीं वादियों में जहां दिल को सुकून मिलता है। वैसे आजकल पहाड़ों की सैर और यहां करवटें लेता मौसम सैलानियों के लिए किसी मीना बाजार की तरह सज चुका है। कहीं मधुवंती और कहीं बसंत बहार की तान लिए आम की डाली पर कोयल गीत सुनाती है, जैसे किसी रूठे हुए को मनाती है और पाजीब का नजराना देती है। तो बात इतनी सी है कि ये मौसम भी फूलों से लिखी प्रेम की किसी इबारत की तरह ही होते हैं, जो हर पल मुस्कुराते हैं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी एक सफ़र, जी हाँ बिल्कुल सुहाना है, और प्यार हुआ इकरार हुआ ये बातें होती हैं। दीवाना लेके आया है नजराना, ये गीत इन्होंने सोचा और लिखा भी है। ये फिजाएं बुलाने लगती हैं, ऐसे में पहाड़ों का हुस्न उभर कर आता है। अम्बुआ की डाली पर कोयल बोलने लगती है, पतझड़ के बाद बसंत बहार छा जाती है। रेशमी पाजेब की झनकार सुनते सुनते सारी रात वो करवटें बदलते रहते हैं और फिर रूठे रूठे पिया को कैसे मनाऊं इस सोच में फूलों की रंग से दिल की कलम से संदेश लिख देते हैं। जी हाँ, जो मौसम पर सीधा असर करते हैं।

श्रोता, वैसे आजकल आपने कोयल की जो मीठी मीठी सी तान है खूब सुनी होगी। इसके साथ ही एक और पक्षी है जो आजकल खूब बोल रहा है और खूब सुनाई दे रहा है। क्या इस पक्षी को आप पहचानते हैं?

श्रोताओ, जरा ये तो बताइए कि आप मीना बाजार से क्या समझते हैं, क्योंकि आज ये शब्द भी हमारी इबारत में है, क्योंकि लोग छुट्टियों का मौसम है और ऐसे में जो सर्द वादियाँ हैं, जो पहाड़ी वादियाँ हैं, या फिर अपने गांव की सैर पर निकल चुके हैं और बातें करें अगर कुछ ख़ास अंचलों की, तो वहाँ मीना बाज़ार सजते हैं। मीना बाज़ार के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। क्या ये मीना बाज़ार आज भी लगते हैं, इस बारे में हमें बताइए। आप सुन रहे थे ये गीत आप आए बाहर आई, इस फिल्म से मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वर्ष 1964 में से रेडियो मेरा सबसे प्यारा दोस्त बना, जो इस ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक नहीं भूल पाए, और उसमें सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन विविध भारती सुरीली धड़कन है। जी हाँ, विविध भारती तो सुरीली धड़कन है ही, जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। ये सुबह में कार्यक्रम जागो सुबह हो गई उठती है मेरे साथ, और छाए गीत कार्यक्रम के समापन के बाद सोती भी है मेरे साथ, जिससे मैं हर दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि रिकॉर्ड से जब गीत सुनते थे तो कैसेटों के समय मैंने सीरीज़ की

320 कैसेट रिकॉर्ड से पुराने सदाबहार गीत भरवाए थे, बाद में 8 सीडी में डाउनलोड करवाए, फिर अब मेरे पास पेन ड्राइव में सेव है सारे गीत इस रिकॉर्ड से, यहाँ तक कि गीतों का जो सुरीला सफ़र है वो तय किया है। एक और श्रोता ने करवटें बदलते रहे इस गीत की बात करी है, और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी इस जादुई और रूहानी इबारत ने फिजाओं में जैसे एक अलग सी मिठास घोल दी है, कोयल की कूक और वादियों में सुकून को समेटते हुए मधुवंती और बसंत बहार जैसे शास्त्रीय रागों का जिक्र, साथ ही मीना बाजार जैसी चमकदार दुनिया का एहसास, ये सब मिलकर एक ऐसा कोलाज रचते हैं जो दिल को छू जाता है। आज इन शब्दों से गीत हो सकते हैं, जिंदगी, प्यार, नजराना, वादियाँ और तमाम शब्द जो हैं इन्होंने लिखे हुए हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्यार का नजराना, वादियाँ, सैर, मीना बाजार, बसंत बहार, रूठना, मौसम, फूल, कोयल की कूक, पाजीब आदि शब्द होंगे, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं इस रेशमी पाजीब की झनकार के सदके। वैसे आजकल ये बात भी है श्रोताओं कि देखिए कहीं कोई रूठे ना।

शोभा गुट्टू की आवाज में ये ठुमरी दादरा आप सुन रहे थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप आए तो जुड़ना हो रहा है आज। इबारत को पढ़कर आज दिल को थोड़ा सुकून मिला कि आज किन शब्दों से सजे हुए गीत होंगे। आज का सुरीला सफर इन शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। जिंदगी नजराना मिलो बना चलें, वादियां आजकल मौसम करवटें बाजार कोयल सज गीत।

इसी रूठे पाजेब की बात इतनी अंत में और प्रेम प्यार मुस्कुराहट के साथ समापन होगा। जी हाँ, होगा तो और भी मौसम की भी बातें होंगी, क्योंकि हाँ कोई भी मौसम हो श्रोताओ, थोड़ा कष्टदायक तो होता है। जैसे बारिश के मौसम की ही बात करें या सर्दी के मौसम की ही बात करें या फिर गर्मी के मौसम की बात करें, लेकिन हर मौसम का अपना लुत्फ है। हमें चाहे ये मौसम अच्छे लगें या न लगें, शरीर को सुकून दें या न दें, लेकिन इस मौसम के बारे में कभी कोयल से जाकर पूछिए, इसके साथ ही जो पपीहे की पुकार है उससे पूछिए, तो ये मौसम उनको कैसा लगता है, बड़ा सुहावना लगता है कोयल को। और किसानों से पूछिए जो हमारे लिए मीठे मीठे आम बहुत सारे कह सकते हैं कि जैसे ढेर सी लगा देते हैं। और ये मौसम तमाम खूबसूरत फलों का भी होता है, फूलों का भी होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि कभी पहाड़ों पर जाओ तो चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है वादियाँ। वादियों में अजब सा सम्मोहन है जो हमें खींचता है, धुंधली सी वादियों में खो जाने का मन करता है। वादियों में जाओ तो न जाने कितने गीत, जाने कितनी कविताएं मन में बजने लगती हैं। पहाड़ों को कभी गौर से देखा है, प्रकृति के सारे रंग वहीं आकर सिमट गए हैं। जब गर्मी के दिन परवान पर होते तो मौसम की पाजेब ध्यान से सुनिए, इसमें छुपे कलरव और कुदरत के रंग जो होते हैं वो समाये होते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है इस इबारत में शामिल शब्दों में, प्यार नजर आना जिंदगी मिलो चलें सुकून दिल जैसे अनेक संज्ञा सरनाम विशेषण परक ही नहीं, अभी तो क्रिया परक शब्दों के साथ ही संबोधन भी है। और इस दृष्टिकोण से संभावित गीतों के चयन में ही पूरा दिन क्या और भी अधिक समय लग सकता है, फिर भी जितना समय है देखते हैं कितने लिख पाते हैं। और इसके आगे भी इन्होंने कुछ शब्दों के बारे में भी लिखा है कि कुछ शब्द जो होते हैं उनकी पुनरावृत्ति भी हो रही है। जी हाँ, वैसे भी आप देखें श्रोताओं, अगर अपने वाक्यों को भी देखें तो जीवन में बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसकी पुनरावृत्ति कई बार होती है।

श्रोताओ, हमने आपसे मीना बाजार के बारे में पूछा था, आज भी लगते हैं क्या ये मीना बाजार कहीं कहीं पर, और आपने क्या चीजें यहाँ से खरीदी हैं, अगर आप बताना चाहें तो आप जरूर बताएं। और आपके हालिया सफर के बारे में हमने पूछा था आपसे, यानी कि हाल में अगर आपने कोई सफर किया है तो।

अभिनेत्री रंजिता पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। हमने आपसे पूछा था मीना बाजार के बारे में श्रोताओं। जी हाँ, मीना बाजार तो आज भी लगते हैं। वैसे जो मीना बाजार की एक परंपरा है वो बहुत पुरानी परंपरा है जो मुगल काल में ही शुरू हुई थी। और यहाँ अगर आप दिल्ली में देखें तो ये बाजार अभी भी लगता है। हस्तशिल्प, अगर कपड़े आप अच्छे अच्छे जो हाथ से बुने हुए कपड़े होते हैं उन्हें अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। और भी जो देश की हाथ से बनाई चीज़ें हैं वो भी यहाँ मिलती हैं, और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी मिलती हैं। और अगर बात करें आगरा की तो आगरा में भी मीना बाज़ार लगते हैं, और यहाँ पर मिडनाइट बाज़ार भी लगते हैं। रात में भी शॉपिंग आप कर सकते हैं, और बच्चों के खेलकूद के लिए यहाँ बहुत सारे झूले भी लगाए जाते हैं। तो मीना बाज़ार की अपनी रौनक है। आजकल वैसे छुट्टियों का समय है तो खूब ये बाज़ार सजे हुए हैं। मौसम कोई भी हो श्रोताओं, प्यार का मौसम होता है। हर मौसम आपके लिए कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप जरूर ले आता है, और प्यार इसका सबसे बड़ा उपहार है जो अलग अलग शक्लों में होता है।

श्रोताओ, आप चाहें तो इस गीत के कलाकार बता दें और संगीतकार बता दें। वैसे आवाज है मन्ना डे और आशा भोसले की, फिल्म है शायद।

सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आपकी शिरकत करने के लिए, आपके बातों के लिए, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।

0: होगा उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दोनों।

0: बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीज़ों से उसे सजाते हैं, फर्नीचर हो, पर्दे हो या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स। घर का हर कोना, घर की हर चीज़ जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगू करती मालूम होती है। इस गुफ्तगू को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नज़र हो।

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का अंगना प्यार के द्वारे प्यार की सारी बातें इस प्यारी दुनिया में सबसे प्यारा अपना प्यार मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा

0: छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी खुशियां हैं और छोटे दुख सुख अपने, जो पल आए हंसता आए लेकर रंग हजार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, नजर लगे ना दुनिया की यूं ही हंसती रहे बाहर। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरो दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफ़र आपने पूरा किया अपने दोस्त

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
0: गलियां, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आ गए। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीतिक दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहाँ 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
2: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर। और आज कल जो इंसिडेंट है हुआ है, उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है। और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था, जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उन

0: उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट आईयूएमएल ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपद सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के टीएम शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, आईयूएमएल 22 और सीपीआई 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में एआईएनआरसी की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंगभूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीट, आज लगातार तीसरी बार सरकार है, ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
1: भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनोज पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, एआईयूडीएफ 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई की हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
3: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
1: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम, उनका भी योगदान रहा है जीत में।
3: जी, आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीज मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से तीन के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और

0: दावणगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र के राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3,123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7,317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4,194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमते वापांग को 3,633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3,219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। AIADMK 58, DMK 47, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या AIADMK की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
1: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खास तौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, नए यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
0: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहां?
2: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए और जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वही लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को

0: संबोधित करेंगे और उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं। जी
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है।

0: परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: कोरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज़ में। कैफी आजमी के बोल थे, तर्ज थी हेमंत कुमार की। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। तीन देवियां इस फिल्म का गीत है, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल।
1: अरे यार मेरे

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: मखदूम मोहिंद्दीन की रचना आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म है चा चा चा।

चाचा चा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और यही थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम उपस्थित हैं। मैं हूं मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: दीपा माहेश्वरी।
1: आप सभी को
2: हमारा नमस्कार।
1: कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल अच्छे हैं। और आप तो जहाँ जहाँ जाएंगी हम बस पीछे पीछे चलते चले आएंगे।
1: अरे वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि भाई क्या है ये कि जहाँ मैं जाती हूँ वही चली आती हूँ। देखो तुम यहाँ पर भी आ गई हो।
2: अभी देखो ना, दोस्ती का प्यार है, आपका अपनापन है और सखी सहेली का कुछ जादू ही ऐसा है, है ना? जिस दिन आते हैं उस दिन बस अपनी जिस सखी के साथ हम अपने बाकी सभी सखियों से मिलने वाले हैं उनका पीछा करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे, तो ऐसा पीछा तो अच्छा भी लगता है क्या?
2: हाँ,
1: जहाँ दोस्ती हो, प्यार हो, सम्मान हो, स्नेह हो, वहाँ अगर हम एक दूसरे का पीछा करते हैं तो वो एक अलग ही अद्भुत एहसास होता है।
2: जी बिल्कुल। और कभी कभी आप भी तो आती है हमारे पीछे।
1: हम तो रोज ही आते हैं आपके पीछे ख्यालों में, आपने अच्छा? देखा नहीं है। हाँ,
2: तो आज हमें भी ख्यालों में कुछ इस तरह से जाना पड़ेगा, मतलब गहराइयों में।
1: हाँ, वहाँ मैं मिलूंगी आपको। हाँ, उस मोड पर खड़ी हुई
2: बिल्कुल। और हमारे सारी सखियाँ, हमारे सारे श्रोता भाई सभी से मुलाकात होगी।
1: बिल्कुल होगी। और आज के विषय क्या है ये तो बता दें हम।
2: बिल्कुल, चलिए तो फिर ये जो दुनिया है हमारे ख्यालों की, वहाँ से हम चल के निकलेंगे दिल की दुनिया में।
1: ठीक है,
2: दिल की माने या दुनिया की, ये बड़ी बात हमेशा कई बार कई स्थितियों में हमारे सामने आ जाती है। दिल कुछ और कहता है और दुनिया
1: कुछ और कहती है,
2: उनके रिवाज कुछ और होते हैं। तो बहुत सारे संदेश आए हैं लेकिन और हम जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा वाकया भी बताइएगा कि कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आपने दुनिया की मानी, या कहीं ऐसा कि आपने दुनिया से हटके अपने दिल की मानी।
1: बिल्कुल।
2: और यहाँ से इस गहराई से निकल के हम एक और गहराई में जाएंगे, वो है कोयले की दुनिया में। कोयला खनिक दिवस है आज, तो क्या जिम्मेदारियां उनकी होती हैं और कितना ये महत्वपूर्ण और साथ में एक खतरा हुआ लिए हुए ये वाला ये
1: बहुत खतरनाक काम है,
2: है ना,
1: जिसे करना अंजाम देना बहुत मुश्किल है।
2: जी, कथा सुधा में भी हम कथा सुनेंगे, एक्ट्रेस का भाग 3 सुनेंगे।
1: अच्छा,
2: तो कहानी में आगे क्या होता है ये जानेंगे और बहुत सारे हमारे श्रोता इसका इंतजार भी कर रहे हैं। फिर वहां से चलेंगे बिहार।
1: बिहार? अरे क्यों?
2: आज हम खाएंगे लिट्टी चोखा।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगेगा। लिट्टी चोखा मैंने बहुत समय से खाया भी नहीं है। तो चलो, अच्छा है तुमने लिट्टी चोखा
2: याद दिला दिया। तो आपके पीछे पीछे वहाँ भी हम
1: आएंगे। वही मैं जानना चाह रही थी कि वहाँ पर मैं आपके पीछे आने वाली हूँ।
2: ऐसा है?
1: हाँ,
2: तो देखते हैं कौन किसके पीछे है।
1: और इस गीत को भी सुन लेते हैं, देखिए यहाँ कौन किसके पीछे है।
2: चलिए।

0: तो दीपा, अगर हम आपसे पूछे ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, तुम क्या कहोगी?
1: आप हमारी सखी हो, आप हमारी प्रिय हो, जैसे हमारी सारी सखियां हैं।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे ही हम प्यारे एक रिश्तों में गुथे हुए
1: है ना। बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बहुत ही मेहनत कश तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, उनसे भी हमारा रिश्ता उतना ही गंभीर है, क्योंकि हम उनकी जिंदगी के बारे में भी सोचते हैं, और तभी तो आज हम कोयला खनिक दिवस पर बात भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। और ये देखिए ना, ये दिन है एक खास आज का, जो उनको सम्मान करने का दिन है। हम कोयला निकालने में उनके कठिन परिश्रम के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, जो खनन में काम करते हैं, जो हमारे देश के विकास और समृद्धि में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
0: बिल्कुल दीपा, कोयला खनन कोई आसान काम नहीं है, और खनिक अपना पूरा दिन खदानों से कोयला खोदने और निकालने में बिता देते हैं।
1: बिल्कुल। और 4 मई जो कि आज का दिन है, ये मनाया जाता है कोयला खनिक दिवस के रूप में। सिर्फ उत्सव ही नहीं है, मतलब एक कोई दिन रख नहीं दिया है, बल्कि औद्योगिक क्रांति से चले आ रहे कोयला खनन के इतिहास को भी याद करने का दिन है। ये इस जो कठिन जो पेशा है, इसमें योगदान देने वाले लोगों की मेहनत और उनके बलिदान को सम्मान देने का भी दिन है।
0: बिल्कुल। और ये विशेष अवसर पर मेहनती श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए भी समर्पित दिन है, जो कोयला निकालने के लिए धरती की गहराई में उतरते हैं।
1: जी।
0: और ये कोयला हमारे देश को ऊर्जा प्रदान करने, इस्पात उत्पादन और सीमेंट निर्माण के लिए एक अमूल्य संसाधन भी है।
1: बिल्कुल। और ये दिन उन समर्पित कोयला खनिकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है, जो हमारे उद्योग और दैनिक जीवन में आराम करने के लिए इनके खनन कर इसका जो कोयले का इसका खनन करते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: और कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: और जो कोयला खनन के प्रति उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता है ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था के आवश्यक क्षेत्रों को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मंदाकिनी जी। और कोयला एक जीवाश्म ईंधनों में से एक है, जो कि बहुत जरूरी है, जिसमें ना बहुत सारा कार्बन होता है, कार्बन निकलता है। तो कोयले और प्रदूषित सांस लेने की वजह से खनिकों को कभी कभी फेफड़ों की बीमारी भी हो जाती है, और कभी कभी उन्हें सांस से संबंधित बहुत सारी समस्या भी हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये दिन उनके जीवन में सुधार हो उसके प्रति प्रोत्साहन को भी बढ़ाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा, क्योंकि कोयला खनिक दिवस हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जब हम रुककर कोयला खनिकों के प्रयासों से संभव हुई अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों की सराहना कर सकते हैं।
1: जी। और इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा खदान है जहाँ पे कि इस तरह से कोयला क्या या किसी और धातु का खनन होता हो, तो वहाँ आप अपने बच्चों को ले जाइए, खुद भी जाइए, देखिए सामने से

0: कि किस तरह से और कितनी मुश्किलों मुश्किल हालात में वो काम करते हैं या फिर खनिकों की कड़ी मेहनत को समझना और उन्हें दिल से तो हम धन्यवाद कम से कम दे ही सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हमें अपने बच्चों को ये दिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हमने समझ रखा है। हालांकि ठीक है, जिंदगी को आसानी से जीना चाहिए, लेकिन कितना संघर्ष करते हैं लोग
0: जी,
1: है ना।
0: तो ये पता भी तो चले उन्हें कि इस तरह का भी काम होता है।

0: हाँ तो दीपा, बहुत ही सुंदर गीत था ये, और
1: जी
0: काला पत्थर फिल्म का गीत था ये, और ये
1: जी
0: फिल्म इन्हीं कोयला खदानों के ऊपर बनी हुई फिल्म थी, है ना।
1: और कितने अच्छे से हमें देखने को मिलता है उसमें कि कितनी दिक्कतों में, कितनी मुश्किलों में हमारे जो खनिक हैं
0: वो
1: वो
0: काम
1: रहते
0: करते
1: हैं, वो
0: हैं या
1: काम
0: काम
1: करते
0: करते
1: हैं।
0: हैं।
1: और यही बात एक संदेश कहता है कि आज के दिन समस्त विश्व में कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कोयला खनिकों की कठिन मेहनत और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। साथ में एक और संदेश कहता है कि जो खदानों में अत्यंत जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने वाले खनिकों के साहस, समर्पण और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करता है। तो ये सारी बातें हमारे बहुत सारे
0: श्रोताओं ने
1: श्रोताओं
0: लिखी
1: ने
0: है,
1: लिख
0: एक
1: के
0: श्रोता
1: भेजी
0: ये भी
1: है।
0: लिखते हैं कि ये उन मजदूरों के सम्मान में मनाया जाता है जो कोयले की खदान में खतरनाक काम करते हैं। कोयले की खदान में काम करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और ये दिन उन मजदूरों की मेहनत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को याद करने का दिन है, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि कोयला खनिक दिवस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में से एक है, और उनके आपूर्ति हेतु प्राकृतिक रूप से खदानें पाई जाती हैं, और उनके खोदने हेतु श्रमिक से लेकर कोयला मंत्रालय तक की समुचित व्यवस्था है, और इस खनिज के उत्पादन में लगे श्रमिकों के हित का ये दिवस है। इस दृष्टिकोण से तो इस दिवस का महत्व है, लेकिन अब देखना यह है कि खनिज या फिर खनिक शब्दों में से कौन सा शब्द है, क्योंकि शब्द के अनुसार ही भावार्थ हुआ करते हैं। तो आज है खनिक दिवस।
1: खनिक दिवस,
0: हाँ
1: कोल कोल माइनर्स डे
0: दे
1: इसको
0: बिल्कुल।
1: अंग्रेजी में कहते हैं,
0: कोयला
1: और
0: खनिक दिवस इसको हिंदी में कहते
1: हिंदी में
0: हैं।
1: कहते हैं। तो भाई देखिए ना, खनन की गहराइयों में से अब हम निकल करके चलते हैं दिल की
0: दुनिया
1: गहराइयों में।
0: में
1: और
0: भाई
1: देखिए ना,
0: हाँ
1: बात एक कई बार आ जाती है ना, दिल की माने या दुनिया की। और एक और बड़ा प्रसिद्ध सा जुमला है, लोग क्या कहेंगे। है
0: हर
1: ना,
0: जगह है ये जुमला,
1: है ना।
0: हर परिस्थिति मारे भाई लोग क्या कहेंगे, तुमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, और इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम जो है अपनी जिंदगी कई बार खराब भी कर लेते हैं,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि
1: और
0: दुनिया
1: कई
0: के डर
1: सारे,
0: से। हाँ
1: वही जब आप ये कह रही थी तो मुझे ये विचार आ रहा था कि कितने सारे सपने टूटते हैं उस
0: हाँ
1: वक्त।
0: बहुत सारे खाब टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है
1: जी
0: दीन
1: जी
0: दुनिया का कि दुनिया क्या कह देगी, बल्कि जबकि दुनिया को तो कहना ही है, दुनिया का काम है कहना,
1: सही
0: और
1: बात
0: कहने
1: है।
0: के बाद वो चुप हो जाती है, अपने अपने रास्ते चली जाती है। और अगर आपने अपने सपने चकनाचूर कर ली, तभी दुनिया को कोई मतलब नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी को बोझ समझ कर जी रहे हैं या अपने सपनों को जी रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: और दुनिया तो ये चाहती है कि बस एक निश्चित समय तक पढ़ाई करो, उसके बाद शादी कर लो, उसके बाद आपका घर संसार बस जाए, और फिर बस उसी ढर्रे पे चलते चले जाइए
0: जो बरसों
1: जो
0: से
1: बरसों
0: हमारे यहाँ
1: से
0: ढर्रा चल रहा है।
1: चलता
0: अरे
1: आ रहा
0: उसमें
1: है।
0: कुछ परिवर्तन अगर कोई लड़की खास तौर से या कोई बच्चा लाना चाहता है, कोई युवा, तो देखिए वो गलत तो नहीं कर रहा है।
1: सही
0: आप
1: बात है।
0: ये देखिए ना, उसके सपने हैं, अगर वो सही समय पर पढ़ के फिर शादी विवाह करना चाहता है या गृहस्थी बसाना चाहता है, तो लोग उसको चैन की सांस नहीं लेने देते।
1: सही बात
0: घर
1: है।
0: वाले भी कई बार, हालांकि दीन दुनिया के डर से, वो भी डर के मारे ही बच्चों को दबाव बनाते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी, है ना, इस दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में जो है जिंदगी बहुत अजीबोगरीब हो जाती है।
1: बिल्कुल। और एक सवाल ये आता है कि कब दुनिया की माने और कब दिल की
0: दिल की
1: माने।
0: माने।
1: तो हम अपने श्रोताओं से भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कब दुनिया की माननी चाहिए और कब दिल की माननी चाहिए। वैसे उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी भी हैं। हमें जो लगता है कि भाई जब सुरक्षा की बात आए, नैतिकता की बात आए, या अपनों के हित के लिए कुछ अगर करना पड़े, तो शायद आप बड़ों का अनुभव को आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो परिस्थिति आपके सामने आई है, वहाँ आप बड़ों की बात को ले सकते हैं। उनका कोई पुराना अनुभव है, उससे आप कुछ सीख ले करके
0: बिल्कुल
1: अपनी जो दिल की बात है उसको साथ में मिला करके
0: काम कर
1: और
0: सकते
1: काम
0: हैं।
1: कर सकते हैं।
0: हाँ मतलब कोई मध्यम मार्ग निकलना चाहिए
1: जी
0: ना,
1: जी
0: ऐसा नहीं कि आपने जिद में आकर कुछ भी कर

0: लिया, आप चाहे जो डिसीजन ले लें वो समाज के हित में नहीं भी हो सकते हैं डिसीजन, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे वाला जो जुमला लेकर जब हम अपने सपनों का गला घोट लेते हैं, और क्योंकि दुनिया हम एक सांचे में ढालना चाहती है जैसा तुमने कहा, और क्या हमने कभी गौर किया कि हमारे भीतर एक प्यारी सी आवाज है, वो आवाज जो गूंजती है तब आप अपनी पसंद की कोई काम करना चाहते हैं, आप अपनी पसंद पे गुनगुनाना चाहते हैं, आप अपनी पसंद से नृत्य करना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना चाहते हैं, है ना, दुनिया में काम करना चाहते हैं, लीक से हटकर रोज आप चाहते हैं थोड़ा सा लीक से हटकर मैं अपनी जिंदगी बिताऊं, और वो है आपके दिल की आवाज।
1: बिल्कुल। और एक कहानी है छोटी सी, हमारे एक श्रोता ने लिख भेजी है, ये पढ़ के बताना चाहती हूँ कि एक पंचतंत्र की कहानी में उन्होंने पढ़ा था कि एक गधे को लेकर एक बाप और बेटा
0: जा रहे
1: देश के घूमने के लिए निकले थे। कभी बेटा गधे पे बैठता तो लोग कहते बेटा बैठा है, अब बाप पैदल चल रहा है। जब बाप बैठ जाता तो लोग कहते कि कैसा बाप है, गधे पर बैठा है और
0: बेटा पैदल चल रहा है,
1: पैदल चला रहा है। तब उन्होंने दुनिया से तंग आकर के दोनों बाप बेटा बैठ जाते हैं तो लोग कहते हैं कैसे निर्दय हैं, दोनों बाप बेटे एक ही जानवर पर बैठ गए हैं। तो भैया ये दुनिया है, कुछ भी करोगे तो कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। तो इनका तो ये कहना है, हमारी सखी ये कह रही है कि छोड़ो बेकार की बातें, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी ही है।
0: बिल्कुल, शमशाद बेगम की जो आवाज में गाना है ना, दुनिया का ले लो मजा, दुनिया तुम्हारी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर आप इस तरह से दुनिया की सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिल की सुनना का मतलब हो जाता है बागी हो जाना, कि हम बागी हो गए हैं, हमने विद्रोह कर दिया है ना। और खासतौर से अगर लड़कियां अपने दिल की बात कर लें तो आज भी कहा जाता है, देखो कितनी जिद्दी है, अपने माता पिता का कहना ही नहीं मानती, उसको समाज में रहना ही नहीं आता है, समाज की चिंता ही नहीं है।
1: ये बात कहीं ऐसा नहीं कि छोटे शहर, सब जगह है,
0: सब जगह है, ये हर जगह है कि देखिए माँ बाप ने इसको संस्कार ही नहीं दिए है ना, जाने क्या अपने तरीके से सोच रही है। तो ये जब बातें जब आती हैं तो एक लड़की के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की माने, विशेष बात सोचने लायक है, गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखना ये है कि कौन सही है कौन गलत। अगर आपको लगता है कि आपका दिल सही है और बेशक दिल की माने, लेकिन कभी कभार दिल गलत हो जाता है, तो आप समाज को देखिए। दुनिया अगर कह रही है दुनिया की माननी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको कितना भी रोक ले, हमें वही करना है जो हम करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और वही एक और संदेश आया है, ये कहती हैं कि जो लोग दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर जीते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, और उनकी हालत कुएं के मेंढक की तरह हो जाती है, उनकी जिंदगी सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। अगर बड़े बड़े समाज सुधारक दुनिया की मानते तो आज महिलाओं का और समाज का जो विकास हुआ है वो शायद नहीं होता। तो इसलिए वो कह रही है कि हम आज एक विकसित समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हमें दुनिया के साथ अपने दिल की भी सुनना बहुत जरूरी है।
0: बहुत सही बात। और एक श्रोता लिखते हैं कि हम बोलते जरूर है कि दिल की सुने, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है हम सभी जमाने के हिसाब से ही चलते हैं, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इसमें ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है। और आप कहें तो एक गीत सुन ले,
1: चलिए।
2: अरे चुपके से दिल दे दे,
3: नहीं ते

0: तो दीपा इस गाने में भी यही कहा था कि भाई दिल दे दे चुपके से, लेकिन डर क्या है कि बदनाम हो जाएंगे तो क्या हो गया।
1: और देखिए कुछ ऐसी बात पर एक हमारी एक सखी ने लिखी कि वैसे

0: तो दीपा इस गाने में भी यही कहा था कि भाई दिल दे दे चुपके से, लेकिन डर क्या है कि बदनाम हो जाएंगे तो क्या हो गए।
1: और देखिए कुछ ऐसी बात पर एक हमारी एक सखी ने लिखी कि वैसे एक बात कहें, जब हमारी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजने की बात आई थी तो घर के सारे लोगों ने, दुनिया वालों ने मना कर दिया था कि अरे लड़की को कहाँ भेज रहे हो अकेले, इतनी दूर भेजोगे तो कैसे क्या होगा, पर हमने अपने दिल की सुनी और आज हमें अपनी उस बेटी पर और खुद पर नाज है जब वो पढ़कर इतने अच्छे पद पर काम भी कर रही है और अपने प्यारे से परिवार को भी संभाल रही है। अगर दुनिया की मानते तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते।
0: कितनी बड़ी बात कही है, इससे कितना बड़ा संदेश जाता है कि हम डर के मारे अपनी बेटियों की प्रतिभा का गला घोट देते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कल क्या होगा, हम किसको क्या जवाब देंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, कितने सारे बेतुके सवालों से हम घिरे रहते सारे हैं।
1: और कभी कभी कोई एक लीक से हटकर कोई लेना चाहता है, कोई
0: डिसीजन लेता है,
1: डिसीजन लेना चाहता है। अब आज के जमाने में मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, बच्ची या बच्चा, तो वो कैमरा लेकर के और अपनी लाइट्स लेकर के सब जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसे में माता पिता को लगता है कि क्या कर रहे हो तुम ये, लेकिन वो बताते हैं कि इसमें किस तरह से कमाई होती है। हाँ, बेसिक पढ़ाई होना, ये सब चीजें, एक ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है आप एक मौका तो दीजिए,
0: बिल्कुल
1: उसके दिल की सुनिए। अगर अपने दिल की नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने बच्चे का या
0: विश्वास
1: पर विश्वास कीजिए।
0: तुम्हें बताऊं दीपा, मेरी एक दोस्त है, उनकी बेटी इसी तरह का काम करती है और आज फॉरेन में है, वो कैमरा लेके जाती है, घूमती है, दिल्ली में रहते थे वो, वहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की और माता पिता ने अपनी बच्ची को इस मामले में विश्वास दिलाया और छूट दी और बच्ची आज बहुत बड़ी फोटोग्राफर के रूप में अपना काम भी कर रही
1: जी।
0: है।
1: और ये बात जहाँ पर कि दो बच्चियां हैं तो वहां पे बड़ी बात ये आ जाती है, हम इस बारे में बात और आगे करेंगे।
0: हाँ, अभी वक्त है एक अंतराल का
1: जी।

0: इस अंतराल के बाद अभी सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: तो बात हो रही थी कि जहाँ पर दो बच्चियाँ होती हैं घर में, तो माता पिता को कहा जाता है आप अपने बच्चों को पास में ही रखना, दूर नहीं करना, शादी ब्याह भी करो तो बस आसपास ही होना चाहिए, बच्चों को क्यों दूर भेजना है। अरे भाई वो मम्मी पापा का डिसीजन है, बच्चों का निर्णय है, हम क्यों बोले। लेकिन दुनिया आपको जहाँ सिर्फ बच्चियाँ होती है ना, बहुत उनको टोका टाकी किया जाता है,
0: बहुत दिक्कत आती है उनको माता पिता को, क्योंकि समाज में दुनिया भर के लोग हैं, जो आप पर नजर है उनकी अपने घर पे नजर नहीं होती, दूसरों के घर पे दूसरों की बेटियों पर निगाह होती है कि वो कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। तो इस तरह के डिसीजन माता पिता के अपने डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए और बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। अब देखिए हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि दिल की माने या दुनिया की, दिल की माने तो वो हमें क्या चाहिए, क्या खुशी देता है, कहाँ सुकून मिलेगा, वहीं दुनिया की माने तो हकीकत दिखाती है, जिम्मेदारियां, पैसा, रिश्ता, जोखिम। पैसा फैसला दिल से शुरू करो लेकिन उसको दिमाग और हकीकत से चेक भी करो।
1: सही बात है। और एक हमारे श्रोता भाई लिखते हैं कि दिल के माने या दुनिया के, भाई समय समय पर दोनों के मान लीजिए ना, क्योंकि रहना तो आपको दुनिया में ही है और दिल ना हो फिर रहेंगे कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, दोनों की दिमाग से सुन लीजिए, बस इतनी सी बात है। जब जब दुनिया से दिल उब जाए तब दिल की दिमाग के साथ मान लीजिए, आखिर विवेक भी तो कोई बात है ना। तो देखिए बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिल से उब गए तो हम दुनिया की सुन लें और दुनिया से उब गए तो दिल की सुने। जो सही होगा जीवन,
0: डिसीजन लेना बहुत जरूरी, वही कहा ना विवेक से काम लेना होता है
1: जी।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की, असल में ये कोई सीधा सवाल नहीं है, ये जिंदगी के उन मोड़ों का सवाल है जहाँ दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। दिल अक्सर धीरे से कहता है यही सही है, बस महसूस करो, और दुनिया जोर से कहती है सोचो समझो फिर कदम बढ़ाओ। सिर्फ दिल की मानोगे तो कभी कभी ठोकर लग सकती है, और सिर्फ दुनिया की सुनोगे तो अंदर कहीं खालीपन रह सकती है। शायद सही रास्ता बीच का होता है, जहाँ दिल की बात सुनी जाए लेकिन दुनिया की समझ भी साथ में रखी जाए।
1: सही कहा आपने।
0: और अब देखिए दीपा, आज एक कहानी लेकर आए हैं हम, बताइए आप।
1: जी बिल्कुल, आज कहानी है एक्ट्रेस जिसका कि हम सुनेंगे भाग 3।
0: तो चलिए पहले सुनते हैं ये कहानी।
1: चलिए

0: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। इस कहानी में पिछले भाग में आपने सुना,
2: दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए एक महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते, उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत देय थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे, वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। उन्हें ये भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे, हाँ ये भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा,
3: मैंने वकीलों से पूछ लिया है, एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं, उसे सिविल मैरिज कहते हैं। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना।
2: तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही।
1: कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग।
2: विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगारदान भेंट किया है। उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वो शुद्ध और उदास है। उसके मन में चार दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है,
4: उफ, क्या मैं कुंवर साहब के साथ विश्वासघात करूं? जिस प्रेम के देवता ने मेरे लिए अपने कुल की मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिम कण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करूं? उसी से कपट करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नीचता नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन में कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया है, कितने ही प्रेम के मतवालों को वो सब्ज बाग दिखा चुकी हूं, पर कभी मेरे मन में ऐसी दुविधा ना हुई थी, कभी नहीं, कभी हृदय ने उसका तिरस्कार ना किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था? ऐसा अनुराग मुझे और कहीं नहीं मिला। क्या मैं कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती हूं? हाँ अवश्य बना सकती हूं, क्यों नहीं बना सकती। इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है।

0: भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या मैं प्रकृति को धोखा दे सकती हूँ? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव, असंभव है। वो स्फूर्ति, वो चपलता, वो विनोद, वो सरल छवि, वो तल्लीनता, वो त्याग, वो आत्मविश्वास, मैं कहां से लाऊंगी? मैं कहां से लाऊंगी वो आत्मविश्वास जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कितना भी चाहूं पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। नहीं नहीं नहीं बना सकती। आह, ये नौबत ही क्यों आने दी मैंने? क्यों क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर साहब को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर मैं किस मुंह से कह सकूंगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी है? अब केवल उसका पदचिन्ह रह गया है। हाँ, केवल पदचिन्ह।
1: रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वो किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी ना देखती थी। अभी 4 दिन पहले वो इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। तारा ने सोचा,
0: प्रेम सत्य है, सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सोचती हूं क्यों न यहां से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी ना हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर साहब का विवाह हो जाए तो फिर आकर उनसे मिलूं और ये सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाऊं। इस समय कुंवर साहब पर वज्रपात सा होगा, न जाने उनकी क्या दशा होगी। पर इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो, मैं अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। नहीं नहीं कर सकती। मेरे लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है और इससे अधिक मेरा अधिकार नहीं।
1: दाई ने आकर कहा,
2: बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए।
0: हाँ नहीं नहीं, जरा भी भूख नहीं है। सुनो, ऐसा करो तुम जाकर खा लो।
2: देखिए मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
0: अरे मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा एक बात बता, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे है ना?
2: अरे बाई जी मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा।
1: दाई चले गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे।
0: हे भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक मुझे वंचित रखा वो आज क्यों सामने ले आए? वैसे ये भी तुम्हारी ही क्रीड़ा है।
1: तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए, गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जा खड़ी हो गई। कहाँ थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था पर कांति कहाँ? अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। ये कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा,
0: कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहां भाग जाऊं? रेल से भागती हूं तो भागने ना पाऊंगी,

0: सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। ऐसे रास्ते से जाऊं जिधर किसी का ख्याल भी न जाए। हाँ, ऐसा ही करती हूँ।
1: तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वो दुखी न थी, निराश न थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वो निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया।
0: कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विवलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। डर लगता है, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है।
1: इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा।
0: ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा ना हो कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विफलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। कुछ अनिष्ट हो सकता है। ऐसा करती हूँ, पत्र लिखती हूँ।
1: वो मेज पर जा बैठी और ये पत्र लिखने लगी।
0: हे प्रियतम, मुझे क्षमा करना। मैं खुद को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मगन रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। प्रीतम, मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। और यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, नाराज न होना। और ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से वधू के लिए छोड़े जाती हूं। हाँ, केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूं और तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, तारा।
1: ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वो बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वो हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाहा नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाहा को पुकारा।
0: माझी, उस पार नाव ले चलेगा क्या?
2: इतनी रात गए, नाव न जाई?
0: हाँ, रात है, इसीलिए दूनी मजदूरी दूंगी। अब बोल, चलेगा?
1: मगर दुगुनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला,
2: सरकार उस पार कहाँ जाई है?
0: उस पार एक गांव में जाना है, चलो ना।
2: मुदा इतनी रात गए, कौनो सवारी शिकारी न मिली?
0: कोई हर्ज नहीं, बस तुम मुझे उस पार पहुंचा दो मांझी। हाँ, उस पार पहुंचा दो।
1: मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्ज्वल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को

कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का तीसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, दाई संगीता श्रीवास्तव, माझी राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: तो दीपा, कहानियाँ तो हमारे जीवन को हमेशा से प्रेरित करती रही हैं, है ना?
1: और वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती।
0: हाँ, और कभी जब हमें लगता है कि हम कहानीकार बन सकते हैं, वहाँ दिल की बहुत चलती है, पता है? कोई लेखक जब लिखता है, समाज को देखता है, लेकिन उसका दिल क्या कहना चाहता है, दिल क्या कल्पना करता है, ये लेखक अच्छे से जानता है।
1: सही कहा आपने। और देखिए, तो एक संदेश ले ली क्या दिल की मानी?
0: हाँ, वही तो
1: है ना। ये संदेश कह रहा है कि
2: संसार के रचयिता ने हमें सभी को एक बहुमूल्य भेंट दी है, वो है शरीर। इसमें दिल भी है और दिमाग भी। हम सभी अपने अच्छे और बुरे का निर्णय क्यों नहीं ले सकते? मेरे जीवन में कई ऐसे निर्णय हुए हैं जहां मैंने दुनिया की न सुनकर अपने दिल की सुनी और दिमाग की सुनी और सफलता भी हासिल की है। जैसे कि कहते हैं कि मेरी सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी के साथ अपने माता पिता के आशीर्वाद से विवाह करने का निर्णय भी है, और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कठिन समय में हमेशा साथ चलती है। इसलिए सुनो सबकी, दुनिया की भी सुनो, पर करो अपने दिल और दिमाग की।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की विकल्प थोड़ा पेचीदा है। कई बार हम दिल की सुनते हैं तो दुनिया वाले सुनने नहीं देते, और अगर दुनिया की सुने तो बस सुनते ही रह जाएंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। मैं तो सुनता दुनिया की हूँ, लेकिन करता हूँ अपने दिल की आवाज सुनकर।
2: क्या बात है। एक संदेश कहता है कि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दिल की सुननी चाहिए या दुनिया की, यह तय करना कठिन हो जाता है। तब समझदारी इसी में है कि हम दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाकर निर्णय लें। ऐसा फैसला जिसमें सब अपनी खुशी भी हो और किसी का अहित ना हो, वही सबसे उचित और सही निर्णय है।
0: बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की गाड़ी चलाने के लिए दिल का इंजन और दिमाग, दुनिया का अनुभव का स्टीयरिंग होना जरूरी बहुत है। जहां बात जुनून, खुशी और सुकून की हो, वहां दिल की सुननी चाहिए। जहां बात व्यवहारिकता और जिम्मेदारी की हो, वहां दुनिया के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। अंत में दुनिया तो केवल आपके परिणामों को देखती है, लेकिन आपका दिल उस पूरी यात्रा को जीता है। इसलिए ऐसी राह चुने जिसे कल मुड़कर देखने पर आपके चेहरे पर पछतावा नहीं हो, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान हो।
2: बिल्कुल। यानी कि जब आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार दिल की, लेकिन अगर दुनिया में कौन शामिल है, आपके परिवार वाले या आपके शुभचिंतक, तो उनकी भी सलाह जरूर लें और जीवन में आगे चलते रहें।
0: बिल्कुल। अब तो हमें आगे बढ़ना है इस गीत के जरिए।
2: चलिए।

वो चांद मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा

0: हाँ तो दीपा, अब हम बिहार की सैर पर चलते हैं।
1: चलिए।
0: देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं दीपा कि आज लिट्टी चोखा पर बात होगी तो बिहार का जो बिहार का ऐसा साधारण सा पौष्टिक भोजन है जिसके लालच में मैं 2023 में एक हफ्ते पटना में रहने चला गया। मुझे रहने का मौका मिला और वहाँ की एक होटल की कर्मचारी से पूछकर हम भी एक दिन राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के सामने लिट्टी चोखा के स्टॉल पर पहुंच गए। क्या स्वाद था पूछिए मत। और इसलिए दूसरे दिन भी वहाँ लिट्टी चोखा खाने पहुंच गए, जहाँ होटल की थाली 200 देना पड़ता था, मात्र 30 रुपए में पेट भर जाता था। सस्ता भी, पौष्टिक भी और सुपाच्य भी। अब और क्या चाहिए बताइए।
1: क्या बात है भाई, अगर ऐसा पौष्टिक और स्वाद से भरा हुआ कोई व्यंजन मिल जाए तो क्या बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसको बनाने का भी अब तरीका जान लेते हैं। इसको लेना है आपको 500 ग्राम गेहूं के आटे में 2-3 बड़े चम्मच घी और थोड़ा सा नमक मिलाकर सख्त आटा गूंद लीजिए। और सत्तू की स्टफिंग के लिए आप कीजिए कि 1 कप सत्तू में बारीक कटी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अजवाइन, कलौंजी, नींबू का रस, अचार का मसाला, सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाइए। और स्टफिंग को और इसको कैसे करना है, आटे की लोई में सत्तू का ये जो मिश्रण आपने बनाया ना, इसको भरना है और फिर बाटी की तरह बंद कर देना है, जैसे दाल बाटी की बाटी
0: बनाते होती
1: है ना, उस तरह
0: अच्छा,
1: से उसको बंद कर देना। अब इसे आप या तो कढ़ाई में धीमी आंच पर सेक सकते हैं, आप कुकर पे भी रख सकते हैं, या फिर आप जो ओवन होता है दाल बाटी बनाने वाली बाटी उस पे भी आप इसको रख करके सेक सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो धीमी आंच पर ये 20-25 मिनट में खूब अच्छे से सुनहरा होने तक सिक जाएगा। अब चोखा कैसे बनाना है, बैंगन और टमाटर को भी भून लेना है। जो बारीक जाली होती है ना, हम बैंगन के भरते के लिए जो
0: अच्छा,
1: बैंगन के लिए जो जाली रखते हैं, उस जाली को रखिए, उस पे बैंगन रख दीजिए और टमाटर रख दीजिए। तो टमाटर भी जैसे ही ऊपर से सिकने लगेगा तो उसकी छिलके आप हटा
0: निकाल लीजिए।
1: इसी तरह से हम बैंगन के भरते के लिए किस तरह से बनाते हैं वैसा ही बनाना है। फिर इसमें हमें अब इसमें छौंक न लगा करके इसे अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आप भुना हुआ आलू भी इसमें मिला दीजिए, उबला हुआ। अब यहाँ इसमें डालिए कटा प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, सरसों का तेल इसमें अच्छे से मिलाना है और ये सब चीजों को मिला करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए सब कुछ और धनिया पत्ती डाल दीजिए। अब आप सर्व कीजिए कि लिट्टी को खूब अच्छे से गर्म घी में डुबो करके थाली में साइड में रखिए, चोखा रखिए, चाहे तो आप हरी चटनी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी भी बनती है।
0: ये आपका अपना स्वाद है।
1: हाँ, ये आपका अपना स्वाद है, आप चाहे वैसे इसको
0: बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है तुमने जिस खूबसूरती के साथ बनाना बताया है ना, अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हारे टिफिन में लिट्टी चोखा जरूर होगा।
1: बिल्कुल, चलिए, पक्की बात।
0: तो इसी खुशी में मैं आपको सुनवाती हूँ ये गीत।
1: चलिए।

चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे।

चली जाए, मारना दे टंक, नजर कोई हाँ।

0: हाँ तो दीपा, सखी सहेली कार्यक्रम में बस आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी और
1: दीपा माहेश्वरी को
0: आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

बेचारा। पिटारा में आज सेहतनामा।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। आज के इस प्रोग्राम में बातचीत का विषय है त्वचा के रोग और उपचार। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर एस जी मूर्ति से अमरकांत दुबे की ये बातचीत।
1: दोस्तों नमस्ते, सेहतनामा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस जी मूर्ति का स्वागत कर रहे हैं सेहतनामा प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
2: थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी हाँ,
1: स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप। त्वचा का मामला ऐसा है पूरा शरीर इससे ढका हुआ है। रोग कहाँ से, कैसे, कितनी जगह से होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से फैलेगा, बड़ा विस्तृत सा इसका दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। त्वचा रोग के बारे में एक जनरल सी जो बात आपको लगती है कि कहनी चाहिए।
2: त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और दिखता हुआ है बाहर से, इसीलिए उस पर कोई भी बीमारी होती है तो दिखाई देती है और मरीज उससे थोड़ा टेंशन में आ जाता है। शरीर के अंदर की कोई बीमारी हो, समझे लीवर में समझे छोटा सा दाग हो या कुछ हो, तो उसे दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा दिन चल जाता है। चमड़ी पे जो भी होगा वो दिखाई देता है। और चमड़ी जो है बहुत बड़ा ऑर्गन, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, और वो भी कुछ काम करता है। चमड़ी सिर्फ हमारे शरीर को ढकने की या सुंदरता का एक कवर नहीं है, वो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, सेंसेशन के लिए काम करता है, बाद में ब्यूटी के लिए तो क्या है ही उसका काम। तो इट इज़ गॉट अ मल्टीपल फंक्शन एंड उसकी जो बीमारियां भी उतनी ही ज़्यादा है। देर आर बीमारियां जो चमड़ी के लिए खास चर्म रोग होती है, और दूसरी बीमारियां जो अंदर से जो बीमारियां है वो चमड़ी में दिखाई देती है। जैसे समझिए प्लेटलेट कम हो गई तो ब्लीडिंग होने लगी, चमड़ी पे ब्लीडिंग दिखने लगा, तो हमें समझ में आता है कि ये अभी कुछ अंदर का बीमारी है। लिवर की कोई प्रॉब्लम हो तो चमड़ी पे दिखाई दी हो, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो तो दिखाई दी हो।
1: डॉक्टर साहब, अब इतना बृहद, इतना

0: विस्तृत विषय है, तो हम हर चीज को थोड़ा छूते छूते चलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल वही हो सकता है।
0: कोशिश करेंगे लोगों की जो गलत धारणाएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में आप बताएं कि किस तरह की बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां जो कुछ ऐसी जिनका असर चमड़ी पर दिखाई देता है।
1: अगर समझे खून की कमी हो तो चमड़ी जो है पेल दिखाई देता है, मतलब
0: पीली पीली
1: पीली या फीकी दिखाई देती है, जैसे फीकी। हाँ। जॉन्डिस है जिसमें पीली दिखाई देती है
0: जी।
1: ब्लड के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है जैसे प्लेटलेट की कमी होने से, जैसे डेंगू आजकल बहुत ही
0: नाम
1: हो गया है, तो उसमें प्लेटलेट कम होती है तो ब्लीडिंग जब होती है चमड़ी में दिखाई देती है। तो अगर चमड़ी में ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखाई दिए तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस इसमें थोड़ा ब्लीड हो रहा है तो प्लेटलेट कम हो सकता है। एंड देर आर अदर डिसीजेज जैसे लिवर के प्रॉब्लम्स में है, वायरल इन्फेक्शन में वायरल रैश आते हैं, एलर्जी हो जैसे अल्टीकेरिया बोलते हैं एलर्जी, कुछ खाने पीने में एलर्जी हो तो ऊपर पित्ती जैसे निकलती है ददोड़े, वो ददोड़े भी अंदर के प्रॉब्लम से हो सकती है। एंड देर आर सो मेनी लाइक दैट। गर्मी ज़्यादा बढ़ गया तो मलेरिया बोलते हैं,
0: गमोरिया
1: उसको ही मलेरिया बोलते हैं। तो वो कुछ दवाई खा रहे हो आप, समझिए स्टेरॉइड खा रहे हो तो उससे जो चमड़ी पे इन्फेक्शन हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट में चमड़ी में इन्फेक्शन हो सकती है जो हील नहीं होती है, विटामिन की कमी से चमड़ी की सेंसेशन कम हो सकती है, आई थिंक लेप्रेसी है, लेप्रेसी में सेंसेशन कम हो सकता है तो जख्म हुआ तो हील नहीं होगा वो भी।
0: अच्छा, लेप्रेसी में तो दाग भी आ जाते हैं,
1: दाग भी आते हैं चमड़ी पे।
0: थोड़ा सा रुकते हुए इस पर ही बात करते हैं कि लेप्रेसी में शुरुआत में जो दाग दिखाई देते हैं लोग उसे सफेद दाग जैसा समझने लगते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं, तब इस तरह का कोई पेशेंट जब आपके पास आता है तब आपका शुरुआती जो इलाज होता है या पेशेंट को समझाने की जो बातें होती हैं वो किस तरह से और क्या होती
1: है? देखिए क्या है, सफेद दाग जो है ना हमारे भारत में थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा जाता है, हालांकि हर सफेद दाग कुछ खराब नहीं होता, कोई भी सफेद दाग खराब नहीं होता। इनफैक्ट सफेद दाग की 3-4 वजह है, एक तो लेप्रेसी, दूसरी विटिलिगो, थर्ड फंगल इन्फेक्शन, ये 3 मेन कारण है। उसमें जो पहले जो लेप्रेसी कुष्ठ रोग बोलते थे उसमें जो सफ़ेद चमड़ी आती थी, और तभी के ज़माने में पहले, मैं तो बोलूँ 50-60 साल 70 साल पहले इसका इलाज इतना नहीं था, ये ऐसे पेशेंटों को थोड़े आउटकास्ट कर दिए जाते थे और कुछ तो भगवान का या कुछ कर्स माना जाता था और
0: ईश्वर का क्रोध समझकर उसको थोड़ा सा,
1: उस चीज से ये सफेद दाग सभी उसी नजरी से देखने लगे लोग अभी। वेदर इट इज विटिलिगो जो सफेद दाग की बीमारी है,
0: ये विटिलिगो को थोड़ा सा समझाएंगे।
1: विटिलिगो
0: सफेद दाग
1: ही बोलते हैं जो जिसमें कोई सेंसेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, उसमें तो मेलानिन जो रहती है जो कलर बनाने की पेशी है वो कम काम करती है, बस जैसे हमारे सफेद बाल हुए वैसे ही सफेद चमड़ी हुई, इतनी सिंपल बीमारी है वो विटिलिगो। लेकिन लोगों के नजर में वो इतनी खराब लगती है, लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि ये किसी इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को, अगर इन्फेक्शन नहीं होता है, अगर ये लोगों के मन में जो इसके बारे में गलत फहमी है विटिलिगो के बारे में।
0: हाँ, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सफेद सफेद से लोग हैं जिनके बाल भी पूरे सफेद रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो विटिलिगो है।
1: वो नहीं, वो एल्बिनिज्म है, विटिलिगो का एक्सटेंशन एल्बिनिज्म अलग है, वो उसमें भी मेलानिन का ही प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल लेवल पे अलग चीज है, पूरे शरीर में कलर बनना बंद हो गया रहता है, वो एल्बिनिज्म है, पूरे शरीर उनके मतलब पुतली भी व्हाइट है, बाल भी व्हाइट है, वो उनको कलर नहीं बनती उसमें। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी सफेद दाग की बीमारी जो कोड बोलते हैं, मेरे ख्याल से नॉर्मल लैंग्वेज में कोड बोलते हैं, उसको भी लेप्रेसी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो वैसा नहीं है, लेप्रेसी अलग चीज है, कोड अलग चीज है। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा जिसको सफेद दाग कहा जाता है उसमें सेंसेशंस नहीं जाते हैं, सेंसेशंस बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, मैंने जैसे बताया सफेद बाल जैसी चीज है, उससे ना किसी को इन्फेक्शन होने वाला है ना कुछ अंदर फैलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ दिखने में वो सफ़ेद दिखता है, और अगर हम लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे तो इसको ट्रीट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी जो सफ़ेद दाग की बीमारी है जो लेप्रसी बोलते हैं हम, उसमें सेंसेशन कम होता है, वो एक इन्फेक्शन है, वो किसी को फैल सकता है, शरीर के अंदर भी फैल सकता है और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
0: किस तरह का नुकसान होता
1: है? ये अंदर के ऑर्गन्स में जाएगा तो लिवर में प्रॉब्लम कर सकता है, समझिए स्किन में जब वो सेंसेशंस को लॉस होते तो जख्म हो जाता है, जख्म होता है वो बोन्स खा जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, तो बोन्स सब छोटे हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ स्ट्रोक के जैसे हाथ वगैरह गलने लग जाते हैं, तो ये सब चीजें हो जाने लगती है, जगह जगह पे फोड़ियां आना, नोज का ब्रिज टूट जाना, एक टिपिकल
0: मवाद और ये सारी
1: टिपिकल लियोनाइन फेस बोलते हैं उसे, चेहरा जो शेर जैसा हो जाता है ऐसा, तो ये सब बोन्स गलने से और अंदरूनी थोड़ी इन्फेक्शन फैलने से होता है ये लेप्रसी के जो
0: जंट है। लेप्रसी का इलाज कहाँ?
1: लेप्रसी का इलाज बहुत ही सिंपल है, इतने सालों से हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, अभी तो लेप्रसी मेरे ख्याल से मुक्त हो सकते हैं हम लोग थोड़े सालों में अगर ट्रीटमेंट बराबर चले तो। ये जो लेप्रसी की जो डिसीज है वो चली जाएगी, लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई जो अन्यता है वो उसके वजह से, हाँ उसके वजह से ये सफेद दाग
0: कभी गलत नजरों से देखते हैं, नजरों से
1: देखा जाता है। और सफेद दाग में एक फंगल इन्फेक्शन भी है जो टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं, उसमें भी सफेद दाग होता है, बट लोग

0: वो सब लगता है कहीं ये लेप्रेसी तो नहीं, बाकी कुछ भी
1: लेकिन
0: चल
1: जो
0: जाएगा,
1: फंगल इन्फेक्शन है
0: वो भी इजीली ट्रीटेबल है,
1: ठीक होता है, लेकिन सफेद दाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो है उससे कोई प्रॉब्लम होता है?
0: बिल्कुल नहीं होता, वो भी एक दूसरे को फैल सकता है बट ट्रीटेबल है, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
1: प्रॉब्लम नहीं,
0: लोगों के मन में क्या होता है, ट्रीटमेंट नहीं किया तो लोगों को देखने का नजरिया उस पर अलग हो जाता है, इलाज तो करेंगे लेकिन कोई कोई डर के आते हैं
1: जी जी
0: कि कोई वो बीमारी तो नहीं है कहीं, दे हैव टू बी टोल्ड दैट इट इज नॉट लेप्रसी। वापस अगर मैं उसको बराबर से पुटअप करूँ तो लोगों के मन में सफ़ेद दाग पहले से शुरू आई है लेप्रेसी, वो लेप्रेसी तो नहीं है, करते करते सब सफ़ेद दाग को लेप्रेसी के नज़रिए से देख रहे हैं। अभी जो सफ़ेद दाग फंगस की वजह से हो या विटिलिगो की वजह से हो, वही चीज़ में उनका ध्यान रहता है कि मैं कहीं ये गलत बीमारी तो नहीं है। कोई भी सफ़ेद दाग होगा तो उसका एक्सेप्टेंस पुअर है, वही अगर काला दाग होगा तो कोई टेंशन नहीं है।
1: तो सर नजर का टीका,
0: हाँ कितना भी काला दाग होने दीजिए, आप चेहरे पे पूरा पिगमेंटेशन हो जाता है, छाई आती है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन सफेद दाग ये भी बर्थ मार्क भी रहेगा तो बहुत टेंशन होता है।
1: अभी लेप्रेसी तो गलत धारणाएं निकलनी,
0: धारणा निकलनी चाहिए। कोई भी सफेद दाग मेरे ख्याल से अभी लेप्रेसी तो खत्म हो जाएगा थोड़े सालों में, इलाज करना चाहिए और जिस चीज का इलाज नहीं होता उससे डरने की जरूरत नहीं है, जैसे विटिलिगो उससे कुछ नहीं होने वाला।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे थे कि सफेद दाग जो है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुष्ठ रोग कोढ़ ये भी अब बिल्कुल आसानी से इस पर काबू पा लिया जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ ही समय में ये हमारे देश से पूरी तरह से इसका उन्मूलन संभव है। किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलकर सही जानकारी ले लें और निश्चिंत हो जाएं। आपको अभी तुरंत मैं एक निश्चिंत होने का एक और तरीका बताता हूं। कोई म्यूजिकल तरीका भी होता है?
0: म्यूजिकल तरीका तो गाना सुनना ही है, तो एक गाना सुन लेते हैं।
1: कौन सा?
0: दिलवाले फिल्म का गेरुआ सुना दीजिए।

0: डॉक्टर साहब, ये गाना अभी सुन रहे थे जब, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुन रहा था। सफेद रंग की बात कर रहे थे, ये थोड़ा गेरुआ होने की बात कर रहे थे,
1: कलरफुल हो रहा है अभी थोड़ा। यस,
0: अब मोहब्बत में तो आदमी किसी भी रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाता है, बस शर्त इतनी होती है कि उसका महबूब उसके करीब होना चाहिए। आप किसी भी तरह के चर्म रोग से पीड़ित हो, अब डॉक्टर साहब बात करते हैं उस रोग के बारे में जो नॉर्मली अंदर से नहीं तकलीफ उठती है। हमारी त्वचा को बाहर से कोई आक्रमण हुआ, उससे त्वचा डैमेज हो गई, यानी कोई वायरस लग गया किसी तरह का। अगर एलर्जी की बात करें तो कई लोगों को कुछ खुजली के जैसे झाड़ पेड़ भी होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कुछ चीजें होती हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं त्वचा को, ये किस किस तरह की बीमारियां होती हैं नॉर्मली, मतलब जो आपके पास पेशेंट आते होंगे, और फिर उसके लिए किस तरह से आपकी
1: ये जो टॉपिक आपने बोला ये बहुत वास्ट है, लेकिन मैं उसे बहुत सिंपल चीज में डिवाइड कर दूंगा। ये आप जो बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से स्किन पे कौन सी बीमारियां हो सकती है, अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक तो इरिटेंट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं इसे, जो कि किसी चीज के लगने से या इरिटेट होने से होता है। ये कोई एलर्जन लग गई हो, जैसे हम साबुन यूज करते हैं एकदम ही स्ट्रॉन्ग सोप्स यूज किए तो हाथ को इरिटेट होना, टीका जो इरिटेट करता है वो, या जिस चीज़ की एलर्जी हो, समझो किसी को सिंदूर की एलर्जी हो और लगा रहे हो तो एलर्जी हो रही है, ये डर्मेटाइटिस की बात हुई। दूसरी जो बाहर से होती है वो इन्फेक्शन होती है। अब इन्फेक्शन भी तीन प्रकार के हैं, एक तो बैक्टीरियल है, फंगल है और वायरल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिर्फ जो फोड़ियाँ फुंसी वो होती है, वो बाहर से जो बैक्टीरियाज एंटर कर लेती है उससे होती है, और आजकल फंगस बहुत फैला हुआ है जिसे हम दाद कहते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस में है जैसे वॉर्ट्स है, मोलस्कम कॉन्टेजियोजम है, हर्पीज़ है, हालांकि हर्पीज़ तो अंदरूनी वायरस से होता है बट हर्पीज़ भी वायरल इन्फेक्शन भी है। फिर चिकन पॉक्स है, मीजल्स है।
0: चिकन पॉक्स के दाग नहीं जाते हैं अगर ऐसी मान्यता है,
1: या चिकन पॉक्स के दाग वो नहीं जाएंगे जो बहुत ही खराब तरीके से इन्फेक्टेड हो गई हो, एकदम सुपरफिशियल हो तो दाग तो चले जाएंगे। वो हम पहले के जमाने के स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं, पहले जमाने में स्मॉल पॉक्स हुआ करता था जो बहुत अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, वो जो स्मॉल पॉक्स के दाग है वो नहीं जाते थे। चिकन पॉक्स के दाग ओवरऑल इतने नहीं रहते हैं,
0: वो नेचुरली चले जाते हैं,
1: नेचुरली चले जाते हैं, और अगर कुछ नहीं नेचुरली चले जाते हैं और बहुत डीप स्कार रहेगा तो उसको इलाज कर सकते हैं।
0: किस तरह का इलाज होता है?
1: इलाज राइट फ्रॉम मलम से लेकर लेजर तक अभी अवेलेबल है, तो यू कैन डू एनीथिंग।
0: आपने जैसे लेजर की बात की, तो जब त्वचा पर लेजर से

0: कोई इलाज किया जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिकॉज लेजर जो है वो स्किन के बहुत डीप जाता नहीं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेजर, तो जो स्किन में हम लेजर यूज करते हैं वो चमड़ी से बहुत नीचे जाता ही नहीं है, तो जो भी होगा स्किन पे ही है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे मुझे कुछ तो साइड इफेक्ट बताइए अभी, तो मैं एक ही बता सकूँ, चमड़ी जल सकती है, वो तो जल से ही तो ऐसे भी जलती है, जल सकती है, किसी भी चाय गिरने से भी जल सकती है, और उसका इलाज तो वैसे भी स्किन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। तो द वर्स्ट दैट कैन हैपन विद लेजर इज लेजर बर्न्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
0: टैटू वगैरह बनाने से निशान बनते हैं, तो लेजर से जब आप इस तरह की कोई दाग निकाल रहे हैं हाँ। तो वो तो निकल जाएगा दाग, लेजर का किसी और तरह का कोई दाग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
1: लेजर में स्कारिंग होना इज नॉट अ कॉमन थिंग, कॉम्प्लिकेशंस आर नोन इन एनी मेडिकल प्रोसीजर्स। तो ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि चमड़ी जल गई हो, ये हालांकि बहुत रेयर है। तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेजर कराता है तो उसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं।
0: तो आप बात कर रहे थे बाहर से होने वाले,
1: पहले तो बताया कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, फिर इरिटेंट डर्माटाइटिस, या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होल वाली चीजें जो समझिए हम, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और इरिटेंट डर्माटाइटिस है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो एलर्जी होती है कुछ बाहरी चीज की, और इरिटेंट डर्माटाइटिस है उसके इरिटेशन से हो, जैसे आपने सोप यूज किया। आजकल बहुत अच्छे अच्छे सोप्स आते हैं जो बर्तनों को दिखा दो तो पूरी तेल वेल सब बर्तन की साफ कर देती है, बट हमने ये नहीं सोचते कि हमारी चमड़ी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है वो, तो वो चमड़ी के ऊपर की थर को भी छिल सकती है वो। सो दैट्स एन इरिटेंट डर्माटाइटिस बोलते हैं उसे हम। तो वो नॉर्मली हाउसवाइफ जो बर्तन का घर का सब काम करते हैं उनके हाथों में पाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं या तो स्ट्रॉन्ग सोप नहीं यूज करें या तो ग्लव्स डाल के काम करें। और वो जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो तो एलर्जी एक तरह का, जैसा निकल है वॉच स्ट्रैप का, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, किसी किसी को बिंदी के जो गम रहती है जो स्टिकर की गम है उसकी हो सकती है, डाइस की हो सकती है, हेयर डाई।
0: डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे हेयर डाई पे, लेकिन इस समय ये अब यहाँ हम कौन सा गाना सुन सकते हैं?
1: थ्री इडियट्स की जुबी डुबी सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: चलिए ये डूबी डूबी के गाने के बाद जो आप बात कर रहे थे हेयर डाई के,
1: हेयर डाई एलर्जी,
0: अब हम आ गए एक ऐसी चर्चा पे जो बड़ी कॉमन सी, मतलब लोगों के बीच में बहुत सी बालों को लेके और बालों की चमड़ी को लेके और फिर उससे जुड़ी बहुत सी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, ये हेयर डाई लगाने से स्किन और आंख तक, कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे तुम ये हेयर डाई यूज करोगे तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, और तू ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारा माथा काला हो जाएगा, ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारे पीछे फोड़े हो जाएंगे।
1: ये आपका बात सही है। ये देखिए, हमने शुरू किया था एक्सटर्नल फैक्टर जो स्किन को अफेक्ट करे, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत वास्ट है और हम अटके हुए इरिटेंट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस पे ही अटके हुए। आपकी बात सही है कि ये जो हेयर डाई वाला है, पीपीडी एलर्जीज बोलते हैं उसको, पैराफिनिलीन डायमाइन करके एक डाई होती है जो हेयर डाई में यूज होती है,
0: उसके बिना हेयर डाई नहीं बनती।
1: उसके बिना हेयर डाई 99% आई वुड से, कोई भी आप लीजिए, काली मेहंदी से लेकर आप कोई भी हेयर डाई लीजिए, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड लीजिए या सिंपल लोकल ब्रांड लीजिए, ये काला कलर पीपीडी से ही होता है
0: जी।
1: थोड़ी बहुत अभी पीपीडी फ्री हेयर डाई आने लगे हैं जो थोड़ी सी महंगी है, बट वो पीपीडी फ्री है, लेकिन उसकी एलर्जी नहीं है, वो टेस्ट करके ही देखना पड़ेगा। तो इन जनरल जो हेयर डाई एलर्जीज होती है वो पैराफिनिलीन डायमाइन की एलर्जी होती है
0: जी।
1: ये जो एलर्जी होती है इससे चमड़ी थोड़ा सा इरिटेट होता है, लाल हो जाती है, चेहरा आंखें ऐसे सूज सकती है, फोड़िया ऐसे होगी कि अगर चमड़ी छिल गई वगैरह तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कितनी इरिटेट होती है स्किन उसके ऊपर डिपेंड होती है। किसी किसी को सिर्फ थोड़ी सी खुजली होगी, किसी किसी को थोड़ी रेडनेस होगा, किसी किसी को चमड़ी पील होगा। क्या होता है जैसे अभी हेयर डाई डाले है तो फिर आंखों के ऊपर सब जगह पे थोड़ी थोड़ी उसकी इफेक्ट रहती है,
0: भले उसका आंखों से कॉन्टेक्ट
1: ना हो, तो उसके आंखें सूज जाना, आंखों के अंदर नहीं बट बाहर की जो आईलेट्स है वो सूज जाना। हेयर डाई डाला और अगले दिन उसने देखा कि आंखें सूजी हुई, आईलेट्स एकदम आंखें खोलने को नहीं पा रहा है वो, और सर खुजा रहा है, लाल हो गया है। यस, बट इट कैन प्रोग्रेस टू अ वेरी बैड थिंग। इसीलिए उन लोग बोलते हैं कि टेस्ट करके डालिए, टेस्ट करके डालिए करके। हेयर डाई से नजर कमजोर होगी ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ, इतना नहीं होगा। अगर कंटिन्यूस एलर्जी है तो पेशेंट 2-3 बार में तो फिर लगाना बंद ही कर देगा
0: जी।
1: देन देयर आर अदर पीपीडी फ्री हेयर डाइज है, बहुत सारी अलग है।
0: और ये जो माथे का काला होना,
1: ये सब एलर्जी का एक साइड इफेक्ट है। कोई भी चीज़ का जब स्किन इरिटेट होता है ना तो पिगमेंटेशन ज़्यादा होने लगती है, तो जब ये इरिटेट होता है हेयर डाई से तो वो भी काला होने लगता है चेहरा भी, वो जो कलर है उससे नहीं, वो इरिटेट होता है इसीलिए।
0: मान लीजिए किसी ने लॉन्ग रन तक इसको यूज़ किया, उसका माथा काला पड़ गया, उसका इलाज है कि भाई अब आगे यूज़ मत करो।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जितना वो काला हो चुका है तो वो क्या आप ठीक कर सकते हैं?
1: वो ठीक कर सकते हैं, मतलब उसका इलाज हो सकता है। देखिए, ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हाँ या ना में जवाब किसी भी बीमारी को नहीं दे सकते हम लोग
0: जी।
1: हाँ, बट कोशिश कर सकते हैं और बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे उनका कॉज हटा दिया है तो शरीर भी अपना करेक्टिव मैकेनिज्म शुरू कर देता है। शरीर भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर है खुद का, अंदरूनी। अगर हम छेड़े नहीं तो शरीर अपने आप काम करने लगता है, बट शरीर की एक क्षमता होती है उतनी देर तक ही कर सकता है। तो हम जो है उनको असिस्ट करेंगे और वो कलर जाने में मदद करेंगे, लेकिन उसको हेयर डाई अवॉइड करना बहुत जरूरी है। हेयर डाई के बारे में भी ये है कि ये जो सफेद बाल है, अगेन इट्स जस्ट अ परसेप्शन, आई फील सफेद बाल में क्या प्रॉब्लम है अभी। तो वो भी देखने का नजरिया है सिर्फ। अभी फॉरेनर्स लोग सफेद बाल आते हैं तो हम तो खुश होते हैं, हमारे यहाँ सफेद बाल को बुढ़ापा की नजर माने जाते हैं, मतलब बुढ़ापा की बहुत निशानी मानी जाती है। तो अगर हम वापस ये परसेप्शन बदल दे कि कल को अगर समझिए सफेद बाल की फैशन आ जाए तो डाई की जरूरत ही नहीं पड़े। वी हैव टू बी हैप्पी विद अवर बॉडी, अवर कलर, अवर हेयर, क्वांटिटी ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर, ये सब चीजें जो है नैसर्गिक है, नेचुरली दिया हुई चीज है, तो उसको जरा खुश रहिए।
0: खुश होने की बात हम और भी करेंगे, फिलहाल एक खुश होने का एक और नुस्खा है,
1: इसके लिए एक गाना होना चाहिए, डियर जिंदगी वाला, लव यू जिंदगी,
0: लव यू जिंदगी।

0: डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने, जो ईश्वर ने हमें जैसा बना के भेजा है उससे प्यार करो, जिंदगी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो।
1: सब चीज सही करिए, थोड़ा एकदम डिविएट मत होजिए, और जो शरीर है उसका आनंद लीजिए। एवरीबडी इज मेड इन अ डिफरेंट वे, सभी लोग को एक ही साइज का 38 नंबर का पैंट एंड 42 नंबर का शर्ट फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो एंड डोंट बी अनहैप्पी विथ योर बॉडी, ट्राई टू बी फिट। फिट मीनिंग अपनी जो रोजमर्रा की काम है उसे करने की क्षमता होनी चाहिए। फिटनेस का आजकल डेफिनेशन अलग हो गया है। फिटनेस तो मतलब सिक्स पैक फिटनेस, शोल्डर्स ऐसे होने चाहिए या बाल काले होने चाहिए, घने बाल, ये फिटनेस नहीं होती है
0: जी।
1: फिटनेस वो होती है जो अपने काम करने की क्षमता बनाए रहे। जो अगर टीचर रहेगा तो उसकी फिटनेस है कि उसका बुद्धि शक्ति जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। वो अगर सिक्स पैक बना के खड़ा हो जाएगा वहां तो उसको और कुछ पढ़ाई नहीं किया तो वो फिट नहीं रहा।
0: फिटनेस का मतलब ये है कि आप सुबह से एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलें, अपने काम को खुशी खुशी करें। तो डॉक्टर साहब, अब असंतुलित जीवन जीता है उसका असर कई जगहों पे पड़ेगा। त्वचा पे कौन कौन सा असर पड़ता है?
1: तो अच्छा, भी एक ऑर्गन है जैसे लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, और अगर हम लोग हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो ये सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा। जैसे अभी लाइफस्टाइल में बोलेंगे तो बराबर से नहीं सोना, विच इज़ नाउ बिकम अ फैशन। अभी जो ड्यूटीज़ रहती है वो अलग अलग ड्यूटीज़ होती है, किसी को अमेरिकन शिफ्ट, किसी को ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट, तो 3 बजे रात को जाता है और 7 बजे आता है और 3 घंटा सोता है, फिर खाना खाता है 2 घंटा, टोटल मिला के 6 घंटा सोता है, ऐसा नहीं चलेगा। जंक फूड खाना, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाना, जैसे स्ट्रेस में रहना, ये सब चीज़ों से सभी ऑर्गन्स पे राइट फ्रॉम हार्ट टू द स्किन अफेक्ट होता है। अब स्किन पे आप पूछेंगे क्या इफेक्ट होता है, तो पहले तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और फिर थोड़े दिन का परेशान चेहरा ही दिखेगा और रिंकल्स आ जाएंगे शरीर पे, थोड़े धब्बे पड़ने

0: लगेंगे, जो ब्राइटनेस है वो चली जाएगी, ग्लो चली जाएगी। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मुझे ग्लो चाहिए, ग्लो चाहिए। उनको लगता है कुछ मलम दे दूंगा तो ग्लो आ जाएगा। पहले अंदर से ग्लो होनी चाहिए। बहुत ही फिलोसॉफिकल लगता है ये बात, लेकिन अंदर से नींद अच्छी रहनी चाहिए, विचार अच्छे रहने चाहिए, खाना खुराक अच्छी रहनी चाहिए।
1: आंखों के नीचे कालापन आ जाता है।
0: यस, आंखों के नीचे काला, ये अंडर आई डार्क सर्कल्स की बात कर रहे हैं। और पॉल्यूशन से थोड़ा सा बचे, धूप से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करे अपने आप को।
1: कुछ चीजें ऐसी हैं, अब कोई धूप में काम करने वाला बंदा है
0: या
1: उसके लिए फिर वो क्या कर सकता?
0: नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है धूप। एक्चुअली अभी धूप में जो काम करता है बंदा, उसके लिए वो काम ही है, तो ही इज यूज टू दैट, तो उसको चलेगा। लेकिन धूप में ऐसा है ना कि फॉरेन कंट्रीज में धूप से कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी क्या हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन है इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, और आई वुड से पूरी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती है, तो किधर अमेरिका में अगर धूप में कोई काम करता है उसे कैंसर होती है, तो इंडिया वाला बेचारा जो खुदाई करता है वो भी सोचता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो स्किन बनी है वो थोड़ी अलग टाइप की है, तो उसमें कैंसर, स्किन के कैंसर बहुत कम चांसेस है। तो धूप में जो काम करता है उसका चमड़ी काला हो सकता है, कैंसर होने के चांस बहुत कम है।
1: स्किन कैंसर, ये एक बड़ा अलग सा शब्द है।
0: यस,
1: स्किन कैंसर एक ऐसा है कि वो तो पूरा शरीर स्किन से ढका है। अब वो बंदे को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं
0: नहीं,
1: आप
0: किस तरह से ये क्या हो रहा है। नहीं, कैंसर शब्द सुनते ही मुझे एक डर पैदा हो जाता है। जैसे मैंने बताया स्किन कैंसर, तो आपके मन में यही आ गया होगा कि स्किन कैंसर पूरी स्किन में फैल जाएगा, स्किन जल जाएगी एंड ऑल दैट। फॉर्चुनेटली इट इज नॉट लाइक दैट। स्किन कैंसर्स आर, आई वुड से, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट दे आर द सेफेस्ट कैंसर्स। जैसे अभी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हुआ, बेसल सेल कार्सिनोमा हुआ, दो चीज जो है वो उसी जगह पे इफेक्ट करती है जहां पे हुई है, वहीं पे इफेक्ट करती है। मैं आई डोंट नो वेदर आई एम पुटिंग इट राइट। जहां पे समझिए एक छोटा सा दाग हुआ, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो या बेसल सेल कार्सिनोमा हो, तो वो उतनी जगह को अफेक्ट करता है, न कि वो किधर अंदर फैल जाएगा, इतना नहीं फैलता है वो। और उसका ट्रीटमेंट है कि एक इंच उसके अराउंड स्किन को निकाल दिया जाए तो उसकी ट्रीटमेंट 100% हो गई। उसके साथ में मेलानोमास है, मेलानोमास करके कैंसर से जो फैल सकती है अंदर,
1: तो ये जो फैलती है तो किस तरह से डैमेज करती है
0: वो? डैमेज फिर अंदर गया तो लिवर में, सब जैसा हमारे कोई बोन के कैंसर हो या किडनी के कैंसर हो या लिवर के कैंसर हो, कैसे फैलती है वैसे। एक बार फैल गई तो सब एक ही चीज है।
1: ओके,
0: और भी एक हाथ दो कैंसर जो काफी फास्ट फैलते हैं, बट दोज आर वेरी वेरी रेयर। और ये जो स्किन कैंसर है ये फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा है, जहाँ पे उनकी जो स्किन टाइप है टाइप 1 टाइप 2, मतलब गोरी जो चमड़ी रहती है, वो धूप से बचाव के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्किन जो है धूप से बचने के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ। सो वी नीड नॉट वरी सो मच अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन ऑन आवर स्किन।
1: विदेशों में
0: उनका जो सन बात लेने का आइडिया ही डिफरेंट है। वो धूप को देखते नहीं बहुत दिन तक, उनके पास पूरी ठंडी का माहौल रहता है। उनको तो क्या 18-20 डिग्री बोले तो भी गर्मी होने लगी तो आते हैं आराम से कपड़े वपड़े निकाल के बीच पे सो जाते हैं और सन बात लेते हैं, फिर सनस्क्रीन लगाते हैं, धूप का आनंद लेते हैं। ये ज्यादातर ये धूप का आनंद लेने वाली बात है, और अपने आप को टैन करने की थोड़ी प्रयास चलती है उनकी। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे सब गोरे होना चाहते हैं, वहाँ उन लोग थोड़ा सा रंग लाना चाहते हैं।
1: चलिए इसी विषय पे अगला सवाल होगा मेरा, लेकिन फिलहाल एक सुरीली सी किरण की जरूरत है इस समय।
0: दिल धड़कने दो का वो गाना सुना दीजिए।
1: गल्ला गुणिया।
0: हाँ हाँ,
1: तो चलिए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, जब हम और आप बात कर रहे थे गोरे और काले की, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की।
1: यस,
0: लोग हर कोई गोरा होना चाहता है और काले रंग को बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
0: क्योंकि मान्यता बन गई है कि जो गोरा है वो बड़ा अच्छा है।
1: सुंदर दिखने के लिए मैं तो बोलूंगा कोई भी रंग चलेगा
0: जी,
1: सुंदर दिखना है तो स्किन का जो है टेक्सचर और उसकी जो क्वालिटीज है उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन द कलर ऑफ इट।
0: तो आपके पास ऐसे मरीज भी आते होंगे कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कोई लेजर का कोई अगर कोई तरीका हो या कोई दवाई ऐसी हो कि जिससे हम गोरे हो जाएं।
1: अरे गोरे होने की तो 100% डिमांड होती है, मतलब मेरे पास कोई ऐसा नहीं आता जो डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लेगा। उसको अगर मैं बोलूं ना गोरा होने का दवाई दूं क्या, वो बोलता है मुझे दे दीजिए मैं गोरा होना चाहता हूं।
0: कितने समय तक असर में रहता है?
1: जब तक उसका असर रहेगा 1-2 साल तक, तब तक वो ठीक रहेगा। बाकी जैसे आप धूप में गए और जैसे हमारी शरीर की मेलानोसाइट्स जो है मेलानिन को बना के फेंकने लगी तो कलर वापस आ जाएगा, वो जो शरीर की जो पेशी है वो तो वैसे ही रह गई।
0: अलग अलग जो त्योहार आते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली है, होली एक ऐसा त्योहार है जिसका सीधा कॉन्टेक्ट आपके स्किन से है, रंग जो है वो आपके पूरे शरीर को खराब कर, तो ये कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां एक तो दूर करनी है, दूसरा होली में मान लीजिए इस तरह के कलर हैं उनको क्या करना चाहिए?
1: होली के बारे में तो कलर नुकसान पहुंचाता है जिस तरह से अभी यूज होते जा रहा है। कलर दो तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे मैंने बताया था पहले इरिटेंट डर्मेटाइटिस एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उस चीज का एलर्जी हो सकता है या तो स्किन को इरिटेट कर सकता है। वो जो कलर्स हवा में उड़ती है अंदर इनहेल किया जाता है तो लंग्स में जाके अस्थमेटिक पेशेंटों को ज़्यादा तकलीफ देगा, खांसी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है, आंखों पे उठ के कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, स्किन में एलर्जी हो सकती है, खुजली आएगी फिर लाली होगी।

0: और स्किन पीलिंग होने लगेगा।
1: वो क्योर हो जाता है?
0: वो तो एलर्जी जैसा है, क्योर होगा मतलब स्किन जल जाएगी, फिर वो जल जाएगा स्किन जैसा हील होगा, 10-15-20 दिन लगेंगे
1: जी।
0: अपने आप हीलिंग प्रोसेस होगी, फिर दाग भी पड़ सकते हैं नहीं भी पड़ सकते, ऐसा है जख्म जैसी बात है। ये
1: वेल्डिंग कर रहा है बंदा, उसके ऊपर कुछ खास तरह की रॉड यूज करते हैं।
0: वेल्डिंग का तो क्या ना, छींटे उड़ेंगे तो जलता है, बर्न्स होते हैं वो, इट इज लाइक एनी अदर बर्न्स, बट वेल्डिंग का जो बर्न्स है वो डीप बर्न्स रहते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, बाकी उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो एक्सटर्नल जो होती है ना वो क्योर हो जाता है, लेकिन दाग कितना छोड़ेगा वो पता नहीं है।
1: और जब बात हमने होली की है
0: तो आज तो
1: एक सज्जन है जो कह रहे हैं कि आज
0: नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे, फिर तो कटी पतंग वाली आज नहीं छोड़ेंगे।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे

0: तो डॉक्टर साहब ये होली तो इन्होंने मना ली, चलते चलते आप अपनी त्वचा को आप किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं उसके सिंपल नुस्खे एक डॉक्टर जो है खास तौर पे चर्म रोग विशेषज्ञ क्या देगा?
1: आपका सवाल अगर मैं वापस रिफ्रेश करूँ तो आपका कहना है कि एक हेल्दी स्किन के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन है? वो इंटरनल फैक्टर्स है हमारी खुराक, अच्छे से खाइए, नींद, हाइड्रेशन, अच्छे से पानी पीजिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। तो ये सब चीज़ों से अंदरूनी यू नो द स्किन इज़ मोर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। एक्सटर्नली आप पोल्यूशन को अवॉइड करिए। अभी अवॉइड कैसे करेंगे, आप पोल्यूशन वाली जगह पे मत जाइए ज़्यादा, और अगर आप जा रहे बाइक वगैरह जाते हो एक अच्छे से जैकेट या
0: चेहरे पे भी कुछ
1: ऐसा कुछ कवर कर लीजिए ताकि वो पोल्यूशन आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। धूप ऐसी चीज़ है जो फोटो एजिंग बोलते हैं, धूप से थोड़ी सी एजिंग जल्दी होती है धूप की जो इफेक्ट है, बट धूप के प्लस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। तो जितना हो सके उतना धूप से थोड़ा बचिए, छतरी लेके जाइए या कुछ मास्क डाल लीजिए।
0: तो डॉक्टर साहब आप ये जो धूप से बचने की बात कर रहे हैं, अब कोई अगर मजबूरी में नहीं था, छाता नहीं लगा सकता, उसे काम करना है, अभी आज मुझे जाना ही है, अब मुझे निकलना है, छाता नहीं है, तेज धूप है, तो उसका कोई और उपाय है?
1: धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन एक उपाय है, बट सनस्क्रीन के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सनस्क्रीन सही मात्रा में लगाया जाए, सही टाइम तक लगाया जाए, सही टाइम तक रखा जाए। सनस्क्रीन को लगाने का आधा घंटा पहले बाहर निकलने के, हर दो दो घंटे में डालना पड़ता है, 30-50 SPF के जितना रहना चाहिए, और ये करोगे तो ही वो धूप से बचाएगा, नहीं तो ये सिर्फ एक ऊपर की क्रीम लगा के आप संतुष्ट होकर जा रहे हो, बाकी उसकी इफेक्ट कुछ भी नहीं होगी। तो सनस्क्रीन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सही मात्रा में, सही टाइम तक और सही तरीके से यूज़ करेंगे तो वो उपयोगी होगा। और धूप से बचना ही है तो कैप्स है, हैट्स है, अम्ब्रेलाज है, दुपट्टा है।
0: दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे त्वचा की देखभाल कितनी ज़रूरी है और किन किन चीज़ों से ज़रूरी है। ये बात सीधे त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SG मूर्ति से आपने सुनी। और अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना सुन लें, समय तो हमारे पास ज़्यादा है नहीं।
1: ये सुल्तान पिक्चर का जग घूमिया हो जाए।

0: तो दोस्तों, जग को घूमना है तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अपनी त्वचा को भी स्वस्थ रखिए। जैसा कि गाने से पहले डॉक्टर साहब ने सारी चीजें बताई, सारी बातों के साथ अपने आप को नशफिकर रखते हुए मजे से जग घूमिए। और अब फिलहाल डॉक्टर साहब, आज का वक्त तो यहीं पूरा हुआ चाहता है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। हमारे श्रोताओं की बहुत सी भ्रांतियां दूर हुई होंगी, बहुत सी गलतफहमियां दूर हुई होंगी और बहुत सी उपयोगी चीज़ें उन्हें मालूम हुई होंगी। तो विविध भारती के श्रोताओं की तरफ से और विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच। जाते जाते ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, अच्छे से सोइए, खुश रहिए, अच्छे विचार रखिए, आराम से रहिए।
2: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। बातचीत कर रहे थे अमर कांत दुबे और बातचीत का विषय त्वचा के रोग और उपचार। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंधल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, बोझा, चंदरपुर, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बंसीपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, महावीरगंज, कनक पुर, रामपुर, प्रेमनगर, कोटराही, नवापारा, रेवतपुर, कुंदी कला, जामदोहर, अखोरा, बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कंडराजा, बरडांड, दांती ढाब, घटगांव, बोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, पुटुकेला, बनकोम्बो, रानी कोम्बो, डीपा टोली, कुदरा झरिया, साजा पानी, तीता पाकेर, खड़ा माचा, हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू, बोरो और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 94 है। ये आमगांव, पोटिया, चैनपुर, रुपुंगा, बनहर, औरानारा, कुड़ुमकेला, डूंगा भवना, गलीमार, सारस मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये लबेद और गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 38 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, नवागांव, चक्रधरपुर, सामारूमा, छर्रा, टांगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हार पाली, पथरी पाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरी, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये ताराझर, डडईपानी, बोतलधारा, खोलापारा, जिडार, सिहार, छिंदौला, पायलीखंड, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वनमंडल के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या

0: पच्चीस है। ये जारंडी, बोडापाला, बेगरपाला, हरदीबाय, पंडरीपानी, नगरार, ओड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। डीजी पेश है चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए पेश है आशा भोसले के स्वर में ये गीत, उमंग फिल्म का अनजान का लिखा गीत है, शंकर जयकिशन का संगीत।

आशा भोसले के स्वर में ये गीत आपने सुना उमंग फिल्म का। लीजिए अब सुनिए तुम्हारी कसम। इस फिल्म का गीत मुकेश के स्वर में, आनंद बख्शी का लिखा गीत है, राजेश रोशन की धुन।

तुम्हारी कसम फिल्म का ही। तुम्हारी कसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में लीजिए पेश है साहिर का लिखा गीत, खयाम के संगीत निर्देशन में त्रिशूल फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 7 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के

प्राध्यापक डॉक्टर आर के एस तिवारी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधियां, महत्व एवं सावधानियां। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 077-52 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 7 मई 2026 और 8 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कल शाम 5:05 पर आप अमृत धारा सुन सकेंगे। इसमें सुनिएगा भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक और लू से बचें और सुरक्षित रहें। इस विषय पर डॉक्टर योगेश जैन से बातचीत आप सुनेंगे। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। श्रोताओं, चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से।

येसुदास के स्वर में ये गीत आप सुन रहे हैं। कैफी आजमी की शब्द रचना है, बब्बी लहरी की धुन, टूटे खिलौने फिल्म का ये गीत।

द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म का गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी का गीत है, आर डी बर्मन का संगीत।

तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? चंगा सी? और भला आप चंगे होंगे क्यों नहीं? अब मैं जो आ गया हूं आपसे मिलने, आपसे बातचीत, थोड़ी गपशप और आपको अपने पसंदीदा गाने सुनाने के लिए आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मनीष हाजिर है आपकी सेवा में। मुझे पता है आप सभी कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे कार्यक्रम युवा जगत का। उससे भी ज्यादा बेसब्री और उतावलापन मुझे भी होता है आपसे मिलने की कि कब घड़ी पे 5:35 हो और हम सभी मिल सकें। अब देखिए ना, इसी हड़बड़ी में मुझे घर से स्टूडियो तक पहुंचने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। बाइक में पेट्रोल चेक करना पड़ता है, ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार करना पड़ता है और फिर दौड़ते भागते दुनिया को पीछे छोड़ते हुए मेरी और आपकी सुंदर मुलाकात हो पाती है। और आज इसी जल्दबाजी में मैं आज अपना हेलमेट लगाना भी भूल गया। चेहरे पे धूप, आंखों में धूल पड़ी, सुवलग मुझे तो लगता है ट्रैफिक सिग्नल के कैमरे ने भी मेरी फोटो आज खींची ली होगी। खैर देखते हैं क्या होता है, बस चलान ना आए। दोस्तों मैं तो हड़बड़ी में अक्सर गड़बड़ी करता ही हूं, लेकिन अक्सर आप भी बिना हेलमेट के गाड़ी, ओवर स्पीडिंग या दो पहिया वाहन में 3 सवारी चलाना या फिर नशे में गाड़ी चलाते हैं तो हम खुद को और दूसरों को जोखिम में डालते ही हैं और अपनी सुरक्षा की नजरअंदाज कर अपने और दूसरों को के जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो साथियों, सड़क पर चलते हुए भी हमें ट्रैफिक नियमों का अनदेखा नहीं करना है और अपनी सुरक्षा की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाना है। गाड़ियों के पूरे दस्तावेज जिसमें गाड़ी की इंश्योरेंस, PUC भी बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं, इन्हें भी आप सभी अपडेट करते रहिए क्योंकि अनहोनी बता के नहीं आती। वैसे दोस्तों लाइफ में कब क्या हो जाए किसी चीज की गारंटी नहीं है, पर इंटरटेनमेंट की गारंटी युवा जगत में भरपूर है। तो आइए सुनिए ये धमाकेदार साउंडट्रैक आपकी खिदमत में हाजिर है।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है कहीं धुआं धुआं, डरिए मत बाबा कहीं आग।

0: लेकिन आग बरस जरूर रही है और साथ में पानी भी बरस रही है। बादल छाए हुए हैं, कभी भी आंधी और बिजली का कड़कड़ाना अचानक से चालू हो जाता है। बाहर जाता हूं तो गर्मी लगती है और ठंडा पानी पीते ही गले में खराश और जुकाम अलग से। सच में बिलासपुर में कुछ भी हो सकता है, या फिर ये है वैश्विक स्तर अल नीनो का कहर जिसके कारण अचानक जलवायु परिवर्तन विश्व भर में हो रहे हैं। आइए आज के क्रम प्रकृति और पर्यावरण में हम इन्हीं सब बातों पर गौर फरमाते हैं आज के हमारे अतिथि नरेंद्र साहू जी से, जो कि इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी कंसल्टेंट और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। आइए सुनते हैं उनकी विशेष बातचीत।
1: साथियों, हर आदमी की चाह होती है कि वह अपनी जरूरत की तीन चीजों तक पहुंच सके, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े की जरूरत जब पूरी हो जाती है तो वह अपने सपनों का आशियां, अपना घर, अपना मकान, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनवाता है। उसमें बिजली की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, महंगे पत्थर, सुंदर डिजाइन अपना मकान बनाने के लिए चुनता है, ताकि वह अपने परिवार के साथ जिंदगी एक छत के नीचे खुशी खुशी बिता सके। सोचिए, अगर एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा या अनवांछित घटना से आपका यह सपनों का आशियां आपको छोड़ना पड़े, या उसमें कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले जिसे आपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर बनाया हो, और आप रातों रात सड़क पर आ जाए, न सर पे छाव हो न खाने के लिए खाना, ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर हम आ जाए तो हमारी सहानुभूति उस पीड़ित व्यक्ति के साथ होगी। लेकिन यही हम अगर दूसरे जीवों के साथ करते हैं जो पानी के निवासी हों, खुली हवा में उड़ते हों या मिट्टी या घने जंगलों में रहते हों, हम उनके प्राकृतिक निवास स्थल अपने फायदे के लिए तबाह कर देते हैं, तब ऐसे में उन पर क्या बीतती होगी। अपनी फरियाद सुनाने के लिए उनके पास ना तो कोई पुलिस है ना कोर्ट कचहरी। चलिए आज इसी समस्या को और गहराई और विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के क्रम प्रकृति और पर्यावरण में इसी क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनका परिचय जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नरेंद्र साहू है और मैं विगत 5 वर्षों से इस फील्ड में पारिस्थितिक तंत्र और हमारे जो इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, इन सभी चीज़ों पे मेरा कार्य रहा है। इन चीज़ों पे मैं शोध कर रहा हूँ और पूरे इंडिया के, कहा जाए भारत के अलग अलग राज्यों में मैंने बायोडायवर्सिटी असेसमेंट, इकोलॉजी असेसमेंट और इनसे जुड़ी हुई सभी चीज़ों पे मैंने काम किया है और काम कर रहा हूँ। और मेरी पढ़ाई भी इसी सब्जेक्ट में हुई है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में मेरी मास्टर्स और बैचलर दोनों यहीं से हुआ है, गुरु घासदास विश्वविद्यालय से। तो ये 5 वर्ष से इतने सारे काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
1: ठीक है नरेंद्र जी, आइए चलते हैं, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हम अपने क्रम की ओर। तो जैसे कि शुरू में हमने कुछ समस्याओं के बारे में बताया कि किस तरह प्रकृति से जब हम खिलवाड़ करते हैं तो उससे अन्य जो जीव हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बताएं कि ऐसा क्या क्या हो रहा है।
2: जी जी, मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे अभी हमारे आसपास में, चाहे जंगल हो, नदी हो या ग्रासलैंड हो या तालाब हो, उनके नष्ट होने से, वो अगर नदियाँ सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं या तालाब अगर सूख रहा है, कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव, जो प्रभाव कहा जाए, वो जैविक विविधता, बायोडायवर्सिटी पे ही पड़ता है डायरेक्ट। वो बायोडायवर्सिटी में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, डायरेक्ट उन पे पड़ता है।
1: अच्छा, ये जैव विविधता नरेंद्र जी क्या होती है, आप हमें बता सकते हैं?
2: जैव विविधता मैं बताना चाहूंगा, जैव विविधता नाम से स्पष्ट है, जैव का मतलब होता है जीव और विविधता मतलब भिन्नता। तो जीवों में भिन्नता, हमारी पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनमें भिन्नता।
1: अच्छा।
2: आपके खाने के प्लेट से लेकर आसमान में उड़ती हुई चिड़िया सारे भिन्न होते हैं। हमारा जो खाने का प्लेट होता है उसमें हम रोज एक तरह की सब्जी नहीं खाते, रोज एक तरह की तरकारी नहीं खाते, रोज रोज अलग अलग सब्जी खाते हैं हम लोग। उसी प्रकार आप देखेंगे जो पक्षियां होती है, आपको एक तरह की पक्षियां नहीं मिलेंगी, अलग अलग तरह की पक्षियां मिलेंगी। कुछ पक्षियां आपको तालाब में मिलेंगी, कुछ पक्षियां आपको पेड़ों पर बैठी हुई मिलेंगी, कुछ पक्षियां आपको जो है आसमान में उड़ती हुई मिलेंगी। अलग अलग रंगों की, चटक रंगों की सुंदर सुंदर पक्षियां मिलती है। वैसे ही पेड़ों में भी, आप गांव से शहर से लेकर जंगल तक जितने भी पेड़ पौधे हैं, हमेशा आपको अलग अलग तरह की, अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल दिखेंगे, उनमें भी भिन्नता है। तो यही है भिन्नता, जीवों में सभी जगह भिन्नता जो होती है उसे कहते हैं जैविक विविधता।
1: अच्छा, और अगर ये जैव विविधता में अगर कोई संकट आ जाए या फिर इन पर कोई नुकसान पहुंचने लगे तो हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
2: पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो जैव विविधता है उसका हमारे जो मानव जीवन है, मनुष्य पर बड़ा महत्व है, महत्व नहीं कहूंगा, पूरी डिपेंडेंसी हमारी, पूरी निर्भरता है हमारी।
1: अच्छा।
2: जितने मनुष्य हैं उनकी, इसका आपको सीधा एग्जांपल देके अगर

0: देखिए मैं समझाऊं तो आज की दैनिक दिनचर्या में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो है डायबिटीज, शुगर, आपके जो बीपी और बहुत सारी बीमारियां हैं। तो आज के जो भी
1: लाइफ स्टाइल
0: हाँ
1: डिजीजेस है।
0: लाइफ जो लाइफ स्टाइल है आज के, तो आदमी सुबह उठते ही क्या करता है, खाने से पहले टेबलेट खाते हैं। हम लोग की कोई भी इंसान है, उठने के बाद खाने से पहले उनको टेबलेट खाना पड़ता है, शुगर की हो, बीपी की हो या थायराइड की हो। तो वो जो शुगर के और बीपी और थायराइड के जो टेबलेट्स आ रही हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? वो वही प्लांट से आ रही है, वो पौधों से आ रही है, वो जानवरों से आ रही है। अगर उदाहरण देके मैं समझाऊँ आपको कि जो बीपी की दवाई होती है और ऑर्फिया सरपेंटिना, सर्पगंधा से आती है, जो हमारे मधुमेह जो बोलते हैं शुगर डायबिटीज के जो टेबलेट खाते हैं, वो जो टेबलेट आती है वो गुड़मार से आती है। और जो हार्ट ब्लॉक की जगह, जब हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम सभी पूरी दुनिया जूझ रही है अभी इन सब चीजों से, हार्ट का अटैक हो गया, बीपी हो गया, तो हार्ट के अटैक का जो जो मेजर जो कंपोनेंट है, जो एल्कलॉइड्स है, वो भी प्लांट से आता है, वो ग्लोफॉक्स से आता है। तो जीवों में इतनी विविधता है इसीलिए तो आ रही है। अगर सोचिए, अगर इतनी विविधता नहीं होती, एक ही तरह के प्लांट होते, तो इतनी सारी दवाई कहाँ से आती है हमारे पास?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस तरह आपने बताया कि कितने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, और किसी तरह अगर ये कम पड़ जाए तो सही में हमारे लिए ये बहुत ही हानिकारक होगा। नरेंद्र जी, आज के समय में जैव विविधता के सामने सबसे बड़े खतरे क्या-क्या हैं?
0: जैव विविधता के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो है हैबिटेट लॉस।
1: अच्छा, हैबिटेट लॉस।
0: जी, जो भी जैव विविधता है, जो हैबिटेट है, चाहे वो जंगल हो या नदी हो या तालाब हो, उनका नष्ट होना और उनका जो हैबिटेट है उनका लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकरण और शहरीकरण।
1: अच्छा,
0: ये दोनों कारण हैं जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में उनका हैबिटेट नष्ट होते जा रहा है। वो पलायन कर रहे हैं अपने हैबिटेट से लेकर उधर उधर, और इसी इसी क्रम में उनके हैबिटेट नष्ट हो रही है, और इसकी वजह से पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है, नष्ट होते
1: अच्छा,
0: जा रही है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है औद्योगिकरण और शहरीकरण।
1: तो इसे कम करने के लिए हम क्या-क्या कदम उठा सकते हैं?
0: इसे मैं कहूँगा कंजर्वेशन के साथ साथ डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। दोनों, हम एक चीज़ों को भी अवॉइड नहीं कर सकते, चीज़ों में इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। तो इस क्रम में आपके माध्यम से और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हैबिटेट लॉस हो रहा है कहीं पे, अगर हम लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं कहीं पे, अगर शहरीकरण हो रही है, तो उससे पहले जो उसकी पूरी गणना होती है कि कोई अगर एक मान लीजिए अगर 100 हेक्टेयर वहाँ पे जंगल कटने हैं, तो अभी गवर्नमेंट का नियम है उसकी, अगर इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं वहाँ पे, तो 100 हेक्टेयर जो जंगल है काटने के बदले आपको 200 हेक्टेयर जंगल लगाने पड़ेंगे, वो उनकी पॉलिसी है। तो वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉलिसी तो बनी हुई है लेकिन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो रहा है कि नहीं। और जो प्लांट, जो भी फॉरेस्ट हम लोग काट रहे हैं, या जो भी रिवर में हम लोग डैम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो उस पे जो बायोडायवर्सिटी है उसका क्या मेजर इम्पैक्ट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है उससे? यहाँ कोई संकटग्रस्त प्रजाति तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें तो नहीं, इनका बहुत ज़्यादा मूल्यांकन, बारीकी से मूल्यांकन करने के बाद ही अगर ज़रूरत है, लगता है कि उन औद्योगिकरण से या फैक्ट्री खोलने से उन प्राणियों को जैविक विविधता में बहुत ज़्यादा हानि नहीं होगी, इसका बारीकी से मूल्यांकन करने के बाद ही जो है उनको परमिशन दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और जंगल काटने के बाद जो जंगल वो लोग लगा रहे हैं, वो जंगल भी वही जंगल होने चाहिए जो वो लोग काटे हैं, वही होने चाहिए।
1: जी, वाकई बहुत सारी चीजें हैं जैसे अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो आगे जो आप आने वाले खतरे हैं उनसे हम बच सकते हैं। अच्छा, तो आप ये भी बताइए हमें कि ऐसे कोई केस स्टडी है जहाँ पे वाकई में इंसानों को जैव विविधता से छेड़छाड़ करने में उन्हें से किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो?
0: जी, मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी है, बहुत ही एक सबक बोल सकते हैं। चाइना में की एक केस स्टडी है, 1958 1958 की केस स्टडी है। वहाँ पे क्या हुआ था, जो फार्मर्स थे वहाँ पे, फार्मर्स और यहाँ के लोकल गवर्नमेंट थे, उन्होंने क्या किया, गौरैया जो चिड़िया होती है हमारे यहाँ ही पाई जाती है, तो उनको ये लगा कि जो गौरैया चिड़िया है वो उनकी फसलों को नुकसान पहुँचा रही है बहुतायत मात्रा में। उनको ये कॉन्सेप्ट आ गया उनके ध्यान में, तो उन्होंने क्या किया कि ये गौरैया चिड़िया हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा रही है करके जितने वहाँ गौरैया चिड़िया थी उसका मास लेवल पे उन्होंने किलिंग कर दिया, उनके खत्म कर दिया। वहाँ पे लाख से भी ज्यादा गौरैया चिड़िया वहाँ पे उन्होंने मार दिए, ये सोचकर कि हमारे फसलों को नुकसान कर रही है, वो हमारे धान या गेहूं या जो भी मिलेट्स है वो खा रही है, ऐसा करके उन्होंने मार दिया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जैसे उन्होंने गौरैया चिड़िया को वो एरिया में खत्म कर दिया, मार दिया, तो जो कीट पतंगे और टिड्डे जो होते हैं उनकी, ग्रास ऊपर जो बोलते हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो जो चिड़िया थी वो सिर्फ अनाज ही नहीं खाती थी, अनाज से कहीं ज्यादा वो बहुत आयात मात्रा में वो कीट पतंगों, वो उसको टिड्डों को खाती थी जो उनकी फसलों को नुकसान कर सकते हैं। जो गौरैया चिड़िया के मरने से क्या हुआ कि उन कीट पतंगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, एक अनाज का दाना नहीं ले पाया वो फसल से।

0: और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वहां पे अकाल पड़ गया, लाखों लोगों की वहां पे भूख से मृत्यु हो गई। तो ये दुष्परिणाम सोच सकते हैं कितना बड़ा दुष्परिणाम है, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र बनी हुई है, फूड चेन बना हुआ है, खाद्य श्रृंखला बना हुआ है, उससे छेड़छाड़ करने का क्या क्या हमारे पास और क्या हमें दुष्परिणाम देखना पड़ सकता है, वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 1958 में। और वही नहीं, अगर अगर आप रिसेंट में देखें, इंडिया में भी देखें, पूरे वर्ल्ड वाइड में देखें, तो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग हैबिटेट लॉस कर रहे हैं, फैक्ट्री के नाम से हम लोग, फैक्ट्री हो चाहे अर्बनाइजेशन हो, हम लोग जंगल काट रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वहाँ के जो जंगली जीव है वो हमारे शहर की तरफ, गाँव की तरफ भाग रहे हैं, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। हम उनकी आवाज़ को छीन रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, कहीं तो जाएंगे, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। आए दिन आप देखेंगे किसी के ऊपर तेंदुए ने शिकार कर दिया, हाथी ने शिकार कर दिया, भालू ने शिकार कर दिया, तो कारण यही है, उनका हैबिटेट हम लोग लॉस कर रहे हैं, जैव विविधता की हानि हो रही है, और इस सब चीज़ों का सामना हमें करना पड़ रहा है।
1: अच्छा, तो सही कहा आपने नरेंद्र जी कि अगर हम इनके घरों पर कब्जा कर लेते हैं तो वाकई वो तो बेघर हो ही गए हैं, और वो हमारे घर की ओर बढ़ रहे हैं, और हमने तो अपना घर ही उनके घर में बना लिया, तो बेचारे वो कहाँ जाएंगे।
0: अब मनीष जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे ये तो जो बात हुई वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और ये सब चीज़ों की, वो तो देश दुनिया और देश विदेश की बात हो गई। मैं आपको हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की आपको कुछ परिस्थितियां बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारी अरपा नदी है, अरपा नदी में सिर्फ बरसात के टाइम ही पानी होता है, अभी बिल्कुल पानी नहीं होता ना ही। तो रीज़न उसका ये है कि हमने क्या किया, जितने भी प्लांटेशन थे आसपास में सारे पेड़ हम लोगों ने काट दिए, अरपा रिवर के आसपास के प्लांटेशन नहीं है वहाँ पे, रेत हम लोगों ने वहाँ से निकाल लिए, जितने भी कूड़े करचट है वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ है वो हम लोग वहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी यही कारण है कि ना ही वहाँ प्लांटेशन है, ऐसे रिपेरियन ट्री स्पीसीज ही नहीं है, रिपेरियन फ्लोरा वहाँ पे नहीं है जो वाटर को रिस्टोर कर सके। और शहर की बात करें तो इतनी गर्मी बढ़ी हुई है शहर में, आप देखेंगे तो बाहर निकलना मुश्किल है अभी। तो इनका समाधान भी ये है कि अरपा रिवर में हम लोग क्या को क्या करना होगा, दोनों तरफ पर रिवर के दोनों किनारों में प्लांटेशन करनी होगी, वो भी स्पेसिफिक रिपेरियन जो स्पीसीज है उनकी,
1: जी,
0: वो प्लांटेशन करनी होगी ताकि वाटर रिस्टोर करके रखे, स्टोर करके रखे। और जो रेत वहाँ से निकाले जा रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं, उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और शहर की बात करूँ, इतनी गर्म है शहर, तो हमें ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो भी प्लांटेशन, जो भी पौधे रोपण हम लोग कर रहे हैं शहर में, या डिवाइडर में हो, या खाली जगहों पे हो, या पार्क में हो, हम लोग नेटिव स्पीसीज की तरफ जाएं। नेटिव स्पीसीज हमारे जो नेटिव है यहाँ पे, चाहे जामुन हो, नीम हो, आम हो, सीरीस हो, करंज हो, ऐसी स्पीसीज हम लोग आए जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, और ये सारी चीज़ों पर ध्यान दें तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सुधार कर सकते हैं। हम लोग अपने ऐसी पहल चला के अपने तरफ से पूर्ण प्रयास कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने नरेंद्र जी, आशा है कि हमारी इस बातचीत से जो हमारे जो युवा साथी हैं वो सभी प्रेरित होंगे, और वो उस और वे सब इस पर्यावरण को बचाने के लिए और बचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, और हमारे शहर बिलासपुर को और भी हरा भरा, स्वच्छ और रहने के अनुकूल बनाएंगे। तो चलिए, अब हमारा समय हो चुका है, और चलिए अब हम इसी के साथ नरेंद्र जी, अब इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, और जाते जाते हम जाना चाहेंगे हमारे युवा साथियों के लिए आपका संदेश।
0: मेरा संदेश एज अ कंसल्टेंट इकोलॉजी इन बायोडायवर्सिटी, एज अ एनवायरमेंटलिस्ट, मेरा यही रहेगा कि अगर कुछ चेंज लाना है, चाहे प्रकृति में हो चाहे समाज में हो, तो खुद से लानी पड़ेगी। पहले परिवर्तन जो है खुद में करना पड़ेगा, और उसके उपरांत मैं ये कहना चाहूँगा, जितने लोग हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे रोपण करिए, पानी की बचत करिए बिल्कुल, अगर कहीं पानी वेस्ट हो रहा है तो उसकी बचत कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की बचत करनी होगी हमें, और जहाँ भी खाली जगह दिख रहा होगा वहाँ हमें प्लांटेशन करने होंगे, नेटिव पौधे लगाने होंगे हमारे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना हो, कहीं भी हमें जो कूड़ा कचरा होता है वो कहीं भी नहीं फेंकना होगा। मैं अगर चॉकलेट खा रहा हूँ तो उसके नहीं पॉलीथीन नहीं है, मैं कहीं रोड में फेंक दिया नहीं, जो भी अगर मैं पॉलीथीन, जो भी रैपर है, जो भी पॉलीथीन है, वो अपने जेब में रखूंगा। ये सारा संकल्प हमें लेना होगा, हर एक इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति को से ही, से योगदान से ही पूरा समाज और पूरा पर्यावरण संतुलित होगा। तो हमें ये प्रण लेना पड़ेगा कि पानी की हम लोग बर्बादी नहीं करेंगे, बिजली बचाएंगे, और पौधे रोपण करेंगे जहाँ खाली जगह होगा, और कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं करेंगे, साफ रखेंगे पर्यावरण।
1: अच्छा नरेंद्र जी, रेडियो का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आकाशवाणी को अभी 90 साल हो रहे हैं, और अभी 1 मई को आकाशवाणी बिलासपुर केंद्र ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपके जो आकाशवाणी के 90 साल हो गए और 35 वर्ष आपके बिलासपुर के जो संस्था है उसको हो गई है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आकाशवाणी और रेडियो जो हम लोग सुनते हैं अभी, तो पहले के टाइम पे इंटरनेट तो नहीं हुआ करता था, तो लोग पहले इसी पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, एक बहुत अच्छा जरिया था, और वो आज भी चलते आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले भी लोग रेडियो सुनते थे, जब इंटरनेट नहीं होता था तब भी की बात है, सुनते थे लोग, और आज भी इवन मेरे घर में भी मेरे फादर भी सुनते हैं रेडियो। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट आने के बाद कुछ नहीं हो गया या रेडियो सुनना कम

0: कर दी, नहीं, रेडियो आज भी सुना जा रहा है उसी लगन से और उसी इच्छा से सुना जा रहा है अभी तक रेडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पहल चलाई, आप रेडियो के माध्यम से सारा पूर्ण प्रसार प्रचार कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने में, जैव विविधता को बचाने में।
1: हम आज के कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से मेरी तरफ से, और जितने भी हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जितने भी हमारे जैव विविधता के एक्सपर्ट हैं, सारे की तरफ से आपको धन्यवाद।

0: पर इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम प्रकृति और पर्यावरण में इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंसल्टेंट और एनवायरमेंटलिस्ट नरेंद्र साहू की जैव विविधता के संरक्षण विषय पर विशेष बातचीत। तो सुना ना आपने साथियों कि जीवन में सुरक्षा का कितना महत्व है, चाहे वह सड़क पर सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना हो या अपने नेचुरल रिसोर्सेस को समझदारी और जिम्मेदारी से संरक्षित उपयोग और संवेदनशील होना ही क्यों ना हो। यही सुरक्षा और सेफ्टी का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हमारे कोल खदानों में काम करने वाले हमारे भाई बंधु अपने जीवन को मुश्किल में डालकर वो काला हीरा निकालते हैं जिससे हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का उजाला होता है और वे हमारी ऊर्जा की मांग हम उनके कारण पूरे कर पाते हैं। साथियों, यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस के नाम इसे समर्पित किया है, ताकि जागरूकता फैलाई जा सके और इन खतरों को खत्म करने के प्रयास तेजी से किया जा सके। तो साथियों, अब हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। आप सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी और जागरूकता फैला सकते हैं, मानवीय मूल्यों को समझ सकते हैं और एक सुरक्षित दुनिया के निर्माण में अपनी सोच से योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आज का युवा सिर्फ अपने सपनों तक सीमित नहीं है, वे समाज के लिए भी सोचता है और यही सोच दुनिया को बेहतर बनाती है। तो आइए इस दिन पर हम संकल्प लें कि हम जागरूक रहेंगे, दूसरों को जागरूक करेंगे और एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान देंगे जहां हर कदम सुरक्षित हो। क्योंकि असली प्रगति वही है जहां हर इंसान बिना डर के जी सके। तो दोस्तों, इसी के साथ दीजिए अपने साथी मनीष को इजाजत और हम मिलेंगे फिर आपसे अगले क्रम में। और सुनिए इस कार्यक्रम का

युवा जगत, आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आज शाम 6:20 पर और शाम 7 सुनेगा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। सुगम संगीत में रात्रि 8 सुनेगा अनुराधा पौडवाल के गाए चंद गीत। रजनीगंधा हम पेश करेंगे रात्रि 8:15 पर। ग्राम सभा में शाम 7:20 पर आप सुनेंगे बेरा के गोठ ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खेती विषय पर। भेंटवार्ता में सुनेगा खरीफ के लिए मौसम अनुकूल किस्में विषय पर श्रीमती प्रीति अवस्थी बीज प्रबंधक से महबूब भैया की बातचीत। मौसम मंडी और सामिक सुझाव भी आप सुन सकेंगे। श्रोताओं, कल के कार्यक्रमों में कल सुबह 6:05 पर हम आराधना पेश करेंगे। 6:30 पर खेती की बात में सामिक सुझाव का विषय रहेगा केमिकल फर्टिलाइजर का खर्चा कम कैसे करें। वाचन स्वर अभिनव गौरहा का होगा। रामचरित मानस का गायन 6:35 पर आप सुन सकेंगे।

6:45 मिनट पर चिंतन में श्री गोविंद लाल वोरा का आलेख सुनिएगा। कठिन परिस्थितियों में ना घबराएं विषय पर आज सुबह 7:05 पर और सदाबहार नग में हम पेश करेंगे 7:30 पर। आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे 8:30 पर छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां और 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। 10:30 पर नेता राणे हम पेश करेंगे। 11:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

श्रोताओं, कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। शाम 5:05 पर अमृत धारा में सुनेगा, भीषण गर्मी में लू और हीट स्ट्रोक से बचें और सुरक्षित रहें। विषय पर डॉक्टर योगेश जैन से की गई बातचीत आप सुनेंगे। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। शाम 5:35 पर महिला सभा में सुनिएगा क्रम पर्यावरण अभिव्यक्ति। ईमेल करें, गीत सुने पेश करेंगे 6:20 पर और शाम 7 बजे।

ग्राम सभा में शाम 7:20 पर बेरा के गोट का विषय रहेगा, बूंद बूंद पानी हमर जिनगानी। किसानवाड़ी में आज के बाद में सुनिएगा खेत तालाब योजना और जल संरक्षण विषय पर बातचीत। भेंटवार्ता में सुनिएगा स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में। ग्राम बेटुकड़ी विकासखंड मस्तूरी के कृषकों के बीच रिकॉर्ड किया गया कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। संपादन और रिकॉर्डिंग महेंद्र साहू की, संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। रात 8 सुगम संगीत में अनुराग शर्मा के गाए चंद गीत आपके लिए होंगे। रजनीगंधा का समय रहेगा रात्रि 8:15 का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। आज विधानसभा चुनाई बर होवत वोट के गिनती मा पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी मा भाजपा बनाईस बढ़त, केरल मा यूडीएफ ला बढ़त। सुशासन तिहार के चलत मुख्यमंत्री हा आज कबीरधाम जिला के लुखान गांव पहुंचीन, नवा बनत पंचायत भवन के करीन औचक निरीक्षण। और जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय मा 2 दिन चलैया इनोवेशन महाकुंभ हा आज ले हुई शुरू, राज्यपाल रमेन डे कहा करीन शुभारंभ। अब समाचार विस्तार ले। देश के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज विधानसभा चुनाई बर होए वोट के गिनती चलत है। जेकर रुझान के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हा निर्णायक बढ़त बना ले है। तऊ है असम और पुदुचेरी में अपन सहयोगी दल के संग एक घाव फिर वापसी करत है। असम में भारतीय जनता पार्टी हा सरलक तीसर दरी सरकार बनाए बर जाते। तमिलनाडु विधानसभा चुनई में अभिनेता ले राजनेता बने विजय के पार्टी तमिल का वेत्री कड़गम टीवीके के स्थिति बहुत बड़का बदलाव देखे बर मिले है। केरलम में घलो सबो 140 सीट के परिणाम और रुझान आगे है। यहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूडीएफ बढ़त बनाए हुए है। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनई के परिणाम आए के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा आज संझा के नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता मनला संबोधित करैया है। इही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा और एनडीए ला जनादेश मिले में खुशी जताईन है। अपन संदेश में उमन हा एला लोकतंत्र के मजबूती, जनविश्वास और राष्ट्रवाद के भावना ला चिन्हारी बताईन है। सुशासन तिहार के चलत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज कबीरधाम जिला के लुखान गांव पहुंचीन, जिहां उमन हा नवा बनत पंचायत भवन के औचक निरीक्षण करीन और उहां काम करैया माई लोगिन मनले गोट करीन है। माई लोगिन मन हा बताइन के गांव मा पिए के पानी के समस्या हरे, जेकर ऊपर कलेक्टर हा मुख्यमंत्री ला बताइन कि पहाड़ी जगह के 26 गांव बर 1 विशेष पेयजल योजना तैयार करे जाथे, जिला जल्दी शुरू करे जाहे। एकर ले पहले काली मुख्यमंत्री हा बलरामपुर मा होए समीक्षा बैठक मा अधिकारी मनला वर्षा के पहली सबो खराब रद्दा ला ठीक करे के निर्देश दीन है। बैठका मा रद्दा ला बनाए के सही जानकारी नहीं दे पाए मा मुख्यमंत्री हा लोक निर्माण विभाग के एक झीन अधिकारी ऊपर गुस्सा घलो करीन। श्री साय हा जल्दी ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ला शुरू करे के घोषणा घलो करीन है, जिहां टोल फ्री नंबर मा लोगन मन अपन समस्या ला दर्ज करा सकी। जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 2 चलैया इनोवेशन महाकुंभ आज ले शुरू हो गए है। कार्यक्रम के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे कहा करीन। अपन संबोधन में राज्यपाल हा ए कार्यक्रम ला बस्तर में नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के दिशा में 1 मजबूत शुरुआत बताईन है। उमन हा जवान लैका मन ले स्वरोजगार के दिशा में आगू बढ़े के बात करीन। राज्यपाल हा बस्तर के महुआ, इमली, तेंदुपत्ता, रेशम जैसे उत्पाद ला ब्रांड बना के बाजार तक पहुंचाए में जोर दीन है। राज्यपाल हा इनोवेशन एंड स्टार्टअप कंपेडियम पुस्तक के विमोचन घलो करीन और पद्मश्री डॉक्टर बुधरी ताती ला घलो सम्मानित करीन है। ए 2 के इनोवेशन महाकुंभ के शुभारंभ सत्र में आज वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे और पूर्व राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव समेत आने लोगन मन रहीन है। ए कार्यक्रम में बस्तर संभाग समेत कतकोन जगह ले 1000 ले ज्यादा प्रतिभागी मन शामिल हुआ थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज बलरामपुर रामानुजगंज जिला के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करैया लैका मनला सम्मानित करीन। मुख्यमंत्री हा बलरामपुर के सर्किट हाउस में होए एक कार्यक्रम में पढ़ैया लैका मनले गोट घलो करीन। श्री साय हा ओमनला प्रोत्साहित करत हुए कहीन है कि सपना देखना और ओला लक्ष्य में बदल के सरलक कोशिश करना ही असली सफलता हरय। उन्हें प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा में मेरिट सूची में जगह बनाए वाले लैका मनला 10 मई के नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मैच दिखाए जाए। एकर बार स्कूल शिक्षा विभाग हा सबो संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी मनला निर्देश जारी करीन है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हाओ।

0: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। अभी के बेरा मा भू राजनीतिक स्थिति के सेति LPG के आपूर्ति हा प्रभावित हुआ थे। LPG के मांग के दबाव ला कम करे बर माटी तेल और कोयला जैसन वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए जाते। कोयला मंत्रालय हा कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलरीज के निर्देश दीन है और वो मन हा छोटे और मध्यम उपभोक्ता मनला बांटे बर राज्य मनला अतिरिक्त कोयला के आपूर्ति करे। सबो राज्य ला सलाह दे गए है कि वो मन हा घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता मन बर नवा PNG कनेक्शन के सुविधा देवे। फिर ही बीच LPG वाहक पोत MT सर्वशक्ति हा भारत बर करीबन 46,000 मीट्रिक टन तरल पेट्रोलियम गैस के संग हॉर्मुज के खाड़ी ला सुरक्षित पार कर ले है, जेकर 13 मई के विशाखापट्टनम पहुंचे के उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हा देश भर में आज ले अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनावत है, जेकर उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्र में आगी ले होवैया घटना ला रोके और ओखर निवारण के प्रति जागरूकता ला बढ़ाना है। केंद्र सरकार हा लैका मन मा मधुमेह के बीमारी ला रोके बर दिशा निर्देश जारी करीन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हा बताइन है कि लैकापन ले मधुमेह के जांच, निदान और उपचार बर मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराए जाते। ए पहल ले भारत हा अब ओ चुनिंदा देश मा शामिल हो गए है जिहां लैका मन मा मधुमेह के देखभाल ला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मा एकीकृत करे है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसर चरण पर दिशा निर्देश जारी करीन है। एमा गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और व्यवहार संबंधित चिंता समेत आधुनिक स्वास्थ्य चुनौती ला शामिल करे गए हैं। एमा लैकापन ले 18 बच्छर तक के लैका मन के स्वास्थ्य में ध्यान देते हुए जरूरी कदम अपनाए गए हैं। कवर्धा जिला में पाछू रतिहा एक ठिन रद्दा हादसा में 4 जिन जवान लैका मन के मौत हो गए। जानबा के अनुसार ए मनहा रायपुर ले कार में पंडरिया कोती जात रहीन और एक ठिन बिहाव में कार्यक्रम में शामिल होए बर जात रहीन। इही बेरा में पांडा तराई नदी में उखर कार हा अनियंत्रित होके गिर गए, जेकर बाद 4 जिन युवक मन के मौका में ही मौत हो गए, जबकि आने 2 जिन युवक मन हा गंभीर रूप ले घायल हुए है, जौन मन इलाज बर रायपुर के अस्पताल में भर्ती करे गए है। उन्हें जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ के सीमरा गांव में तेजी ले आत एक झीन मोटरसाइकिल में सवार एक झीन मन के हा अनियंत्रित होके रद्दा तीर बने स्वागत द्वार ले टकरा गेस, जेका से तीर उखर मौत हो गए। बस्तर संभाग में माओवादी मन कोती ले सबो जिला में छिपा के रखे गए विस्फोटक समेत आने सामान ला बरामद करे बर सर्चिंग अभियान सरलग चलाए जाते। एकर चलत दंतेवाड़ा जिला के बारसूर थाना क्षेत्र के तोड़मा गांव ले CRPF और जिला पुलिस की टीम हा भारी मात्रा में विस्फोटक और प्रतिबंधित सामान ला जब्त करे है, जेमा 75 ठीक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, SLR राउंड, इंसास राउंड, 12 बोर खाली केस और 303 ठीक बंदूक के खाली कारतूस के अलावा आने हथियार और विस्फोटक सामग्री के संग रोज दिन के जरूरी चीज हा शामिल है। कोंडागांव जिला के डोंगरीगुड़ा के राउतपारा में एक ठिन बिहाव के कार्यक्रम में खाना खाए के बाद 46 जिन लोगन मन के तबियत खराब हो गए। शुरुआती जांच में खाना खाए ले संक्रमण के सेती फूड पॉइजनिंग के आशंका जताए गए है। सूचना मिलते ज स्वास्थ्य विभाग की टीम हा मौका में पहुंची और सबो मरीज मन के इलाज शुरू कर दे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। आज विधानसभा चुनाई बर होवत वोट के गिनती में पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा बनाईस बढ़त, केरलम में UDF ला बढ़त। सुशासन तिहार के चलत मुख्यमंत्री हा आज कबीरधाम जिला के लुखान गांव पहुंचिन, नवा बनत पंचायत भवन के करिन औचक निरीक्षण। और जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 2 दिन चलैया इनोवेशन महाकुंभ हा आज ले हुई शुरू, राज्यपाल रमीन डेका हा करिन शुभारंभ। एक रे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम, ईमेल करें, गीत सुनें।

ईमेल करें गीत सुने के आज के क्रम में आपके साथ है मीनाक्षी, नमस्कार। स्वागत श्रोताओं, आप सभी का आज के इस अंक में और हाजिर हैं आपके ईमेल लेकर

मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता प्रिंस, एकांश गवहाणकर, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राशि, शीतल राजेश, कोठियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू, लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी, इफजल ताजी, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित और हैप्पी राय, नरवन महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर, सोंगा मंगलोर से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हिंश कुमार चंदन, कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले, लोहारी डी कवर्धा के ये श्रोता हैं, अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत, रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कार्य से इंद्रमान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, मजरू कटीला से कमल वालूजा, मधु सागर वालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। आप सभी की फरमाइश पूरी कर रहे हैं श्रोताओं और सुना रहे हैं आपको दिल एक मंदिर उनका गीत, लता मंगेशकर के स्वर में, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत है, शंकर जयकिशन की धुन।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना तिलक मंदिर फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में। और अगले गीत के लिए ईमेल पर मिली हुई फरमाइशें आप सभी श्रोताओं की। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली और सर्वद देशमुख। दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य, मेघा मस्किन। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पंकी लवली, आरती अरोड़ा। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। हिसार से राजकुमार दूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूडी। महसूल सीतामढ़ी बिहार से नुसरत जहां, तलत, फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया शाहीनास और नाजिया नूरीनास। हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े। भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपेंदर, वरिंदर, कुलदीप, सेमू, एकम, दमन, अभिजोत। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। विरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल, पूजा परिहार। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया। रुद्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अक्रम, मोहम्मद अजीज, तीव्रता डबरी।

बारा कोरबा से महंत प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, बुड़गहन से राम दुलारी, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजी नासिर, साजिद

कलाक वर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजी नासिर, साजिद शाहिद, नांदघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, रितु राजपूत, डोंगरगांव से राजपाल राधिका निष्का और तन्मय गजभिये, कुराबरी से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश साहू। मेरी जंग फिल्म का गीत आदनान बख्शी का लिखा हुआ गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर सुनते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के स्वरों में।

बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन अपार ढेंगिया, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना चेतन भगत, सादुर शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली से आसमा परवीन आमना परवीन वली भाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति योजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान सैमा नवाज हसन नवाज अहद मिफरा नाज चाहत, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास अनीता पुष्पा अंजू योगिता रजन साहू हेमंत धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से केआर साहू आकाश कमलेश गन्नूला रजक मूली छत्री, सावतपुर से ऋषि सेन रितेश कंचन और माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबा नास फातिमा नसरीन आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप जाटोलिया, तेलंगाना भंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, देगलू नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश टुकटुक प्रिंस एकांश सुमित ध्वनि गवाणकर, जालंधर से मीना कौर मन्नत नूर, यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा श्राव्या, भाटापाल से बचकामल मोतीलाल यादव सियाराम चोवाराम वर्मा सूरज बारेकर नारायण येदू भुवन कामरी, और अठीपारा भाटापाल से अनीता साहू वीड़ा नेहा मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब अब्दुल हक जियाउल हक मोहम्मद उमर डावरे कटराजेंद्र कटारे, गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल योगेश दीपक और पूजा खटक। किशोर कुमार के स्वर में लीजिए पेश है आनंद बख्शी की शब्द रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत।

लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी साहिल, भारती बघेल, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु, पार्वती हिमांशु, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी, हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डब्बावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, मुल्ढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुर सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजबत्ती टूप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल राजेश, रेशमा साहू, राजस्थान से वेड मिड्ढा, अलका मिड्ढा, बोरसरा नेला से प्रमोद कुमार, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शगुप्ता, अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्ला बख्श, राविया शेख, शेख रहीमुन्ना, तखतपुर से मिश्रिला विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, डोरमी चचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। सुनवा रहे हैं आप सभी को ये गीत बाबू फिल्म का लता मंगेशकर के स्वर में।

0: रुक ना सको।
1: लता मंगेशकर के स्वर में बाबू फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम के ही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। प्रादेशिक समाचारों के लिए जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में।

0: नई रिपोर्टिंग के साथ?
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अकलमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटों पर बढ़त के साथ भाजपा शानदार जीत हासिल करने जा रही है। असम और पुद्दुचेरी में भी भाजपा और एनडीए फिर से सरकार बनाने की ओर। केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में टीवीके बहुमत की ओर अग्रसर। मुख्यमंत्री ने आज सुशासन तिहार के तहत विभिन्न जिलों का किया दौरा। जगदलपुर विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुआ इनोवेशन महाकुंभ, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और कवर्धा जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, 2 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के लिए आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना अभी भी जारी है। हालांकि ताजा रुझानों के अनुसार तस्वीर अब काफी स्पष्ट हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के स्पष्ट संकेत हैं। वहीं केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है, जबकि तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने सबसे अधिक सीटें हासिल कर बहुत बड़ा फेरबदल किया है। पश्चिम बंगाल में 293 सीटों में बहुमत के लिए 147 सीटें जीतना जरूरी है, जबकि अभी तक प्राप्त रुझानों और नतीजों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल में जनता की ताकत की जीत हुई है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि ऐसी सरकार बनाई जाएगी जो पश्चिम बंगाल में समाज के सभी वर्गों को मौका और सम्मान देगी। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में भाजपा तथा एनडीए को जनादेश मिलने पर खुशी जताई है। अपने संदेश में उन्होंने इसे लोकतंत्र की मजबूती, जनविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना का

0: प्रतीक बताया है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कबीरधाम जिले के लोखान गांव पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन पंचायत भवन के कार्यों का औचक निरीक्षण किया और महिला श्रमिकों से बातचीत की। महिलाओं ने गांव में पेयजल की समस्या बताई। इस पर जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के 26 गांवों के लिए एक विशेष पेयजल योजना तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले के ही विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य गांव कमराखोल और खैरागढ़ खदान गंडई जिले के सरौधी गांव का भी दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत की। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बारिश से पहले सभी खराब सड़कों की मरम्मत पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में सड़क मरम्मत की सही जानकारी नहीं दे पाने पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को फटकार भी लगाई। श्री साय ने जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा भी की, जहां टोल फ्री नंबर पर लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। एलपीजी की मांग के दबाव को कम करने के लिए केरोसीन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए गए हैं। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज को निर्देश दिया है कि वे छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति करें। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करें। इस बीच एलपीजी वाहक एमटी सर्वशक्ति भारत के लिए करीब 46,000 मीट्रिक टन तरल पेट्रोलियम गैस के साथ होर्मुज की खाड़ी को सुरक्षित पार कर गया है। इसके 13 मई को विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ आज से शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल रमन डेका ने किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने इस कार्यक्रम को बस्तर में नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत शुरुआत बताया। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें। राज्यपाल ने बस्तर की महुआ, इमली, तेंदुपत्ता, रेशम जैसे उत्पादों को ब्रांड बनाकर बाजार तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने इनोवेशन एंड स्टार्टअप कंपेडियम पुस्तक का विमोचन किया, साथ ही पद्मश्री के लिए चयनित डॉक्टर बुधरी ताती को भी सम्मानित किया। इस 2 दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ के शुभारंभ सत्र में आज वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ मौजूद थे। इस आयोजन में बस्तर संभाग सहित विभिन्न क्षेत्रों से 1,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल रमन डेका ने आज अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान बस्तर में जिले के विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि बस्तर अब शांति और विश्वास का गढ़ बन चुका है। ऐसे में यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में नवाचार आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। बलरामपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित इस समारोह में विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए उनके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली। श्री साय ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सपने देखना और उसे लक्ष्य में बदलकर निरंतर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। वहीं प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को IPL मैच दिखाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक मेरिट में आए विद्यार्थियों को 10 मई को नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला मैच दिखाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देशभर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति

0: जागरूकता बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने बच्चों में मधुमेह बीमारी की रोकथाम और बचाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बच्चों में मधुमेह की देखभाल को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें गैर संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों और व्यवहार संबंधी चिंताओं सहित आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को शामिल किया गया है। इसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक व्यापक और जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। कवर्धा जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये युवक कार में सवार होकर रायपुर से पंडरिया एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पांडातराई नदी में उनकी कार अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल 2 अन्य युवकों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ स्थित सेमरा गांव में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने स्वागत द्वार से टकराने के कारण एक युवक की मौत हो गई। बस्तर संभाग में माओवादियों द्वारा सभी जिलों में छिपाकर रखी गई विस्फोटक सहित अन्य सामग्रियों को बरामद करने के लिए सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र स्थित तोड़मा गांव से सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक और प्रतिबंधित वस्तुएं बरामद की हैं। इनमें 75 नग, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एसएलआर राउंड, इंसांस राउंड, 12 बोर खाली केस और 303 बंदूक के कारतूस के अलावा अन्य हथियार और विस्फोटक सामग्री के साथ दैनिक उपयोग की चीजें शामिल हैं। कोंडागांव जिले के डोंगरीगुड़ा के राउतपारा में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 46 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। प्रारंभिक जांच में भोजन से संक्रमण के कारण फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी मरीजों का उपचार किया गया। वहीं गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग गांव में स्थिति की निगरानी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटों पर बढ़त के साथ भाजपा शानदार जीत हासिल करने जा रही है। असम और पुद्दुचेरी में भी भाजपा और एनडीए फिर से सरकार बनाने की ओर। केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में टीवीके बहुमत की ओर अग्रसर। मुख्यमंत्री ने आज सुशासन तिहार के तहत विभिन्न जिलों का किया दौरा। जगदलपुर विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुआ इनोवेशन महाकुंभ, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और कवर्धा जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, 2 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम।
2: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 7 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर आर के एस तिवारी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधियां, महत्व एवं सावधानियां। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं को समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 7 मई 2026 और 8 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं।

हम कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना आपको देते चलें। कल शाम 5:05 पर अमृत धारा में आप सुन सकेंगे। भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचें और सुरक्षित रहें, विषय पर डॉक्टर योगेश जैन से की गई बातचीत। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे है, लीजिए पेश है ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग।

कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत श्रोताओं। ये श्रोता हैं, इनका ईमेल मिला हमें, सौंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोशर सेन, विनायक सेन, कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा प्रथमेश और पांडु रंग कुम्हार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश निवान, सौरव सैना, मैंडी शर्मा, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरो, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया, आयान, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप जगमोहन, प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार, जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर, गंडई पंडेरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली पूर्वेश साहू, इंदौर से नारायण, ललिता, गणेश, कार्तिक परी, खर्चे स्वाति, प्रयाग चौधरी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन, भाजीका पंजाब से भूषण खेरा, विशु खेरा, विशाल, नडी शालानी, दिवानसी पवानी, आरवी खेरा, पांडर कौड़ा से अनिल उषा, अनुश्री धनश्री, खोंदरा उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घूर्णी करिश्मा, सोमारसा कलेश्वर, सुखराम हीरावनी, ऐश्वर्या पैकरा, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहराज जहां, अड़ार नांदघाट से पाखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडिल नवाबार से मुकेश, श्रद्धा, अदिति, राधे जाधव, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश, स्वाति और ख्याति, सरगुजा मैनपाट से अजीता पाल, प्रभा रानी, प्रियांशी शर्मा, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम रईन, अब्दुल सलाम रईन, पिपल और सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, पहंदा पालारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशांत लखनलाल, सावित्रीबाई देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बड़ौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। आप सभी की फरमाइश पूरी करें श्रोताओं। सुनवा रहे हैं आपको दोस्ताना फिल्म का गीत, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेला का संगीत बद किया, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी के स्वरों में।

अगले गीत की फरमाइश आप सभी की दतरंगी भाटा पारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्रमणि नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे संदीप अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा, देवरी भाटा पारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री, नवाशहर पंजाब से गगनदीप तृप्ता प्रियंका प्रशांत प्रियम वामिका वाणी थांडी, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक, राजकोट से जुली जगदीश प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना मानो इलिया नायाब लड्डू, हाजी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू डब्बू, जगराव से सुनील पाठक कमल दीपिका मल्होत्रा गव्या सुचा सिंह पाठक, धोर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू देव नवीन युवराज साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, बठेना पाटनतूर से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति निधि निखिल यश प्रयाण शिवम रेखा धनेश्वरी, रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित खुशी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर प्रमिला आसमा, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर कचरीबाई दीपक जय श्री ऋषभ ऋचा देवांगन, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आप सभी की फरमाइश पर भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू, उमा राज, दिव्या, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर जाटव, देवशंकर, भूतकछार लुरमी से दुर्गेश, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, बुंदेलखंड से उदय भान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव, आरव और अर्पिता, पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव, पौड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम निखिल, वसुंधरा प्रांजल चंदन, जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत, कमल साहनी, दोलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, दोलापुर उत्तर प्रदेश से ही मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, पाकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल,

शब्द सिंह राहुल, 14 से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जिशान अहमद, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी, जनकपुर से पिंटू तिवारी, राजेंद्र सिंह ओबेराय, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम राकेश कुमार, नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रूपेश महेश, प्रज्ञेश प्रीतेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी अमरदीप, पशुपति टीकू मुस्कान, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती विनीता, रुद्र वर्मा, कतियापार जुना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष रवि सनी, रियांश कान्हा, आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना देश कुमार, वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव खुराना, इसके पप्पी, सहारनपुर से आशु, कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी, दनिश गुनौरी, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा विविधा वंडलकर, रंगोली फिल्म का गीत सुनवा रहे श्रोताओं आप सभी को लता मंगेशकर के स्वर में, शैलेंद्र की शब्द रचना, शंकर जयकिशन की धुन।

रंगोली फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना। इस गीत के साथ ही ये मेल करें गीत सुने कार्यक्रम के ही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। आइए चलते हैं ग्राम सभा में।

ग्राम सभा सुनैया जम्मो संगवारी भाई बहनी मल्ला फुलवा बहनी के माया भरे राम राम जय जोहार। औ का हाल चाल है संगी हुआ बने बने हमर किसान भाई बहनी मन देखा बारह महीना आप मन हा बूता काम करते रही था। फिर गर्मी में धान लुआई के पाछू चना ओन्हारी मटर बटुरा गहूँ के लुआई और मिंजाई के बूता घलो कर डरे हा। तभी हमर किसान भाई मन बूता तो दिन रात करत है और ए समय गर्मी पड़त है तो थोड़किन कम हुए है बूता है। तब वो ही फिफियाच रहत है दिन रहते तेती तेती करत रहत है और ये बाढ़त तापमान और झुलसा गर्मी हर ए समय में अतका बाढ़ जाते कि थोड़को ध्यान नहीं दे तो साग भाजी मन कोला मन में जिन बो ही खेत मन में ओहू जरे लगते। ए बेरा में सिंचाई के चेत करे पड़ते सुखा झन पड़े भुइया हाँ और बेरा बेरा में सिंचाई करत रह। गर्मी के बेरा में पशुधन के घर चेत करे पड़ते बेरा बेरा में पानी देवे चारा के संगे संग सुखा चारा देवा था पेज पानी तो हरियर चारा घलो खवावा। हरियर चारा खवाए में संगे हुआ पशु मन के देह में नमी बने रथे और प्रोटीन के मात्रा हो मल्ला विटामिन के मात्रा मिलत रथे। तो हरियर चारा बहुत अकन होते अजोला है नेपियर है मक्का जोंधरी है मूंग है उरद है संगी हुआ। तो मूंग उरद के बात करबो तो दोनों बर उपयोगी है संगी हुआ है मनखे मन भर घलो और पशु मन भर घलो। अब का उपयोगी है एला हमन बताबो ये संदेशा के पाछू।

संगीहवा थोड़कन संदेशा ला पीछू सुनबो। मूंग उरद ह संगीहवा, मूंग के तो आप मन जानते हो हा कतका बढ़िया। मूंग ल मरीज तक मन बर फायदा करते, डॉक्टर मन ह बीमार परे रथन तो ऐसे नहीं कि थे कि दाल के पानी पिया, तो ये नहीं कहा कि राहर दाल के पानी पिया के और कुछ उधार के मूंग दाल के पानी पिया कथे डॉक्टर मन, तो ये बनेच फायदा करते, गादिल नहीं करे। और ये समय कहिया तो थोड़ कन दिन में मूंग के अभी तो खेत है खाली छेके देवा ऐसने सोझे परे है, तो वे ज्यादा दिन के खेती नहीं हो संगी हुआ, 60 ले 65 दिन के यानी 2 ले 2.5 महीना में ये फसल है तैयार हो जाते। मूंग उरद के फसल है हमारे किसान भाई बहनी मन पर अगर बोआ थे तो अति आमदनी देते। कहे के मतलब है ए बेरा मा चना सरसों गेहूं जम्मो फसल के लुआई कटाई करके हमारे किसान भाई बहनी मन बढ़िया फुर्सत ले बैठे है, तब भाई काहे नहीं आप मन दो पैसा अति आमदनी करे बर ए फसल के बुआई करा है ना। तो यही पाए के हम आज गोट बात करबो के मूंग उरद के खेती करे बर बढ़िया खेत ला खेती करे बर तैयार करा, डोरसा माटी मा बढ़िया होते एखर खेती है, बढ़िया खेत ला जोत लेवा और अल्टी पल्टी करके कल्टीवेटर के सहायता ले और ओमा बढ़िया बीजा के मात्रा 20 ले 25 किलोग्राम उचित रही थे एक हेक्टेयर पाछू। संगी हुआ हमन घेरी बेरी कही थन एक बात ला के जब बोते छवा तब बढ़िया उम्दा बीजा के उन्नत बीजा के चुनाव कराए और बीजा के चुनाव करे के संगे संग बढ़िया उपचारित बीजा ला लेना चाहिए लगाना चाहिए। भुइया के तैयार में भुइया ला बढ़िया ढंग ले जोताई करके गोबर के खातू खचीदार है बढ़िया और उपचारित बीजा ले बुआई करा।

बुआई के पहली थोड़कीन हल्का सिंचाई करना चाहिए ताकि नमी बने रहे और सिंचाई करे बर मूंग उरद के फसल में 3 ले 4 पैत सिंचाई खचित रूप ले कराए। मूंग उरद के फसल हर संगी हुआ भुइया के माटी के उपजाऊ क्षमता ल बढ़ाते माने के उर्वरक ल बढ़ाते उर्वरक शक्ति ल और बढ़िया मुनाफा देते। बुआई के बात करबो संगी हुआ तो स्ट्रिप ड्रिल ले कतार के बुआई कराए। कतार ले कतार के बीच में 25 ले 30 सेंटीमीटर रहे और पौधा ले पौधा के दूरी 4 ले 5 सेंटीमीटर रखे। मूंग और उरद के उन्नत किस्म घलव है संगी हुआ। मूंग के किस्म है M23, MH215, पंत मूंग 4, पूसा विशाल है 5, ML8321। ई मन हा अच्छा किस्म है। वैसन है उरद के किस्म है पंत उरद 31, KU96 और शेखर 123। ए मन हा बढ़िया किस्म है। ए मन ला लगा है ता बढ़िया आप मन के उत्पादन हो है। रोग व्याधि ले बचाए खातिर संगी हुआ माटी जनित रोग है ओखर ले बांचे खातिर थायरम के 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम है जेन ओखर 1 ग्राम ला प्रति किलो बीज के दर मा मिला के ओखर बाद राइजोबियम कल्चर ले उपचारित करा अपन। खातु माटी के बात करबो तो रासायनिक खातु के बात तो नाइट्रोजन है 15 ले 20 किलोग्राम और फास्फोरस ला 30 ले 40 किलोग्राम हेक्टेयर पाछू डारे मा बढ़िया रथे। गर्मी के मारे संगी हुआ 10 ले 12 दिन के अंतर मा सिंचाई खचित करते रहा। अब फूल आए के अब फली बनत के समय मा पानी डालते रहा ताकि खेत मा नमी बने रहे। खर पतवार के निदाई करत रहा। पेंडा मिथालिन के दवा के छिड़काव करत रहा। कीट रोग अगर पनप जाए देख लेवा जैसे पीला मोजेक है और थ्रिप्स है एक हर बार इमिडा क्लोरोप्रीड चाहे डायमोथेट के उपयोग करें। कटाई बार 60 ले 70 दिन में देख लेवा आप मन लुए बार के फसल है तैयार हो गए कि नहीं। जब 8% फली है भुरवा पड़ जाते थोड़कीन करिया दिखे लगते तब आप मन है लुआई कर सकत है। गर्मी में ये फसल ला बोए बार आप मन लगा हा तो विकट आमदनी पाहा। 1 हेक्टेयर में 20,000 ले 28,000 तक आपन हा मुनाफा पा सका था। अब ये फसल मन ला बोए मसंगी हुआ खेत के उर्वरा शक्ति है बढ़िया बाढ़ते और खेत के बनावट में सुधार घलक होते। तो आप मन मूंग उरद के खेती खचित रूप ले करा कम दिन में तैयार हो जाते संगी हुआ। अब आवाज सुनन संदेश ला।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: संगी हुआ एक ठोक सूचना है, हर बृहस्पति और शुक्रवार के फोन इन कार्यक्रम हमारे स्टूडियो में प्रसारित होते। यही क्रम में स्टूडियो में उपस्थित रही बिलासपुर के प्राध्यापक महाविद्यालय के इनमन डॉक्टर आर के एस तिवारी। इखर लंग 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछे बर हो है, धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन और बिहनिया 11 से 11:30 बजे तक सवाल रही आप मन के पूछे बर। विषय है खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधिया महत्व एवं सावधानियां, ए विषय ले संबंधित समस्या है जिज्ञासा है उखर समाधान पाए खातिर फोन नंबर आप मन जाना था, फिर एक पैताव नोट कर लेवा 2-6-6-5-9-2। अब फोन लगाए के पहले स्टडी कोड है 0777।

फोन खचित लगा हा। अब ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 7 मई 2026 और 8 मई के संझा 7 बजे ले 8 बजे तक आप मन सुन सकत था। सूचना सिर आगे संगी हुआ और अब संगी हुआ आवाज सुनबो बढ़िया गीत जी हाँ मिल ही मया दुलार। ये गीत लस्वर दे है अमचिरी बाई जगदीश मन।

0: बारीमा घलौ अकरस जोताई करत हे कोहों के माटी जात चलत हे तो कोहों के खेत मन में गोबर खातू के बगराई चलत हे। और छत्तीसगढ़ हमार धान के फसल बर बहुते प्रमुख माने जाते संगवारी हुआ। जुन्ना समय में आनी बानी के महक वाले सुगंध वाले धान खेत मन में बोआए और भीतरी में रांधाए तो बाहिर गली तक महर महर कहर कहर करे लागे। महमहई धान में बहुत बढ़िया जैसे दुबराज मन में बासमती मन मोंगरा फूल में कतका सुगंध रहे। अब ओतका नहीं है, तब हो आधुनिक युग आ गए है तो अभी घलौ कई ठन में बढ़िया है। किसान भाई बन महमही धान आनी बानी के सुगंध वाले बोआ थे जवा फूल वाले और आनी बानी के एमा यही क्रमला आ सुनवा बो हमन भेंटवार्ता में। तो खरीफ के लिए मौसम अनुकूल किस्में और इला जानकारी देवत हैं श्रीमती प्रीति अवस्थी बीज प्रबंधक बीज निगम सेंद्री बिलासपुर के। इखर लंग बढ़िया गोट बात करत है हमार महंगू भैया आवा सुने भेंटवार्ता ला।
1: खरीफ मौसम बर अनुकूल किस्म ए विषय में जानकारी देने खातिर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हुए श्रीमती प्रीति अवस्थी बीज प्रबंधक बीज निगम सेंद्री बिलासपुर। आवाओ इनकर सो ये विषय में कुछ गोट बात कर ले जाए। सबले पहले तो स्वागत कर लेते हैं श्रीमती प्रीति अवस्थी जी, आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हुए। आप मन राम राम।
2: राम राम मंगू भैया, धन्यवाद।
1: सबले पहले जानना ये चाहत हन की ये जो खरीफ मौसम भरे ये अनुकूल किस्म के अगर बात करथन तो कौन कौन से ऐसे किस्म है जिन्हा ज्यादा करके हमारे किसान भाई मन लगाते हैं खरीफ में प्रमुख रूप ले।
2: हमर क्षेत्र में प्रमुख रूप से किसान भाई मन यहाँ धान के फसल प्रमुखता यहाँ लिए जाते। आप ला जैसे पता भी हो भैया एक बार छत्तीसगढ़ धान के कटोरा भी कहा जाते। काबर धान के खेती सबसे ज्यादा प्राचुर मात्रा में किया जाते, परंतु धान के साथ साथ आउ लघु धान्य जैसे कोदो रागी अरहर मूंगफली ये सब के भी खरीफ मौसम में यहाँ धान के फसल के अलावा भी ये फसल भली लिया जाते।
1: अच्छा, धान के फसल में सुगंधित धान के किस्म ला बतावा, कौन कौन से सुगंधित धान के किस्म ला लगाया जाए किसान भाई मन।
2: जैसे धान के सुगंधित धान के किस्म किसान मन भाई मन बर आप जिसे पूछा था तो माँ हो गए आपके छत्तीसगढ़ जवा फूल हो गए। छत्तीसगढ़ जवा फूल के साथ साथ छत्तीसगढ़ म्यूटेंट विष्णु भोग हो गए, छत्तीसगढ़ ट्राम्बे दुबराज हो गए। ये सब धान के जो नई किस्म है उन्नत, जो पुराना सुगंधित धान हमार रही से तेमा उन्नत उन्नयन करके नया विकसित करे है जेमा के जो सुगंधित फसल के ना किस्म के नाम बताता हूँ वो मन का है हवा पानी जैसे आते थे एक ऊंचाई या कम है पहली के जो रही से तो मां कुछ विकसित करके नया उन्नयन नाम वही है लेकिन मां कुछ नया म्यूटेंट करके वैरायटी डेवलप करी है। अच्छा। ता मां ये चीज के समस्या थोड़ा कम आते और यही सब है छत्तीसगढ़ जवा फूल छत्तीसगढ़ ट्राम्बे विष्णु भोग छत्तीसगढ़ ट्राम्बे दुबराज म्यूटेंट ये सुगंधित किस्म हवे।
1: अच्छा,
2: सुगंधित किस्म के धान के किस्म है छत्तीसगढ़ जवा फूल ट्राम्बे ट्राम्बे छत्तीसगढ़ विष्णु भोग म्यूटेंट जवा फूल देव भोग हो गए ये सब हमार सुगंधित धान के किस्म है। अच्छा। जिन अभी अंदर 10 वर्ष के अभी जो किस्म प्रचलित है तेमा के विकसित किस्म है 10 वर्ष के अंदर के अभी एक विकसित।
1: अभी जैसे छत्तीसगढ़ जवा फूल बारे में बताया आप, छत्तीसगढ़ जवा फूल ट्राम्बे ये है कतेक अवधि के कतेक दिन के अवधि के फसल है कतेक उत्पादन हमारे किसान भाई में ले सका थे का?
2: ए आपके छत्तीसगढ़ जवा फूल ट्राम्बे जो है वो लगभग 135-140 दिन के अवधि के किस्म है जेमा लगभग 40-42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले सकथन। ये अर्ध बौना सुगंधित किस्म है पतला एकर दाना रथे।
1: अच्छा, ये ट्राम्बे छत्तीसगढ़ विष्णु भोग के घला नाव ले है आप मन।
2: हाँ हाँ।
1: ये कतेक दिन के अवधि के फसल होते है और इमा कतेक उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते।
2: ये जो सुगंधित किस्म है म्यूटेंट विष्णु भोग वो 120-125 दिन के अवधि के जे कर ले आप 40-45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले कर सकता। ये बौना किस्म के है।
1: अच्छा।
2: और पतला रही है कर दाना यही सुगंधित धान पर उपयुक्त किस्म है।
1: एक किस्म और बताया है अपन बादशाह भोग सिलेक्शन वन यह कतेक दिन के अवधि वाला फसल है और कतेक उत्पादन हमारे

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये संदेश की पहली गीत सुनत रहे जे लगा रहे नम चिरी बाई और जगदीश जी मन। अब देखा संगी हुआ रबी फसल उन्हारी सियारी मन लु आ गए हैं, है ना, जम्मो सरसों चना गहूँ मन। अब अपन अपन क्षेत्र में किसान भाई मन धान बोए रहे हैं गर्मी के, ओहो मन कहूँ कहूँ देखा थन पाके लगीस। हमार किसान भाई बहनी मन फिर खेत के तैयारी में यानी खरी फसल के

0: किसान भाई मन ले सका था भाई अगर सुगंधित धात के अगर बात करता था।
1: आपके बादशाह भोग सिलेक्शन वन जो है कम से कम 140-145 दिन,
0: अच्छा
1: ए ओ धान वाले थोड़ कर लंबा अवधि के, और 35-40 क्विंटल प्रति हेक्टर एक और भी औसतन उत्पादन हम ले सकते हैं।
0: अच्छा,
1: वह सुगंधित किस्म है और ये बादशाह भोग सिलेक्शन वन तो कृषक भाई मन एक किस्म ले अवगत भी है।
0: हाँ, अब वो एक ठक बताया रहा अगर सुगंधित धान लगाना है तो छत्तीसगढ़ देवभोग घला किस्म के नाव ले रहा, यह कतेक अवधि के कतेक दिन में तैयार हो जाते फसल है और कतेक उत्पादन हमारे किसान भाई मन ले सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ देवभोग ए कृषक भाई मन तो यहाँ लेत भी है और 135-140 दिन अवधि के छत्तीसगढ़ देवभोग किस्म है।
0: हाँ,
1: जे 40-45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम एकड़ से भी उत्पादन लेकर सकते, यही सुगंधित है और मध्यम पतला दाकर धाना रथे।
0: अच्छा, सूखा प्रभावित क्षेत्र पर कौन कौन से किस्म लगाना उचित हो हमारे किसान भाई मल्ला?
1: सूखा प्रभावित क्षेत्र में जिसे जहाँ पानी के समस्या है वहाँ किसान भाई मन इंदिरा बरानी धान है ओला लगा सकते है, DRR धान 50 ये जो है हमारे सूखा प्रभावित क्षेत्र में एला हम ले सकते हैं जहाँ पानी की समस्या है।
0: ये जो बताया है इंदिरा बरानी धान एक के कतेक दिन के यह फसल है और कतेक उत्पादन एकड़ पाछू हेक्टर पाछू हमारे किसान भाई मन ले सकते?
1: इंदिरा बरानी धान के जो अवधि है तेन 110-115 दिन इंदिरा दवानी धान के अवधि जेमा कम से कम औसतत हमला 40-45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमला एकर उपज ले सकत हन। ये मध्यम पतला दाना रथे और निचली भूमि पर भी उपयुक्त रथे,
0: अच्छा।
1: सूखा के प्रति सहनशील भी रथे, तना छेदक के प्रति भी सहनशील रथे। एक किस्म
0: DRR धान जो है 42 एला बता कतेक दिन की यह फसल है अवधि के और विशेष एमा का है और कतेक उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते?
1: DRR धान 42 जिन है हमारे 115-120 लगभग 115-120 दिन की किस्म है धान के, जेमे लगभग औसतन उपज हमारे 40-45 क्विंटल हम प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। ये बौना किस्म के रथे,
0: अच्छा,
1: और हमारे जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है ओकर बर उपयुक्त किस्म है।
0: ये तो सूखा प्रभावित क्षेत्र भर बताया आप मन, जल निकासी के समस्या वाला क्षेत्र मगर देखे जाए तो ऐसन में किसान भाई मन कौन कौन से फसल धान के ले सकत हमें किस्म कौन से उपयुक्त रही?
1: जिसे जलमग्न क्षेत्र जहाँ जल निकासी की समस्या ही ओ क्षेत्र में हम DRR धान 50 जलदूबी किस्म होगी, स्वर्णा सवन का बस स्वर्णा सवन तो बहुत प्रचलित भी है, इस स्वर्णा वैरायटी आप सुने भी हो अब महकू भैया, वही से विकसित किए गए ला वही ओकर पैतृक किस्म है वही से विकसित किए गए, अब आज किसानों भार मैन के बीच में बहुत प्रचलित भी है पसंद भी किया जाते है ला। एहू में पानी में डूबे मतलब पानी के निकासी की समस्या जहाँ है जहाँ पानी जल भराव क्षेत्र है वहाँ ये किस्म लिए जा सकते है।
0: अच्छा, जल दुबी जैसे नावेच हवा है?
1: हाँ, नावेच तो, चेवकर, एकरे बार नावेच चेवकर।
0: हाँ, कतेक दिन में ये फसल तैयार हो जाता है अवधि कतेक दिन के है और एकर उत्पादन हमारे किसान भाई मन एकड़ पाछू कतेक ले सकत हवा?
1: ये जल दुबी किस्म जो है वो एक लगभग 135-140 दिन अवधि के और जिसे एकर उत्पादन जो है 40-45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और एकड़ कहिया था 16-18 क्विंटल प्रति एकड़ एकड़ से हमन ले सकत है उत्पादन।
0: स्वर्णा सब वन के गल बात भी करे अपन तो जल निकासी की समस्या है ऐसन किसान भाई मन एक किस्म लगा सकत हमें, एकर फसल के अवधि कतेक दिन में तैयार हो जाते और एकड़ पाछू हेक्टर पाछू कतेक उत्पादन हमारे किसान भाई मन ले सकते हैं लगा के?
1: स्वर्णा सब वन स्वर्णा किस्म के ही समान सब रथे, एक दाना थोड़ा स्वर्णा लाल हूँ रथे ये सफेद रथे,
0: अच्छा,
1: ये थोड़ा का लंबा अवधि के 140-150 दिन के है,
0: अच्छा।
1: एकर उत्पादन आपके स्वर्णा सरी के ही आते, एकर ले भी आप 45-50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज ले सकते हैं।
0: अच्छा, DRR धान 50 गला ये किस्म के नाव ले रहा अपन?
1: हाँ हाँ,
0: तो ये कतेक दिन की अवधि की कतेक दिन में तैयार हो जाते हैं और उत्पादन कतेक किसान भाई मन ले सकते?
1: DRR धान भी तुम्हारे जल निकासी वाले क्षेत्र पर उपयुक्त है,
0: अच्छा,
1: वो हमारे 140-150 दिन के लगभग रथे जेकर ले भी किसान अपन मतलब 45

0: 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकर ले उपज ले सकत है।
1: अच्छा अच्छा, भूइया के आधार में घला हमारे किसान भाई मन खेती ले करते हैं, है ना? तो इमें उच्चहन, मध्यम और निचले इस तरह के जो भूइया है एकरो आधार में अगर बता देता अपन किस्म ला तो अच्छा होती। उच्चहन भूइया है अगर किसान भाई मन के तो कौन कौन से किस्म हम उपयुक्त हो ही किसान भाई मन लगाए बर?
0: उच्चहन जेला हमन उच्च भूमि या प्लेन ले कई थन तेन क्षेत्र बर उच्चहन भूमि बर छत्तीसगढ़ जिंक राइस वन, बस्तर धान वन, छत्तीसगढ़ बरानी धान, पूर्णिमा, इंदिरा एरोबिक, छत्तीसगढ़ ट्राम्बे दुबराज म्यूटेन जिन बताए हन, ये सब वैरायटी आप ये सब किस्म आपके उच्चहन भूमि पर उपयुक्त है।
1: अच्छा, जैसे छत्तीसगढ़ जिंक राइस एक के बात करें हैं आप, तो यह कतेक दिन अवधि की हवा फसल तैयार हो जाते है और उत्पादन कतेक मिल सकत है एकड़ पाछू हेक्टर पाछू किसान भाई मन?
0: छत्तीसगढ़ जिंक राइस एक जो हमारे किस्म है लगभग 105-115 दिन के अवधि के हावे, जेकर हमन 16 से लगभग 18 क्विंटल प्रति एकड़ हमन ले सकत हन एकल ले। अच्छा। अब हेक्टेयर पाछू जहा तो 40-45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले सकत हन। अब यह जो पर्ण झुलसा रोग रथे जेन और पर्ण सड़न ओकर लिए सहनशील है।
1: अच्छा,
0: किस्म
1: अच्छा, अच्छा, बढ़िया है, मतलब लगाया जा सकत हवे।
0: हाँ,
1: उच्चन भुइया पर छत्तीसगढ़ बरानी धान दू के घला बताया है किस्म लगा सकते किसान भाई मन, ये कतेक दिन के अवधि में तैयार हो जाते और उत्पादन कतेक किसान भाई मन ले सकत हम एकर?
0: जिसे कि एक चर्चा में अभी पहले भी करे रहे जिन सूखा प्रभावित क्षेत्र देकर बर एक किस्म ये उच्चन भूमि पर भी उपयुक्त है। ये सूखा प्रतिरोधी तो हवे ही साथ भूरा जो धब्बा रहते ब्राउन स्पॉट कथे तेकर बर भी यह प्रतिरोधी है। ये किस्म 2021 में विकसित हो है। ये हुआ 110-115 दिन के एकल ले भी आप 45-48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकल ले भी आप उत्पादन औसतन लिया जा सकत है।
1: अच्छा अच्छा, पूर्णिमा धान के नाम ले रहा किस्म के यह कतेक अवधि के कतेक दिन में तैयार हो जाते उत्पादन कतेक हमारे किसान मन ले सकत है?
0: कृषक भाई मन पूर्णिमा धान के जो अवधि है वो आपके 100-105 ए हरहुन किस्म के धान
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा, हाँ।
0: और उच्चहन भूमि पर भी उपयुक्त है। ये आपके 30-35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकल से हम ले सकत हन। सूखा सहनशील भी रहते धान।
1: ये तो आप उच्चहन भूइया में लगाए जाने वाले किस्म के बात बताए हा। मध्यम अगर भूइया है कोनो के हमारे किसान भाई मन के तो मन कौन कौन किस्म लगा सकत हमें?
0: मध्यम जेकर भूइया है तेकर बर किसान भाई मन राजेश्वरी, IR64, महामाया, MTU 1010, MTU 1001 ये सब किस्म हमन मध्यम भूमि मन ले सकत हन।
1: अच्छा, राजेश्वरी धान के तैयार होए बर कतेक दिन लगत हो ही कतेक दिन की अवधि में तैयार हो जाते पाक के और एकर उत्पादन क्षमता कतेक हवे एकड़ पाछू हेक्टर पाछू?
0: ये आपके अर्ध बौना किस्म के ये है लगभग 120-125 दिन के अवधि के फसल है जो पक के अतका दिन में तैयार हो जाते। एकड़ पाछू का हमला 18-20 क्विंटल लगभग प्रति एकड़ हमल लेकर बर उपज ले सकत हन।
1: अच्छा,
0: ये पोहा जो मुर्रा हमन की था नहीं
1: तेकर
0: बर बहुत अच्छा उपयुक्त किस्म है।
1: IR64 के घला नाव ले है अपन अगर मध्यम भूइया है तो हमारे किसान भाई लगा सकत हवे कतेक दिन में है तैयार हो जात हो ही या उत्पादन क्षमता कतेक हवे?
0: ये लगभग 115-120 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाते और एकड़ पाछू एकर उत्पादन 16-18 क्विंटल प्रति एकड़ हमन ले सका धान कर ले।
1: अच्छा, महामाया धान लगाए के बात करे है मन तो ये किस्म कतेक दिन में तैयार हो जाते है अगर हमारे किसान भाई में लगावे तो उत्पादन कतेक दे ही है?
0: महामाया किस्म तो कृषक संगवारी मन के बीच में ऑलरेडी प्रचलित हा ही अति लेते ही ओह कम से कम 120-125 दिन मोटा दाना रथे ओह पोहा बर बहुत उपयुक्त रथे। जिसे कि अब 120-125 दिन में तैयार हो जाते पक के 40-45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकर ले भी उपज किसान भाई मन ले सकत है।
1: MTU 1010 के किस्म कैसन है किसान भाई मन लगावे तो कतेक दिन में ये तैयार हो जाते और उत्पादन कतेक देते इहुल बता देता अपन?
0: MTU 1010 ए हरहुन किस्म के धानी यह 112-115 लगभग

0: सौ बारह 15 दिन में आहू तैयार हो जाती पक के, 15-16 क्विंटल प्रति एकड़ हमन एक से भी ले सकत हन।
1: अच्छा
0: साथ ही साथ जो नई 10 वर्ष के अंदर की किस्म है ना, MT 1156 भी, जेला तरंगनी के नाम से हमन जानते हैं, आंध्रा से
1: अच्छा
0: विकसित हुए किस्म है, एहू
1: अच्छा
0: 10-10 जैसे है, लेकिन ये 10 वर्ष के अंदर के अवधि के, मतलब अभी
1: अच्छा
0: अभी अभी विकसित हुए। जैसे MT 1010 हमारे प्राचीन कृषि में बहुत पहली ले, एकर अच्छा प्रतिस्पादन, मतलब किसान मन एकर जगह एला अभी ले ले सकत है ओहूला, और मध्यम अवधि के 115-120 दिन के लगभग, और 10-10 जैसे ही एकरो उत्पादन हमार मिली।
1: अच्छा। MTU 1001 के घला सिफारिश करत हो लगाए बर, तो कतेक दिन के अवधि के फसल है, किस्म है, और कतेक उत्पादन दे देत हुई एकर पाछू एक तर पाछू।
0: MTU 1001 हमार 130-135 दिन अवधि के लगभग ए किस्म है, एकड़ पाछू एकर ले हम 16-18 क्विंटल प्रति एकड़ पाछू एकर से उत्पादन हम ले सकत हन।
1: अच्छा, निचला जन भुइया रथे कहे जाए, ओकर खातिर अर किसान भाई मन जानना चाहिए तो कौन कौन से किस्म है, उन्नत किस्म है जिले लगा किसान भाई मन अच्छा ढंग से पैदावार ले सकते हैं।
0: निचली भूमि पर कृषक भाई मन स्वर्णा, स्वर्णा सब वन, MTU 1318 ये सब किस्म निचली भूमि पर ले सकते हैं।
1: अच्छा, स्वर्णा जी से बताए आप मन, ये है कतेक दिन की अवधि की फसल है, उत्पादन कतेक ले सकते हैं किसान भाई मन।
0: स्वर्णा आपके 140-150 दिन के लगभग फसल रहते, और किसान भाई मन में तो बहुत लोकप्रिय ही भी है ये आपके चाल एकर से हमन 45-50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन के सब भाई मन लेवत आते हैं और ले भी सकत है अभी
1: अच्छा,
0: अभी।
1: स्वर्णा सबवन कैसन है, एक किस्म हाँ जिला लगावा किसान भाई मन, तो कतेक दिन में तैयार हो जाते हैं और उत्पादन कतका मिलते।
0: स्वर्णा सब वन जैसे कि आप लोग बताए हैं, जल डुबत क्षेत्र वाले बर भी उपयुक्त है, 140-150 दिन के किस्म एकर अवधि रहते पक के तैयार हो जाते, जेमा लगभग एकर से भी आप 45-50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकर से आप उपज ले सकत हो।
1: MTU 1318 किस्म ला नाव ले है अपन, तो ये कैसन किस्म है और कतेक दिन में तैयार हो जाते, कतेक उत्पादन मिल सकते हमारे किसान भाई मन।
0: MTU 1318 जो है स्वर्णा के ही पैतृक ओला विकसित करके वैरायटी अंदर 10 वर्ष के अवधि के अंदर के किस्म है जो अभी विकसित हुए,
1: अच्छा
0: ये स्वर्णा के जैसे ही एकर सब गुण है, लेकिन स्वर्णा से एकर अवधि कम से कम 10 दिन ऊपर है,
1: अच्छा
0: तो ये निचली भूमि पर तो उपयुक्त है ही, ये लगभग आपके 150-155 ऐसे दिन के अवधि के, अगर से भी उत्पादन आप 45-50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं।
1: अच्छा ये तो हम भुइया के आधार में किस्म के चुनाव के बात करवाए, बात बताया आप मन। अब अगर रोग रोधी किस्म की अगर बात करवो, तो ऐसे कौन कौन से हमारे किस्म है जेकर से हमारे किसान भाई मन लगा के ज्यादा पैदावार ले सकत हम।
0: जैसे राजेश्वरी आप लोग बता रहे हैं IGKVR V1 ओला कही थे है ना, जेन 120-125 दिन के लगभग आवे, वो है लीप ब्लास्ट, गंगई, भूरा धब्बा, ये सब रोग बर एमा प्रतिरोधकता है, क्षमता है, इला
1: हाँ
0: लिए जा सकते है। IGKVR 2 जिला दुर्गेश्वरी के नाम से जाने जाते,
1: अच्छा
0: ओ लगभग 120-125 दिन के अवधि के है, ओहू लंबा पतला दाना रहते, ये झुलसा रोग और सीथ ब्लाइट, सीथ राट जला हम कथन, तेकर बर भी तेकर प्रति भी यह मध्यम प्रतिरोधकता है, मा
1: अच्छा
0: इला लिए जा सकत है। चंद्रहासनी ये भूरा माहो बर आपके सहनशील हावे, जे 120-125 लगभग अवधि के है, एक भी उपयुक्त है, अहू ला लिए जा सकत है।
1: उत्पादन
0: उत्पादन लगभग एकर भी आपके 35-40-42 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते हैं कृषक भाई मन।
1: खरीफ में प्रमुख धान फसल के किस्म के चर्चा करें, गोट बात करें, लघु धान्य फसल घला हमारे किसान भाई मन लगाते हैं, तो इमे कौन कौन से लघु धान्य फसल लगा सकते हैं, कौन कौन प्रकार के किस्म ला अपनावे जेकर ले ज्यादा बढ़िया उत्पादन ले सके।
0: लघु धान्य फसल में जैसे कोदो है, रागी है, कुटकी है, ये सब लघु धान्य फसल इमा भी अलग अलग किस्म विकसित किए गए हैं, तेला लेके किसान भाई मन लगा सकते हैं और करत भी है खेती, एकर रागी के हो गए, कोदो के एकर करत भी है खेती, तो ये सब ला हम लघु धान्य के रूप में ले सकत हन। जैसे कोदो में हो गए इंदिरा कोदो 1, छत्तीसगढ़ कोदो 2 छत्तीसगढ़ के विकसित किस्म है, छत्तीसगढ़ कोदो 3।

0: ये आपके 100-105 दिन के लगभग एक किस्म मन है, जिनसे हमन लगभग 20 से 25, 20 से 22 ऐसे क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमन एकले ले सकत हन।
1: अच्छा।
0: ये थोड़ा सूखा सहनशील भी रहते, जे शुगर पेशेंट है नी, दे ते मन बर एक किस्म बहुत उपयुक्त है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: ये लघु धान्य फसल ही बहुत उपयुक्त है। तो इला लिए जा सकत है, जिसे रागी हो गए, रागी में छत्तीसगढ़ रागी 2 जेन 115-118 दिन की किस्म के, ये असिंचित एरिया पर भी उपयुक्त है।
1: अच्छा।
0: और छत्तीसगढ़ रागी 3 ये भी आपके 110 से 112 दिन अवधि में पक के तैयार हो जाते, जेकर से हम 30-35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम एकर से ले सकत हन। और जहाँ जैसे मृदा में नमी की कमी है, वो एरिया वो क्षेत्र पर भी ये ले सकत हन ये किस्म ला हम।
1: अच्छा, बहुत अच्छा विषय रही सब है, खरीफ मौसम पर अनुकूल किस्म, ये विषय में जानकारी दिया और स्टूडियो में आया एक बार श्रीमती प्रीति अवस्थी जी, आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी सुने भेंटवार्ता विषय रही से खरीफ के लिए मौसम अनुकूल किस्में, जानकारी देते हैं श्रीमती प्रीति अवस्थी, बीज प्रबंधक, बीज निगम सेंद्रीय बिलासपुर के अंकल लंगोट बात करते रही हमारे महंगू भैया। अब सूचना है संगी हुआ, हर बृहस्पत और शुक्रवार के आप मन फोन इन में कार्यक्रम आधारित फोन इन सुनता, यही कड़ी में इधरी गुरुवार और शुक्रवार के डॉक्टर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर आर के एस तिवारी उपस्थित रही 10:30 से 11 बजे तक। विषय रही धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन, अब बिहनिया 11 बजे ले 11:30 बजे तक। विषय रही खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधियां, महत्व एवं सावधानियां, ए विषय में अगर कुछ संशय है और जिज्ञासा है तो फोन करे बर नंबर है 266592। अब फोन लगाए के बाद अगर स्टडी कोड 07752 तक खचित लगावा। अब ये कार्यक्रम लापमन 7 मई और 8 मई के संध्या 7:30 से 8 बजे तक सुन सका था, सूचना सिर आगे संगे हुआ। अब कार्यक्रम में आगू बढ़बो संगे हुआ, तापमान के मौसम ला देखा था कि बादर बादर छाए है, तो ऐसन में संध्या संध्या बढ़िया हवा करे लगते तो तापमान घलब थोड़कन कम हो से, अधिकतम तापमान कहबो तो 41 डिग्री सेल्सियस रही आज के रिकॉर्ड में, और न्यूनतम रही से 24 डिग्री सेल्सियस। अब संगी हुआ मंडी भाव प्रति बढ़बो, तो फल के बात करबो तो सेब के भाव रही से 18,000, अंगूर के भाव 6,000 कुंटल, पपीता रही से 2,000 ले 2,200 रुपया कुंटल, और साग भाजी में कहबो पताल के बात करबो तो 4,000 रुपया कुंटल, और भाटा 4,000 ले 4,200, गोभी 4,500 और मिर्चा 3,000 ले 400 रही से, गोंदली है 1,600 ले 1,800 संगे हुआ। ते तो हो गए मंडी भाव, और अब सामयिक सुझाव में संगे हुआ, तापमान है बढ़त है दिनों दिन, तो आप मन है पशु मन के घलौ चेत करा, ओला बाहर में झन छोड़ा और घर में कम से कम 2 टाइम आप मन है दाना पानी और बढ़िया साफ और ठंडा पानी देवा, जिन मेर पशु मन है बैठा थे वो मेर है ज़्यादा कच्चा झन रहा और मंगसा झन रहा है, आजकल मंगसा घलौ को बाढ़े है तो इला चेत करिया। और अब बेरा हो गए संगी हो घर जाए के, तो देवा विदा फुलवा बहनी ला, जय जोहार, राम राम।

ग्राम सभा आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सुगम संगीत में आज हम सुन रहे हैं अनुराधा पौडवाल के गाए गीत।

अनुराधा पौडवाल के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत यहीं समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, रजनीगंधा का आज का अंक समर्पित है हिंदी सिनेमा के एक ऐसे बहुमुखी कलाकार को जिन्होंने अभिनय और निर्देशन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। साथ ही लेखन में भी अपना हाथ उन्होंने आजमाया है। अनुभवी पटकथा लेखक इंदर राज आनंद के बेटे टीनू आनंद ने 80-90 के दशक में कई सफल फिल्मों में भी अभिनय किया है। टीनू आनंद का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ। उनके पिता हिंदी सिनेमा के जाने माने नाम रहे हैं। 4 मई 1953 को इनका जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का माहौल मिला अपने घर में ही, जिससे उनके अंदर कला के प्रति गहरा लगाव पैदा हुआ। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत निर्देशन से की और महान फिल्मकार सत्यजीत रे जैसे दिग्गज के साथ भी काम करने का अवसर उन्हें मिला।

कालिया फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिस फिल्म का निर्देशन किया था टीनू आनंद ने। निर्देशक के रूप में टीनू आनंद ने फिल्मों में नई सोच और सशक्त विषयों को प्रस्तुत किया। दूसरी ओर उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में भी अपने किरदारों से दर्शकों का दिल जीता। खलनायक और चरित्र अभिनेता के रूप में गहराई से भरे हुए रोल उन्होंने निभाए। उनकी संवाद अदायगी और स्क्रीन प्रेजेंस प्रभावशाली होती थी। अग्निपथ और घातक जैसी फिल्मों में अपने विशिष्ट अभिनय से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। दिल जले, गजनी, दबंग जैसी फिल्मों में भी हमने उन्हें देखा है। बेहतरीन प्रदर्शन के साथ उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया है।

शहंशाह फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस फिल्म के निर्देशक थे टीनू आनंद। वीरेंद्र राज आनंद यानी टीनू आनंद ने कैरियर के शुरुआती दौर में लगभग 5 साल सत्यजीत रे के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया था और वीरू देवगन से फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखी। उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी शशि कपूर अभिनीत दुनिया मेरी।

शेप में। टीनू आनंद ने ही अमिताभ बच्चन को उनकी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी में काम दिलाने में भूमिका निभाई थी। पहले ये रोल उन्हें ही ऑफर हुआ था।

घातक फिल्म में भी टीनू आनंद का अभिनय यादगार रहा। 1987 की मुख्य फिल्म पुष्पक में उनका अभिनय अविस्मरणीय है। उनके मशहूर डायलॉग्स रहे, डर के आगे नहीं मेरे आगे जीत है, ताकत सिर्फ बंदूक में नहीं दिमाग में भी होती है। उनकी पहचान खास तौर पर उनके खलनायक अंदाज और सख्त डायलॉग डिलीवरी से है। वे चाहे छोटा रोल करें या बड़ा, अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार हमने देखा। फिल्म हम, दामिनी, मोहरा, घातक, क्रांतिवीर, सलामे इश्क, चाइना गेट, गजनी और नायक, फिल्म चाहे कोई भी हो, उनका अंदाज अलग ही था।

विलेन, कॉमिक या सीरियस, हर रोल को पूरी शिद्दत के साथ निभाते थे टीनू आनंद। अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्मों कालिया और शहंशाह में बेहतरीन निर्देशन के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें 2024 में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। एक चरित्र अभिनेता के रूप में वे आज भी सक्रिय हैं और उनका योगदान भारतीय सिनेमा के लिए प्रेरणा स्रोत है।

रजनीगंधा आप सुन रहे थे एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी।

0: है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है।

0: डीएमके को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
1: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
0: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
2: आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में NDA ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। TVK पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। NCP की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक जहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी के बारे में। यही है हमारी आज की

इनका जन्म हुआ 18 जुलाई 1945 को पश्चिम बंगाल के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में। गाने का शौक बचपन से ही था, सो परिवार ने भी इस कला को बढ़ावा दिया। उस समय इनकी उम्र लगभग 14 या 15 साल की रही होगी, जबकि इन्होंने ऑल इंडिया म्यूजिक टैलेंट प्रोग्राम में गाना गाने का फैसला किया और इन्हें मौका मिल भी गया। और तभी तालियों और वहां मिली प्रशंसा ने मन में ये ख्वाहिश जगा दी कि एक दिन मुझे भी हिंदी सिने संगीत में अपना वही मुकाम बनाना है जो लता मंगेशकर का है।

0: बनाए।
1: बहुत कम उम्र में ही आरती मुखर्जी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू कर दी और उसी का नतीजा था कि आरती मुखर्जी ने जीता मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट। अब इस प्रतियोगिता की एक खासियत ये थी कि इसे जज कर रहे थे उस जमाने के नामचीन संगीतकार अनिल बिस्वास, नौशाद, वसंत देसाई और सी रामचंद्र। बस यहीं से आरती मुखर्जी के पार्श्व गायन के क्षेत्र में जाने का रास्ता बन गया और 1958 में आरती मुखर्जी को पहला ब्रेक मिल भी गया। फिल्म मीना कुमारी अभिनीत थी, नाम था सहारा।
2: कन मटकन दहेज टोकन धम्मड़ दुस्सा खून से गुस्सा कड़वी कड़वी बात बुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन से मैया बिल्ली बजाए बाजा गाए चिड़ियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल के बिल्ली बजाए बाजा गाए चिड़ियों का राजा नाचे बंदरिया

0: गाए चुहियों का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के।
1: इस फिल्म के संगीतकार थे हेमंत कुमार, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म का संगीत कुछ खास चला नहीं। उसके बाद 1959 में एक बार फिर मीना कुमारी की ही फिल्म थी दो दिल चार राहें। 1961 में एक और फिल्म मिली, इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला और संगीतकार थे

पहुंचते पहुंचते आरती मुखर्जी को ये बात समझ में आ गई कि हिंदी सिने संगीत के क्षेत्र में इस समय अपने लिए एक अलग जगह बनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो समय लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी पूर्व स्थापित गायिकाओं का करियर का पीक का टाइम था। लिहाजा आरती मुखर्जी ने एक बड़ा ही समझदारी का निर्णय किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बांग्ला फिल्मों की तरफ लगा दिया और इसका बड़ा पॉजिटिव असर भी हुआ। 70 के दशक तक आरती मुखर्जी बांग्ला फिल्म संगीत की टॉप की सिंगर में शुमार रहीं। यहां उन्होंने बांग्ला फिल्मों की तमाम टॉप हीरोइंस के लिए अपनी आवाज दी। शर्मिला टैगोर, संध्या, अपर्णा सेन, देवश्री राय, तनुजा, सभी के लिए आरती मुखर्जी ने गाने गाए। और सिर्फ बांग्ला ही नहीं, उड़िया, असमी, गुजराती और मणिपुरी भाषा के गीतों को भी सफलतापूर्वक आरती मुखर्जी ने गाया। सन 70 से 80 के बीच का समय आरती मुखर्जी की सफलता का समय था। और इसी समय यानी 1975 में आरती मुखर्जी को एक ऐसी हिंदी फिल्म मिली जिसने हिंदी सिने संगीत में भी आरती मुखर्जी का नाम स्थापित कर दिया। फिल्म थी

गीत गाता चल का ये गीत भी अन्य गीतों की तरह मकबूल हुआ। राशि प्रोडक्शन की फिल्म थी, संगीतकार थे रविंद्र जैन। इसी प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म तपस्या, जिसे एक बार फिर रविंद्र जैन ही स्वरबद्ध कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बार फिर आरती मुखर्जी को एक गीत दिया और इस बार गाना था किशोर कुमार की आवाज में, और फिल्म थी तपस्या।

ये गीत भी संगीत प्रेमियों ने खूब सराहा। अब आपको ये भी बता दें कि हिंदी फिल्म संगीत जिसे छोड़कर आरती मुखर्जी चली गई थी, उसी के एक हिंदी गीत ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया। लेकिन उस गीत से पहले एक और हिट गाना आपको सुनवाते हैं, आरती मुखर्जी ने जिसे मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया 1965 में, और उसे भी आपने बेहद सराहा था। सुनिए दो दिल फिल्म का ये गाना।

हाँ, तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार की। बात उन दिनों की है जबकि आरती मुखर्जी को लगभग सभी भाषाओं में गीत गाने के मौके मिल रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 70 से 80 का दशक आरती मुखर्जी की सफलता का दशक था, तो हिंदी फिल्मों के गीत भी उस समय मिल रहे थे, हिट हो रहे थे। उसी दौरान 1983 में आरती मुखर्जी से राहुल देव बर्मन ने अपनी फिल्म मासूम के लिए एक गीत गवाया। ये था

0: पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर आपके दोस्त अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बहारों में इन नजारों में खो गए हैं साथ तुम्हारे, दिल में जो समा बांधा है दिल ने, देखते रह गए हैं नैन हमारे।

नींद उड़ चली है आंखों से, जाने कैसे बदला है समा। दे कर के दर्द दिल हमी से पूछते हो, दिल है कहां और दर्द है कहां।

0: दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा।
1: बस तुम्ही से रोशन है मेरे अफसाने का नाम, क्या नहीं मालूम तो जान लो, सुन के पुकार आ गए हैं जान हथेली पर लेके, अब तो दीवाने का कहा मान लो।

हर सो दिखाई देते हो अब आसमानों में, चांद तारों में, प्यार भी तू बाहर भी तू, नजर में है और तू ही नजारों में।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। समाचारों के लिए अब जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक

0: वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं, सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294 member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress TMC in the first election after Special Intensive Revision SIR of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 271 constituencies so far. BJP has bagged 197 seats, while Trinamool Congress has won 68 seats. Congress and regional arm Janata Unnayan Party, AJUP, secured 2 seats each. CPM clenched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad, AGP, has won 6 seats and Bodoland People's Front, BPF, has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front, AIUDF, clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. BJP leader and incumbent Chief Minister Himanta Biswa Sarma has won from Jalukbari constituency, defeating Congress rival Bidisha Nyog. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government,

0: securing a comfortable majority of 18 in the 30-member House. Actor-turned-politician Vijay-led Tamaraga Vetri Karagam, TVK, is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has 105 seats and is leading on 2 seats out of 234 constituencies across the state. In an intense three-cornered battle in the state, 229 results have been declared, while trends are available from other 5 seats. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munnetra Karagam, DMK, led by Chief Minister M.K. Stalin, has won 28 seats and is leading on 2 seats, while its rival All India Anna Dravida Munnetra Karagam, AIADMK, has won 46 seats and is leading at 1 seat. PMK has won 2 seats, Indian National Congress, INC, has won 5 seats, BJP, DMDK and AMM, KMNKZ bagged 1 seat each. CPI, CPIM, VCK and IUML bagged 2 seats each. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has said that today is a historic and unprecedented day and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala. Addressing party workers at BJP headquarters in Delhi this evening, Mr. Modi said today heralds a new dawn for the nation and people have placed their trust in India's great democracy, politics of performance and trust in the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: एंड विद दैट वी एंड दिस न्यूज बुलेटिन।
2: मीडियम व्यू 305.5।
3: समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जा रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण यहीं संपन्न हुआ। कल के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।